ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 14 सितंबर सन 2026 सुबह के 5:53 और 36 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

अब से कुछ ही पलों में 6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात। आपके साथ होंगी ज्योति आनंद। श्रोता सुन सकते हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR 7:02 पर निखिल कुमार के साथ। इसके बाद आप सुनेंगे प्रोग्राम दिल के तराने गाने नए पुराने 9:02 पर। निखिल कुमार आपके साथ होंगे, पूजा आनंद लेकर आएंगी वेस्टर्न म्यूजिक का कार्यक्रम सुबह 10:02।

श्रोता सुनेंगे बॉलीवुड ट्रेल्स 11:02 पर आकृति खंडूरी के साथ। वेस्टर्न म्यूजिक आप सुन सकते हैं 12:02 पर, और इसके बाद हमारे श्रोता सुनेंगे रेनबो हेल्पलाइन कार्यक्रम 1:02 पर। आकृति आपके साथ होंगी। शालिनी लेकर आएंगी कार्यक्रम आशियाना 2:02 पर।

तीन बजे आप सुन सकते हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सीमा चौधरी के साथ। इसके बाद हमारे श्रोता सुनेंगे 4:02 पर प्रोग्राम अल्फा जैन। 5:02 पर आप सुनेंगे सिटी लाइव और इसके बाद 6:02 पर प्रोग्राम होगा मैसेज मसाला मिक्स। प्रवीण शर्मा ये प्रोग्राम लेकर आएंगे। श्रोता सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक 7:02 पर सुहासिनी के साथ। इसके बाद आप सुनेंगे म्यूजिक मस्ती और फिर इसके बाद हमारे श्रोता सुन सकते हैं आपकी याद आती रही प्रोग्राम 9:02 पर विनीता बेदी के साथ। और 11:02 पर आप सुनेंगे रंग महफिल विनीता बेदी के साथ। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। श्रोता सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह का 6 बजने जा रहा है। कुछ ही पलों में आपके साथ होंगी आरजे

प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकों की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एनडीए के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। अभियान का उद्देश्य जन भागीदारी के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण में योगदान देना है। गृहमंत्री आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, असम और अरुणाचल प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना है। भारतीय तीरंदाज धीरज बोमा देवरा ने जापान के नाकानिशी जूनिया को हराकर तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में स्वर्ण पदक जीत लिया है। और अंत में क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर एशिया कप का खिताब जीत लिया है। वहीं दिल्ली में T20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। तो ये थे FM रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

Hey listeners, good morning. सुबह की पहली किरण के साथ चेहरे पर मुस्कान और दिल में बहुत सारी उम्मीद लेकर शुरू करते हैं आज का खूबसूरत सा दिन और खूबसूरत सा सफर. आप सुन रहे हैं FM Rainbow 102.6 कार्यक्रम सुप्रभात ज्योति के साथ. और आज का दिन तो वैसे भी बहुत खास है. आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उनके जीवन से सीख सकते हैं. बातें करेंगे उसके बारे में भी, और भी बहुत सारी छोटी छोटी सी बातों की जिनकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है.

वेलकम बैक लिसनर्स, आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप ज्योति के साथ। और बिल्कुल, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। और आपके मैसेजेस हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं और आप भी हमें बहुत सारी बधाइयाँ दे रहे हैं। और हमारा रिश्ता ना बहुत खास है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो रोज़ मिलकर नहीं मगर रोज़ सुनकर बनते हैं, जैसे आप रोज़ सुनते हैं FM रेनबो। और आज भी आपने बिना मेरे बताए आपने बता दिया कि आज आपके साथ कौन है। तो ऐसा ही प्यारा सा रिश्ता है हमारा आपके साथ और भगवान गणेश के साथ भी। इतनी सारी लेसन्स हमें देते हैं ना भगवान जी, कि उनको देख के उनके जीवन से हमें बहुत से लेसन्स सीखने को मिल सकते हैं। जैसे कि उनके बड़े बड़े कान, वो कहते हैं कि ज़्यादा सुनो और कम बोलो। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं मगर कभी कभी ध्यान से सुनना ही समझदारी होती है। उनकी प्यारी प्यारी छोटी छोटी आँखें कहती हैं कि फोकस रखो, भीड़ और शोर के बीच में भी अपने गोल पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखो और उसे हमें सीखना चाहिए। और उनका जो प्यारा सा बड़ा सा पेट है ना, वो इसलिए है कि छोटी छोटी बातों को ना पचा हमें मतलब सह लेना चाहिए और इतना बड़ा उसको बनाना नहीं चाहिए। हर बात को दिल पर लेकर बैठने से मन भारी होता है, तो इसलिए कुछ बातों को जाने देना भी ज़रूरी होता है। और उनका जो एक दांत है वो कहता है कि जो ज़रूरी है ना उसे बहुत ज़्यादा संभाल कर रखो। ज़िंदगी में हर चीज़ साथ लेकर चलना ज़रूरी नहीं है, अपनी जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं उनको हमें पहचानना है। और उनका जो छोटा सा वाहन है ना चूहा, वो कहता है कि साधन छोटा हो सकता है लेकिन इरादे और आपकी समझ और आपकी बुद्धि बड़ी हो तो रास्ते तय किए जा सकते हैं। और हमारे गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है क्योंकि वो हमारी सभी मुश्किलों को हर लेते हैं। तो मुश्किलें तो आएंगी लेकिन उनसे डरने के बजाय धैर्य और बुद्धि से उनका सामना करना चाहिए। तो बस इसी के साथ फिर से आपको मैं विश करती हूँ गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। और इस पूरे पर्व को आप बहुत उत्सुकतापूर्वक और बहुत ही खुशी से मनाएं और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ और सारे विघ्न आपके हर जाए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो कार्यक्रम सुप्रभात ज्योति के साथ। और बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिनसे हम आज बात करेंगे कि कैसे उनसे बड़े रिजल्ट्स आते हैं, मतलब छोटी चीज को कम नहीं समझना चाहिए। सुनते रहे आकाशवाणी रेनबो, जुड़ती हूँ आपसे इस खूबसूरत से गाने के बाद।

रिश्ता इतना खास है ना कि आप में से कितने लिसनर्स बता रहे हैं कि आपका गला ख़राब है फिर भी आपने मुझे पहचान लिया ना जी हाँ, यही तो हमारा कनेक्शन है। और हमारा मन भी बस यूं ही भागता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी कभी तो इतना बेचैन होता है कि समझ ही नहीं आता है। और लाइफ में अक्सर ऐसा होता है कि हम क्या करें क्या ना करें, मगर कहीं सुना था कि अगर नाकामयाब ही होना है तो कम से कम उस काम में होते हैं ना जिसे हम करना चाहते थे या करना चाहते हैं तो इसीलिए अपना फेवरेट काम ही करें ताकि आपका मन यूँ ना भटके, और फिर चाहे उसमें आपको कम सफलता मिले चाहे ना मिले, मगर फिर आपको ना वो एक खुशी और तसल्ली रहेगी कि मैंने अपनी पसंद का काम किया। और ऐसी ही छोटी छोटी बातें हैं जो लाइफ को ना बहुत हैप्पी बना देती हैं, और लाइफ में अल्टीमेटली हमें हैप्पीनेस और पीस ही तो चाहिए। बस इतनी सी तो बात है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती हैं। और इतनी सी बात सुनते हैं इसी बात पर।

मैंने तो आपसे कहा ही कि इतनी सी बात बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाती है, बहुत बड़े बड़े इफेक्ट और इम्पैक्ट आपके ऊपर दे सकती है। अगर आप ये छोटी छोटी बातें करेंगे तो दूसरों की ज़िंदगी में भी बड़े इम्पैक्ट हो सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि ज़िंदगी में बड़ा बदलाव किसी बड़ी घटना से, लेकिन सच तो ये है कि हमारी ज़िंदगी छोटी छोटी चीज़ों से बनती है। एक थैंक यू किसी का दिल अच्छा कर सकता है, एक मुस्कान किसी के उदास चेहरे को राहत दे सकती है, 5 मिनट की किसी से बातचीत किसी रिश्ते को बचा सकती है, एक छोटी सी कोशिश किसी बड़े सपने की शुरुआत बन सकती है। ऐसी एक छोटी सी कोशिश की कहानी आपको सुनाऊंगी, मगर इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बबई। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

वेलकम बैक लिसनर्स, आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम सुप्रभात ज्योति के साथ 6:33 हो चुके हैं। बस इतनी सी तो बात है कि समय से हर काम करना चाहिए। और आपको भी ऐसा लगता है कि हम अगर किसी को डायरेक्ट कोई बात कहेंगे तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि जितना अगर हम कहानी के माध्यम से कहेंगे अलग अलग तरीके से। तो हम कितने भी बड़े हो जाएं, हमें कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। और आपको मैं एक बड़ी प्यारी सी, बड़ी छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, मगर इस गाने के बाद।

बिल्कुल, मेरा तो दिल करता है कि मैं रोज़ आपसे मिलने आऊँ, रोज़ आपको कहानी सुनाऊँ, रोज़ हम ऐसी बातें करें जो इतनी सी लगती हैं मगर बहुत बड़ी उसकी जो इम्पैक्ट होता है बहुत बड़ा होता है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊँगी, छोटी सी मगर बहुत इम्पैक्टफुल है, तो सुनिए। एक बार एक व्यक्ति ने समुद्र किनारे हजारों छोटी मछलियाँ देखी जो पानी के बाहर आ गई थीं, और एक बच्चा था उन्हें उठा उठा कर वापस समुद्र में डाल रहा था। तो उस व्यक्ति ने कहा कि इतनी सारी मछलियाँ हैं, तुम कितनों को बचा पाओगे? तो बच्चे ने कहा कि ये मछली, मतलब मछली को पानी में डालते हुए कहा कि इसके लिए तो मैंने बहुत बड़ा काम किया है ना, मतलब उस एक मछली के लिए वापस पानी में जाना तो उसके लिए तो कितना बड़ा काम था। तो बस यही लाइफ की खूबसूरती है, हम पूरी दुनिया नहीं बदल सकते लेकिन किसी एक इंसान के लिए दुनिया थोड़ी सी बेहतर हम ज़रूर बना सकते हैं अपने छोटे छोटे से कामों के ज़रिए, छोटी छोटी सी बातों के ज़रिए। बस इतनी सी तो बात होती है और इसी तरह से हम दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी भी भर सकते हैं। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी सुप्रभात, ज्योति के साथ एक और खूबसूरत सा गाना एंजॉय करते हैं और फिर आपकी बातचीत आगे बढ़ाते हैं।

छोटी बातों का बहुत ज्यादा महत्व होता है और हमारी अपनी खुद की लाइफ से ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे एक छोटी सी चाबी, अगर चाबी ना मिले तो आपका कितना दिमाग खराब होता है ना, आप घर का ताला नहीं खोल सकते, आप घर के अंदर नहीं जा सकते। तो एक छोटी सी चाबी पूरे घर का बड़ा सा ताला खोल देती है और आप अंदर चले जाते हैं। एक छोटी सी सुई कपड़े को जोड़ देती है, आप कपड़े सीते हैं उससे, याद है ना आपको। और एक छोटी सी दवा की गोली जब आप बीमार होते हैं तो बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। और एक छोटा सा पौधा जो हम लगाते हैं समय के साथ कितना बड़ा पेड़ बन जाता है। एक छोटा सा बल्ब अंधेरे से कमरे में कितनी रोशनी कर देता है। और अपने अपने मुश्किल टाइम में या फिर समझदारी के वक्त में जब वो छोटी छोटी सी सेविंग्स की थी ना, तो वो टाइम के साथ जब बड़ी सेविंग्स बन जाती हैं तो आपको कितना सुकून देती हैं। किसी की अगर आप छोटी सी तारीफ कर देते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर कभी गलत फहमी हो जाए या कोई गलती हो जाए तो एक छोटी सी सॉरी उस रिश्ते को बचाने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाती है। और आपने कभी नोटिस किया होगा कि कभी आपने ट्रेन पकड़नी है या कहीं जाना है या मेट्रो का वेट कर रहे हैं तो एक मिनट कितना इम्पोर्टेंट है। एक मिनट की सावधानी कई घंटों की कई मिनटों की परेशानी बचा सकती है। और एक छोटा सा फैसला कभी कभी आपकी लाइफ की पूरी दिशा बदल देता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम कम ना समझें, ये छोटी छोटी बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं जिंदगी में। बड़ा असर हमेशा बड़ी चीज़ों से नहीं आता, कभी कभी एक शब्द, एक मुस्कान, एक मिनट और एक छोटा सा कदम

आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप सुप्रभात ज्योति के साथ, और 6:55 हो चुके हैं। बस मेरे जाने का समय नज़दीक है, और एक बहुत ही छोटी सी फिर से एक और बात बोलूँगी चलते चलते कि हर चीज़ ना वक्त लेती है, उसी टाइम नहीं होती है, तो इसलिए हर चीज़ को थोड़ा सा वक्त दें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। और आकाशवाणी रेनबो पर आज कौन कौन से कार्यक्रम आप सुन पाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। 7:02 से आपके साथ होंगे निखिल कुमार लेकर गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, और उसके बाद 8:02 से मैं फिर जुड़ जाऊँगी आपके साथ लेकर गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR का सेकेंड एडिशन, और उसके बाद आप सुनेंगे दिल की तरह आने गाने नए पुराने 9:02 से निखिल के साथ, और उसके बाद 10:02 से पूजा आनंद होंगी आपके साथ। आप आनंद ले सकते हैं मैचलेस म्यूजिक आर का। तो कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल अपने आप से बहुत सारे क्यों आप पूछ सकते हैं कि हम क्यों ऐसा करते हैं, क्यों हम कुछ नहीं करते हैं। इस गाने के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ और मिलती हूँ आपसे फिर से 8:00। आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

नमस्कार। सुबह के 7 बज चुके हैं। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एनडीए के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देशभर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। अभियान का उद्देश्य जन भागीदारी के माध्यम से विकसित भारत का निर्माण करने में योगदान देना है। देश में हिंदी दिवस आज मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृहमंत्री आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, असम और अरुणाचल प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। महिला 2020 एशिया कप के फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर एशिया कप का खिताब जीत लिया है। वहीं दिल्ली में 2020 श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से पराजित किया। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो प्रोग्राम, शुरू हो चुका है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR आपके दोस्त आर्शन निखिल के साथ में। और इस प्रोग्राम की जब हम शुरुआत करते हैं तो आपको बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। आज के दिन क्या खास है इस पर भी हमारी नज़र ज़रूर रहती है। और आज हम मना रहे हैं हिंदी दिवस, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ख़ास दिन है हम सभी के लिए, जब वर्ष 1949 में आज के दिन ही हमारे लिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। और ये दिन इसलिए भी मनाया जाता है कि हिंदी भाषा की जो परिपक्वता है

0: इसकी जो विद्वता है वो विश्वव्यापी है और इसको कमतर आंका नहीं जा सकता है। इस संबंध में आइए सुनते हैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का ये संदेश।
1: ये आकाशवाणी है। अब प्रस्तुत है हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का संदेश।
2: प्यारे देशवासियों, हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से अनंत अनंत शुभकामनाएं। हमारा देश भारत भाषाई विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि की अनुपम भूमि है। सब लोग कहते हैं कि हमारी भाषाएं अलग अलग है, वो हमारी कमी है, मगर मैं मानता हूं कि हमारी सबसे बड़ी ताकत इतनी सारी भाषाएं होना है। अपने साथ हर भाषा एक इतिहास, लोक परंपरा और जीवन दृष्टि को लेकर चलती है, जो हमारी नई पीढ़ी के संस्कार को भी आगे बढ़ाती है। यही भाषाई बहुलता भारत की विविधता में एकता की भावना को सशक्त बनाती है। भाषा केवल संवाद का साधन नहीं होती है, वह किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब वह सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े। हिंदी किसी भाषा की प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि भारतीय भाषाओं के बीच आत्मीय संवाद और राष्ट्रीय एकात्मता की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस सत्य का सबसे सुंदर प्रमाण हमारा अपना इतिहास है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मातृभाषा गुजराती थी, फिर भी इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा। महात्मा गांधी ने 1918 में मद्रास में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बांग्ला भाषी थे, पर उन्होंने आजाद हिंद फौज की संपर्क भाषा हिंदी को बनाया और देश को जय हिंद का नारा दिया, यानी हिंदी को सभी लोगों ने जन संवाद की भाषा बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जिनकी अपनी मातृभाषा हिंदी कभी नहीं थी। मेरी अपनी मातृभाषा भी गुजराती है, पर जब मैं देश में किसी भी कोने में जाता हूँ तो जो भाषा मुझे वहाँ के सामान्य जन से सीधा जोड़ती है वह हिंदी है। हिंदी की यात्रा को देखिए तो उसमें पूरे भारत की यात्रा दिखाई देती है। आदिकाल में विद्यापति की पदावली, पृथ्वीराज रासो की वीर गाथाएं, फिर भक्ति काल का वह अद्भुत युग जब तुलसीदास जी ने राम कथा को घर घर पहुंचाया और सूरदास जी ने वात्सल्य को स्वर दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा के विचारों ने राष्ट्रीय चेतना को नई ऊर्जा दी और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी अनुभव किया था कि स्वभाषा और स्वाभिमान के बिना स्वराज की संकल्पना अधूरी ही होती है। और स्वतंत्रता के बाद भारतीय भाषाएं ही राष्ट्र निर्माण का, प्रशासन का और जन जन तक विकास को पहुंचाने का माध्यम बनी। हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं ने जन जागरण, राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता के विचार को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी विरासत के साथ संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। पर स्वतंत्रता के बाद एक विडंबना भी पनपी। राजनीतिक स्वाधीनता तो मिली, पर स्वभाषा, स्वसंस्कृति और स्वाभिमान के विषय को हाशिए में डाल दिए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से गुलामी की इस मानसिकता से मुक्ति का आह्वान किया और इस मुक्ति में भाषा की भूमिका केंद्रीय है। राजपथ का कर्तव्य पथ बनना केवल नामकरण नहीं था। अंग्रेजों के बनाए दंड आधारित कानूनों की जगह जन केंद्रित 3 कानून बनाए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये केवल शब्दों का बदलाव नहीं था, यह आत्म

गौरव की पुनर्स्थापना है। आज नई शिक्षा नीति मातृभाषा को शिक्षा के केंद्र में रखती है। इंजीनियरिंग और चिकित्सा की पढ़ाई भारतीय भाषाओं में हो रही है। प्रतियोगी परीक्षाएं अनेक भारतीय भाषाओं में हो रही है। इस 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से विकसित भारत के लिए शक्ति की सप्तधारा

0: आयुर्वेद, साहित्य, सिनेमा, हमारी सांस्कृतिक शक्ति, ये सब दुनिया तक हमारी भाषाओं के माध्यम से ही पहुंच सकते हैं। एक आशंका थी कि तकनीक के युग में भारतीय भाषाएं कहीं पिछड़ तो नहीं जाएगी, लेकिन मोदी सरकार में हिंदी सहित सभी भाषाएं तकनीकी विकास का स्वर्णिम युग देख रही हैं। राजभाषा विभाग द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भारतीय टूल आज भारतीय भाषाओं के बीच संवाद को सहज बना रहा है। 8,27,000 से अधिक प्रविष्टियों वाला हिंदी शब्द सिंधु डिजिटल शब्दकोश ज्ञान साझाकरण का समृद्ध माध्यम बन चुका है। 2024 में स्थापित भारतीय भाषा अनुभाग प्रशासनिक संवाद को भारतीय भाषाओं में सुगम बना रहा है। AI और अनुवाद तकनीक ने भाषा की दीवारें गिरा दी हैं। अब कोई भी भारतीय अपनी भाषा में सोचकर पूरी दुनिया से संवाद कर सकता है। साथ ही मोदी सरकार के कार्यकाल में संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन के 4 नए खंड राष्ट्रपति जी को सौंपे हैं। अंत में युवाओं से एक बात मैं करना चाहता हूं, दुनिया की जितनी भाषाएं सीख सके जरूर सीखे, पर अपनी भाषा को छोड़िए मत। मैं देश के सभी अभिभावकों को भी कहना चाहता हूं, अपने बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में बात करने का आप आग्रह रखिए। मैं अपनी भाषा में बोलूंगा तो छोटा हो जाऊंगा, इस लघुता ग्रंथि से बड़ा कोई पाप हो नहीं सकता। भाषा ही हमें अपनी माँ से, अपने मिट्टी से, अपने इतिहास से और अपनी संस्कृति से जोड़ती है। यह वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना का 150वां वर्ष भी है। वह गीत जिसने भाषा को स्वाधीनता का शस्त्र बना दिया था। आइए इस अवसर पर संकल्प ले कि हिंदी और सभी भारतीय भाषा को हम 2047 तक विकसित भारत बनाने की इस यात्रा का सशक्त माध्यम बनाएंगे। आप सभी को पुनः राजभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम।
1: अभी आप हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का संदेश सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

और श्रोता आपको बताते हैं कि आज के दिन इतिहास के पन्नों में क्या दर्ज है। आज 14 सितंबर और आज के दिन वर्ष 1770 में डेनमार्क में प्रेस की स्वतंत्रता को मान्यता मिली थी। वर्ष 1833 में आज के दिन ही विलियम वेंटिंग भारत में पहले गवर्नर जनरल बनकर आए थे। आज के दिन ही वर्ष 1917 में रूस आधिकारिक तौर पर एक गणतंत्र घोषित हुआ था। आपको बता दें कि आज का दिन था जब वर्ष 1959 में लूना 2 चंद्रमा की सतह पर उतरा था और ये चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु थी। इसने सोवियत संघ और अमेरिका में अंतरिक्ष स्पर्धा की शुरुआत की। वर्ष 1960 में आज के दिन ही खनिज तेल उत्पादक

देशों ने मिलकर ओपेक की स्थापना की थी। वर्ष 1999 में आज के दिन किरीबाती, नाउरू और टोंगा संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुए थे। वहीं वर्ष 2000 में आज के दिन ही माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज एमई की लॉन्चिंग की थी। वर्ष 2000 में आज के दिन ही तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिकी सीनेट के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। वर्ष 2003 में आज के दिन ही एस्टोनिया यूरोपीय संघ में शामिल हुआ। और आपको बता दें कि वर्ष 2007 में आज के दिन ही तानेगाशी स्थित प्रक्षेपण केंद्र से जापान ने पहला चंद्र उपग्रह H2A प्रक्षेपित किया था। आपको बता दें कि आज के दिन ही वर्ष 2013 में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर URL अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी भाषा में भी शामिल किया गया। और वर्ष 2016 में आज के दिन ही पैरालंपिक में भारत ने कुल 4 पदक हासिल किए थे। तो ये थी ऐसी प्रमुख घटना जिन्होंने अपनी खास पहचान दर्ज की आज के दिन ही। फिलहाल एक प्यारा संगीत आपके लिए है।

परसों तो अब समय है कुछ जानी मानी हस्तियों को याद करने का। तो आपको बता दें कि सबसे पहले आज हम याद कर रहे हैं रामकृष्ण शिंदे को, जो कि हिंदी सिनेमा के एक प्रतिभाशाली संगीतकार थे। उन्होंने पंडित सीताराम से गायन और पंडित माधवराव से सितार की शिक्षा दीक्षा ली थी और अपने शुरुआती वर्षों में उन्होंने मराठी रंगमंच के नाटकों के लिए संगीत दिया और अपनी मधुर धुनों से पहचान बनाई। वर्ष 1947 में फिल्म मैनेजर से उन्होंने हिंदी फिल्मों के संगीतकार के रूप में काम करना शुरू किया। इसके बाद किसकी जीत, बिहारी, गौना, खौफनाक जंगल, पुलिस स्टेशन और कैप्टन इंडिया जैसी फिल्मों से जुड़े रहे। उन्होंने भारतीय बैले के संगीत में महत्वपूर्ण योगदान का कार्य किया और अपने जीवन में लगभग 27 बैले प्रस्तुतियों के लिए संगीत तैयार किया था। बाद के दौर में उन्होंने हेमंत केदार नाम से भी संगीत दिया और यह नाम उनके प्रिय राग हेमंत और केदार से जुड़ा था। और श्रोताओं, आपको बता दें कि आज ही हम याद कर रहे हैं तारा शंकर बंदोपाध्याय जी को, जिनकी भी आज पुण्यतिथि है। उन्हें बांग्ला साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ग्रामीण बंगाल के जीवन, किसानों, मजदूरों, निम्न वर्ग और सामाजिक संघर्षों को अपनी रचनाओं का प्रमुख विषय बनाया। उनकी भाषा काफी सरल, जीवंत और यथार्थवादी मानी जाती है। गण देवता, हंसुली बाकेर, उपकथा, आरोग्य निकेतन, कवि, धात्री देवता जैसी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं और गण देवता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और आरोग्य निकेतन के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और भारतीय साहित्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। फिलहाल एक और गीत आपके लिए।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

जी हाँ, ये है आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। और आपको बता दें कि आज जयंती है राजकुमार कोहली की, जो कि भारतीय हिंदी फिल्म जगत के एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक और निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में जो काम किया वो हॉरर, थ्रिलर और मसाला फिल्मों के लिए उन्हें जाना जाता है। उनकी चर्चित फिल्मों की बात करें तो नागिन, जाने दुश्मन, बदले की आंख, राज तिलक और 20 साल जैसी बड़ी फिल्में शामिल हैं। और उनकी फिल्म नागिन को एक बड़ी व्यावसायिक सफलता माना जाता है, जिसने उन्हें एक निर्देशक के तौर पर व्यापक पहचान दिलाई थी। और श्रोताओं को बता दें कि आज ही हम याद कर रहे हैं जीपी सिप्पी को, जो कि भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की 1950 में और आगे चलकर हिंदी सिनेमा के एक बड़े निर्माता के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि जो मानी जाती है वो है वर्ष 1975 की फिल्म शोले, जिसे भारतीय सिनेमा की सर्वाधिक लोकप्रिय प्रभावशाली फिल्मों में से गिना जाता है। इसके अलावा जीपी सिप्पी ने अंदाज, सीता और गीता, शान, सागर और पत्थर की सनम जैसी चर्चित फिल्मों का भी निर्माण किया था। उन्हें उनके योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और आपको यह भी बता दें कि आज हम याद कर रहे हैं आयुष्मान खुराना को, जिनका जन्मदिन है। एक रेडियो जॉकी से अपने करियर की शुरुआत करने वाले और बाद में टेलीविजन प्रस्तोता और फिर फिल्म विक्की डोनर से फिल्मी दुनिया में कदम रखने के बाद उन्होंने अपने करियर को लगातार ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया।

में दम लगा के हईशा बरेली की बर्फी, शुभ मंगल सावधान अंधाधुन बधाई हो, और आर्टिकल 15, ड्रीम गर्ल और बाला जैसी फिल्मों के लिए उन्हें खूब पसंद किया गया। और आपको बता दें कि आयुष्मान खुराना को फिल्म अंधाधुन में उनके अभिनय के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और आपको अब हम ये बता दें कि फिल्म जगत की इन खबरों के बाद समय हो चला है, कुछ ही देर बाद आपको स्पोर्ट्स की खबरें जानने को मिलेंगी, शिवेंद्र आपके साथ में होंगे, बस अब से कुछ ही थोड़ी देर में बने रहें आप प्रेम बब्बर।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।
1: भारत को एक से जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन।
2: हिस्ट्री मेड इन टेम्परे, हिमा दास हैज डन इट। इंडिया विन बाय 137 रन्स, दे गो 2-1 अप इन द सीरीज।
3: स्पोर्ट्स पल्स।

नमस्कार, गुड मॉर्निंग सुप्रभात साथियों। शिवेंद्र का प्यार भरा नमस्ते स्वीकार कीजिए और यकीन मानिए, कल था सुपर संडे खेलों के लिहाज से, क्योंकि भारतीय टीम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग खेल गतिविधियों में शिरकत कर रही थी और उनमें एक टूर्नामेंट था जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जो कि चाइना में हो रहा था। जैसे हमने प्रोग्राम में पहले भी आपके साथ जिक्र किया था कि इस बार एक संयोग की बात है कि महिला और पुरुष दोनों ही वर्गों के हॉकी विश्व कप जो सीनियर सेक्शन के हुए वो नीदरलैंड्स और बेल्जियम में ऑर्गेनाइज किए गए, और जूनियर वर्ग का जो एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट है महिला और पुरुष दोनों ही वर्गों का वो चीन में ऑर्गेनाइज किया गया। तो वहां पर भारतीय टीम लगातार बढ़िया प्रदर्शन कर रही थी, पाकिस्तान को 19-0 से भारतीय टीम ने पराजित किया था। कई बार जब इस तरीके के स्कोर आते हैं तो लॉस एंजलिस ओलंपिक की याद आ जाती है 1932 के, जबकि भारतीय हॉकी टीम अपने पूरे चरमोत्कर्ष पर थी खेलों के मैदान पर। खासतौर पर ओलंपिक खेलों में भारत ने लगातार स्वर्ण पदक जीते थे और 24-1 के स्कोर से संयुक्त राज्य अमेरिका की टीम को 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने पराजित किया था। आज की तारीख में हालांकि उस तरीके के स्कोर्स बहुत अनकॉमन नहीं हैं, लेकिन 1932 में ऑफकोर्स वो जो स्कोर था वो बहुत ही कालजयी स्कोर कहा जा सकता था। तो फिलहाल भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने एशिया कप, जूनियर एशिया कप जो चल रहा था चीन में, मोची में खेला जा रहा था, वहां पर रेस्पेक्टिव टाइटल्स जीत लिए हैं, यानी खिताब जीत लिए हैं। भारत ने महिला वर्ग के फाइनल में चीन को, जो कि मेजबान टीम है, 1-0 से पराजित किया और सुप्रिया ने भारत के लिए एकमात्र गोल किया, और इसके साथ ही भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने एशिया कप का खिताब जीत करके महिला वर्ग में जूनियर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है जो कि इसी साल अमेरिका में ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है। भारतीय महिला टीम के साथ साथ भारतीय पुरुष टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया जूनियर एशिया कप हॉकी में। फाइनल में भारत ने कोरिया को पराजित किया 4-1 से, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि महिला वर्ग में जूनियर एशिया कप में भारत ने लगातार तीसरा खिताब जीता है और पुरुष वर्ग में भारत ने लगातार चौथा खिताब जीता है, कुल मिलाकर छठा खिताब जीता है। और भारत की ओर से पूरे टूर्नामेंट में शानदार स्कोरिंग का सिलसिला पेश किया अनमोल एक्का ने, उन्होंने 17 गोल किए पूरे टूर्नामेंट में और हाईएस्ट स्कोरर रहे। तो हॉकी के मैदान से एक बहुत ही शानदार खबर आई भारत के लिए। और उधर क्रिकेट, जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि क्रिकेट खेल के मैदान पर खेल की सीमाओं को लांघ जाता है, कहीं उससे परे चला जाता है, कहीं उससे ऊंचे पायदान पर चला जाता है, तो क्रिकेट में भी महिला और पुरुष टीमें मैदान पर थी। भारतीय पुरुष टीम इस समय मेजबानी कर रही है अफगानिस्तान की, और ये भी शायद संभवतः पहली बार हुआ है कि कोई विदेशी टीम, अफगानिस्तान की टीम, भारत में खेल रही है लेकिन उसका होम ग्राउंड दिल्ली का फिरोजशाह कोटला मैदान, जिसे आज की तारीख में हम बहुत ही आइकॉनिक स्टेडियम के तौर पर जानते हैं, अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से उसे जाना जाता है, और वहां पर भारतीय पुरुष टीम ने श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में जो खेल रही थी जीत दर्ज की, अफगानिस्तान की टीम को पराजित किया। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट एशियन लेवल पर खेला जा रहा था, महिला एशिया कप, जहां भारत का सामना श्रीलंका से हुआ। दोनों टीमें टूर्नामेंट में अजेय थीं और भारत ने श्रीलंका को 72 रन से पराजित करके इस टूर्नामेंट का खिताब जीता, एशिया कप का खिताब जीता। एशिया कप की कहानी महिला वर्ग में बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में जरूर हम आपको बताएंगे। जल्दी से वैसे आपको एक और संयोग की जानकारी दे देते हैं, वो संयोग हुआ क्रिकेट के मैदान पर। भारत की ओर से महिला वर्ग में जो टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया श्रीलंका के साथ, भारत ने 183 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर, श्रीलंका की टीम 111 रन ही बना सकी। और भारत की ओर से पहले विकेट के लिए शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने शतकीय साझेदारी मुकम्मल की, और भारत की ओर से जो पुरुष वर्ग का अफगानिस्तान के साथ जो मुकाबला खेला गया वहां पर भी संयोग की बात है कि पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी भारत की ओर से मुकम्मल की गई। तो कुल मिलाकर के एक बहुत ही खुशनुमा दिन रहा भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले अगर हम एशिया कप की बात करें थोड़ा सा डिटेल में, महिला एशिया कप जो कि दुबई में फाइनल मुकाबला खेला गया, 10वीं बार भारत एशिया कप का फाइनल खेल रहा था, 10वीं बार ये टूर्नामेंट हो रहा था, भारत 72 रन से जीता। भारत हर बार टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा है, कई बार ये टूर्नामेंट यानी महिला एशिया कप ओडीआई फॉर्मेट में भी ऑर्गेनाइज होता है, कई बार T20 फॉर्मेट में भी होता है। भारत ने कल की जो खिताबी जीत रही उसको मिलाकर के 8 बार टाइटल जीत लिया है और 2 बार हारे हैं, इनफैक्ट पिछली बार श्रीलंका से ही फाइनल मुकाबला हारे थे। 4 बार भारत ने अब तक ओडीआई फॉर्मेट में एशिया

0: जीता है महिला वर्ग में क्रिकेट का, और 4 बार कल के मुकाबले को मिलाकर के T20 फॉर्मेट में यह टूर्नामेंट जीत लिया है। सेमीफाइनल में बांग्लादेश को पराजित किया था भारत ने, ग्रुप चरण में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान को पराजित किया था, और श्रीलंका की टीम ने 2024 में टूर्नामेंट जीता था, 2018 में बांग्लादेश ने टूर्नामेंट जीता था। तो सिर्फ श्रीलंका और बांग्लादेश दो ऐसे देश हैं महिला वर्ग में एशिया कप में जो कि खिताब भारत से छीनने में कामयाब हुए हैं। हम आपको इसलिए छीनने का वर्ड हम इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज भारत हर बार फाइनल में पहुंचा है इस टूर्नामेंट के, और कल तो खैर पूरी तरीके से प्रभावशाली प्रदर्शन था भारतीय टीम का। पहले विकेट के लिए स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा की शानदार शतकीय साझेदारी हुई। स्मृति मंधाना ने 59 रन बनाए, 39 गेंदों का सामना किया, 5 चौके 3 छक्के शामिल थे। शेफाली वर्मा ने 68 रन बनाए, 39 गेंदों का सामना किया, 9 चौके 2 छक्के उसमें शामिल थे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से स्मृति मंधाना रन आउट हो गई थी। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 14 रन बनाए, ऋचा घोष ने 17 रन बनाए, और उसके बाद गेंदबाजी में भी भारत की ओर से शानदार प्रदर्शन रहा। श्री चरणी भारत की ओर से लगातार बढ़िया प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं, पूरे टूर्नामेंट में वो छाई रहीं, सबसे ज्यादा विकेट उन्होंने हासिल किए। श्रीलंका की ओर से कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने 36 रन बनाया, हाईएस्ट स्कोरर रहीं, सबसे सीजन कैंपेनर भी हैं वो, लेकिन टीम 111 यानी नेल्सन के स्कोर पर सिमट गई। श्री चंडी ने 4 ओवर 1 रन 20 रन और 4 विकेट, तो शानदार ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा, और इस परफॉर्मेंस को, इस खिताबी जीत को शब्द दे रही हैं टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर।
1: We are feeling because we know that we have such a great team. We play to our standards because that's what we spoke when we came here, that we have certain standards and we have to, you know, keep matching them every day. And I'm very happy the way we all perform. I think our opener did absolutely, you know, great job for us. The way they both batted, Smriti and Shefali. I think Shefali had a very great tournament, and good to see somebody like Shefali who's taking the responsibility and doing the job with bat and ball. And I can't ask anything else from them. It's all about, you know, playing good cricket, and end of them very happy about that.
0: जी हाँ, जब जीत मिलती है तो जाहिर सी बात है खुशी के लिए शब्द कई बार कम पड़ जाते हैं, और हरमनप्रीत अपनी टीम के खिलाड़ियों की जो तारीफ कर रही थी उसमें कुछ कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था। अब भारतीय महिला टीम, महिला क्रिकेट टीम, इनफैक्ट भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम भी एशियाई खेलों के लिए प्रस्थान करेगी। 17 सितंबर से इन खेलों का आयोजन हो रहा है, आईची नगोया में जापान में हो रहे हैं ये खेल, और 4 अक्टूबर तक चलेंगे, जहां पर पुरुष और महिला दोनों ही वर्गों में क्रिकेट एक मेडल इवेंट के तौर पर शामिल है। भारतीय टीम ने अफगानिस्तान की टीम को बड़े प्रभावशाली अंदाज में कल पराजित किया, जो पहला T20 मुकाबला खेला गया। भारत ने जो लक्ष्य था वो बहुत आसानी के साथ हासिल कर लिया था। इनफैक्ट संजू सैमसन कल खेल रहे थे, और पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी भारत की ओर से इस मुकाबले में नहीं हो पाई थी। 157 रन भारत ने बना लिए थे 13.4 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट तो 18 रन पर गिर गया था, लेकिन दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी जरूर हुई थी। और अभिषेक शर्मा जब आउट हुए थे पारी के 11वें ओवर में, उस समय भारत का स्कोर था 139 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभिषेक शर्मा ने 82 रन बनाए, 32 गेंदों का सामना किया, 7 चौके 7 छक्के। ईशान किशन ने 42 रन बनाए, थोड़ा निगल था ईशान किशन को, कुछ आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी। हाल ही में आपको याद होगा दिलीप ट्रॉफी में उन्होंने बेहतरीन दोहरा शतक लगा करके अपनी टीम को जीत दिलाई थी, इस जोन ने खिताब जीता था दिलीप ट्रॉफी का, और 14 साल बाद ईस्ट जोन ने दिलीप ट्रॉफी का खिताब जीते में कामयाबी हासिल की थी। फाइनल ड्रॉ रहा था, पहली पारी की बढ़त के आधार पर ईस्ट जोन ने जीत हासिल की थी, और वहां पर ईशान किशन ने दोहरा शतक लगाया था। कल भी ईशान किशन ने बढ़िया बल्लेबाजी की, उन्होंने 42 रन बनाए, 33 गेंदों का सामना किया, 5 चौके 1 छक्का शामिल। श्रेयस अय्यर कप्तान नॉट आउट रहे 8 रन बनाकर। तिलक वर्मा एक और खिलाड़ी जिन्होंने दिलीप ट्रॉफी में साउथ जोन की ओर से खेलते हुए बहुत ही शानदार पारी खेली थी, वो भी नाबाद रहे 3 रन बनाकर। भारत ने शानदार अंदाज में मुकाबला जीता। अब एशियाई खेल आने वाले हैं, श्रेयस अय्यर टीम के कॉम्बिनेशन और एशियाई खेलों में टीम के प्रदर्शन, संभावित प्रदर्शन को लेकर क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं।
2: Talking about what combination I love is that to be having a specific player in the right position, each and every individual. Rather than knowing the role, it's important that they should be having that awareness of the team requires you. Because when you say that this is your role in the team, that puts immense pressure on the player. And if you could probably phrase it in a better way, saying that your team requires you in this particular role, you feel needed and you feel wanted for the team. Hame pata hai ki Afghanistan is a nice team. Our preparation has also been promising for the last couple of days. Leading up to Asian Games, we have got a great opportunity to play against a very quality side.
3: इस समय आकाशवाणी दिल्ली से आप सुन रहे हैं खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।

0: साथियों, हमने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा आपका फिर से स्वागत, शिवेंद्र का नमस्कार स्वीकार कीजिए एक बार फिर से। हमने प्रोग्राम की शुरुआत में जिक्र किया था कि सुपर संडे था कल और जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट खेला जा रहा था चीन में, जहां पर भारत ने पुरुष और महिला वर्ग में खिताब जीते। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला गया दुबई में, जहां पर भारत ने श्रीलंका को हरा करके 72 रन से खिताब जीता। भारत ने अफगानिस्तान को पहले T20 मुकाबले में 7 विकेट से हरा कर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है और साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम यानी यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट समापन हुआ उसका न्यूयॉर्क में फ्लशिंग मीडोज पर, जहां खिताब जीता अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। जर्मनी से आते हैं, अमेरिका के बेन शेल्टन को पराजित किया 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 से। अलेक्जेंडर ज्वेरेव एक स्पोर्टिंग फैमिली को बिलोंग करते हैं, उनके भाई मीशा ज्वेरेव भी पेशेवर टेनिस खिलाड़ी रहे हैं, उनके माता पिता भी टेनिस खेलते थे। एक और खास बात है अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बारे में, वो हम बताएंगे, लेकिन पहले उनको सुन लीजिए जीत के बाद वो क्या कह रहे थे।
1: Very first thing I want to start off with Ben, you're an incredible player, incredible person. This was your first Grand Slam final, but I already told you you're going to be back here many, many more times. And if I would have to bet all my money on it, I would bet that you would lift this trophy one day. Then I want to thank my team. We went 30 years without winning a Grand Slam title, and now we won 2 in a span of 3 months. So I think God has seen how hard we worked, how much we suffered, how much pain we went through. I think 2026 is the outcome of all the years that happened before. So thank you guys. You guys are absolutely amazing.
0: अलेक्जेंडर ज्वेरेव, जो कि इस साल 2 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत चुके हैं, उनके बारे में खास बात यह है साथियों, उनके माता पिता टेनिस खेलते थे, उनके भाई मीशा ज्वेरेव भी टेनिस खेलते हैं और प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन 4 साल की उम्र में अलेक्जेंडर ज्वेरेव वाज डायग्नोस्ड विद Type 1 डायबिटीज। आपने जिक्र किया, आपने सुना उनको कि कितना पेन उन्होंने सहा है, झेला है, कितनी तकलीफें झेली हैं, और यकीनन खेल के मैदान पर जब ऐसा खिलाड़ी जीत हासिल करता है, ट्रायम्फ उसे हासिल होती है, तो उसे सलाम करने को मन चाहता है। एक और खिलाड़ी जो कि इंजरी से जूझ रही थी, एलेना रेबिकिना कजाकिस्तान की, उन्होंने भी यूएस ओपन का टाइटल जीता और डिफेंडिंग चैंपियन 2 बार के विजेता अरिना सबालेंका को पराजित किया। जीत को शब्द देते हुए या जीत के लिए शब्द तलाशते हुए ये हैं एलेना रेबिकिना।
2: I'm shocked, to be honest. I have no words. I mean, what a tournament. I was coming here a little bit injured, not a little bit injured. Somehow, day by day, we were trying to find a way, you know, adapting to all the challenges every day I was waking up with. And it's just incredible. I can't believe still. It's, I mean, no words.
0: जी हाँ, कहा बहुत कुछ लेकिन साथ में कहा नो वर्ड्स। जैसे हमने कहा कि रेबिकिना अपनी जीत को शब्द देने के लिए शब्द तलाशती हुई नजर आ रही थी, शी वाज साउंडिंग लाइक दैट ओनली। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच मुकाबला खेला गया, मैनचेस्टर डार्बी के नाम से इसे जानते हैं, और जाहिर सी बात है उम्मीद के मुताबिक मैनचेस्टर सिटी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया इस मुकाबले में। लिवरपूल फुलहम के साथ बराबरी पर खेले कल। इनफैक्ट ये जो वीकेंड था, ये बड़ी टीमों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग टाइप का ही रहा। एस्टन विला घरेलू मैदान पर हार गए नॉटिंघम फॉरेस्ट से 1-2 गोल से। चेल्सी घरेलू मैदान यानी स्टैमफोर्ड ब्रिज पर 2-2 की बराबरी पर हल के साथ खेले, जो कि एक प्रमोटेड साइड है। टॉटनहम स्पर्स बहुत पैसे खर्च किए इस बार, लेकिन अभी भी परिणाम आ नहीं रहे। एवर्टन के साथ 0-0 की बराबरी रही और सन्डरलैंड अपने घरेलू मैदान पर आर्सेनल से हार गए 0-2 से। बर्थडे की बात करें, आज सूर्य कुमार यादव का बर्थडे है। साजन प्रकाश भारत के तैराक, वो आज अपना बर्थडे मनाते हैं। 15 सितंबर को मालविका बंसोड़ भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी अपना बर्थडे मनाती हैं। जोशना चिनप्पा स्क्वाश खिलाड़ी भारत की अपना बर्थडे मनाती हैं। 16 सितंबर को सूजी बेट्स महिला क्रिकेट की महानतम खिलाड़ियों में शामिल न्यूजीलैंड की, उनका बर्थडे होता है। 17 सितंबर को मोहम्मद अनास भारत के एथलीट अपना बर्थडे मनाते हैं और रविचंद्रन अश्विन का भी बर्थडे होता है। 18 सितंबर को अश्विनी पोनप्पा भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी अपना बर्थडे मनाती हैं। उन सभी को शुभकामनाएं। प्रोग्राम का समय हो रहा है समाप्त, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। आप अपना बहुत ध्यान रखिए, नमस्कार।
3: Hima Das has done it. India win by 137 runs. They go 2-1 up in the series.
4: Sports Pulse.
5: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।

आज बज चुके हैं, पेश हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एनडीए के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेगी। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृह मंत्री आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज हरतालिका तीज के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। ईरान और खाड़ी देशों के बीच आज ओमान में होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। इसमें हॉर्मुज जल डमरू मध्य से होकर जहाजों की आवाजाही की व्यवस्था पर चर्चा की जानी थी। मौसम विभाग ने आज गुजरात में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, असम और अरुणाचल प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना है। भारतीय तीरंदाज धीरज बोमा देवरा ने जापान के नाकानिशी जूनिया को हराकर तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में स्वर्ण पदक जीत लिया है। और अंत में क्रिकेट में महिला की T20 एशिया कप के फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर एशिया कप का खिताब जीत लिया है। वहीं दिल्ली में T20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। ये थे आकाशवाणी रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

Hey listeners, good morning and welcome back. आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप 102.6 की फ्रीक्वेंसी पर. यही ट्यून इन किया ना आपने. 8:08. वाह क्या टाइम है. 8:08 है और ये तो मैं जानती हूँ कि आकाशवाणी रेनबो के बिना आपका भी दिल नहीं लगता है. तो बस सुनते रहिए ना. फिर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए है मेरे पास इस शो में, इस घंटे में, और साथ में बहुत खूबसूरत से गाने भी. और मौसम का हाल बता दूँ. अभी तो फिलहाल देखो बाहर धूप है. और मौसम की जानकारी आपको बताऊँगी इस गाने के बाद. और धूप के बाद जब बारिश आती है तो इंद्रधनुष बनता है, और इंद्रधनुष याद दिलाता है कि बारिश के बाद भी खूबसूरत रंग हमारा इंतजार कर रहे हैं. तो मैं कर रही हूँ आपका इंतजार. इंजॉय करिए गाना, उसके बाद मिलती हूँ.

बिल्कुल, आसमान और बारिश यूं ही आंख में चोली खेलते रहेंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं धूप है कहीं बारिश। अभी एक मैसेज हमारे साथ आया है कि बॉम्बे में, महाराष्ट्र में बहुत दिनों के बाद बारिश हो रही है। यह साइन हो, बहुत दिनों की गर्मी के बाद फिलहाल महाराष्ट्र में बारिश पड़ी है, और वो भी देखिए गणेश चतुर्थी के एक रात पहले। तो तैयारियों पर मुझे पता है इसका कोई असर नहीं।

ही साथ हिंदी दिवस की भी बधाई। और अभी अगर दिल्ली के मौसम की बात करूं तो महाराष्ट्र में तो ठीक है बारिश हो रही है, मगर हमारे यहाँ पे फिलहाल धूप है और दिल्ली का मौसम गर्म है, उमस भरा रहेगा। और दोपहर के टाइम होते होते, दोपहर आते आते गरज के साथ हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना है। तापमान की बात करूं तो अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम न्यूनतम तापमान जाएगा 26 डिग्री सेल्सियस। बस यूं ही चलता रहेगा, कभी हवाएं, कभी उमस, कभी बारिश, कभी गर्मी। फिलहाल यहाँ धूप है तो एंजॉय करते हैं करारी धूप मोहित चौहान की आवाज में। एंजॉय करते हैं गाना ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर विद मी ज्योति।

बोलचाल की भाषा ही नहीं है, हमारी ताकत है हिंदी, बल्कि हमारी भावनाओं, विचारों और संस्कृति को अभिव्यक्त करने की हमें ताकत देता है। ये देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों को कम्युनिकेशन का माध्यम देती है और हमारी साहित्यिक विरासत को समृद्ध बनाती है। हिंदी का सम्मान और सही इस्तेमाल हमारी जिम्मेदारी है। हिंदी की खूबसूरती इसी की सरलता में है। यह अलग अलग क्षेत्रों में और लोगों को संवाद का माध्यम देती है। हिंदी का सम्मान करने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम दूसरी भाषाओं को कम समझने लग जाएं। सभी भाषाओं की अपनी इम्पोर्टेंस है और भारत की हर भाषा और बोली हमारी समृद्ध भाषाई विरासत का हिस्सा है। आज हिंदी दिवस के अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम हिंदी का सम्मान करेंगे, इसका सही और सहज प्रयोग करेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी अपनी भाषा और साहित्य से जोड़ेंगे। हिंदी दिवस मैं बस इतना ही मैं कहूंगी कि ये एक भाषा नहीं है, बल्कि हमारी भावनाओं को शब्द देने वाली एक सशक्त अभिव्यक्ति है। जिस तरह से मैं अभी अपनी भावनाओं को, अपनी इन्फॉर्मेशन को आपके साथ साझा कर पा रही हूँ, अभिव्यक्त कर पा रही हूँ। सो सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। और जब मैं छोटी थी ना, तो बताऊँ आपको, मेरे फुल मार्क्स आते थे हिंदी में।

एब्सोल्युटली, अगर हमें कोई भाषा का ज्ञान होता है तो हमें कितना सुकून मिलता है, कितना करार मिलता है, हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं. और अगर भाषा ना होती तो सोचो मैं आपसे कैसे बातें करती. तो इसीलिए भाषा का जानना, भाषा की समझ होना बहुत ज़रूरी है. और आज इतना खास दिन है, हिंदी दिवस हम आज मना रहे हैं. और हिंदी सिर्फ

ऑफ गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर ज्योति के साथ. और मैंने आपको बताया ना कि मेरे फुल मार्क्स आते थे. एक्चुअली वो टीचर मेरी फेवरेट थी. नहीं, मैं टीचर की फेवरेट थी. हाफ मार्क्स कम भी होते थे तो वो फुल मार्क्स कर देती थी. और लिसनर्स बता रहे हैं कि उनके भी 70-80 मार्क्स आ जाते थे. तो दैट इज़ गुड कि आपकी हिंदी की राइटिंग अच्छी थी और आपकी हिंदी भाषा पे पकड़ थी और आपको हिंदी भाषा अच्छी लगती थी. और अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर वालों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है. वो ये कि दिल्ली मेट्रो में जो आप सारी लाइन्स पे आप यूज़ करते हैं ना, रेड लाइन, ब्लू लाइन, मेजेंटा, येलो, पिंक, वायलेट, और अब गोल्डन लाइन जो है वो शुरू होने वाली है. उसके बारे में जानकारी दूंगी आपको इस छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद और एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद. जी हाँ, कमर्शियल ब्रेक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आपके साथ फिर से जुड़ती हूँ. आप सुनते रहें गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर.

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।
4: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
5: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
6: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
7: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
8: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
4: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
9: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।

वेलकम बैक लिसनर्स, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर की अपडेट तो आपको पता होनी चाहिए। तो दिल्ली मेट्रो में जो हमारी लाइफ लाइन है, जिसके बिना हमारा गुजारा अब नहीं है, उसकी बहुत सारी लाइंस पे आपने सफ़र किया होगा। ब्लू लाइन, येलो, पर्पल, सॉरी पर्पल नहीं, वायलेट, मेजेंटा, येलो, पिंक, और मुझे लगता है कि इंद्रधनुष के सारे रंग जो हैं वो दिल्ली मेट्रो में भी हैं, और बहुत सारे रंग मिलते भी हैं, अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। और अब दिल्ली मेट्रो में ब्लू और रेड के बाद गोल्डन लाइन, जी हाँ, एयरपोर्ट तक जो होगी और उसकी ज़बरदस्त कनेक्टिविटी होगी। तुगलकाबाद संगम विहार रूट तैयार हो रहा है, और जिस तरह अभी सभी यात्री आप सभी अलग लाइन्स पर ट्रैवल करते हैं, ठीक उसी तरह से गोल्डन लाइन पर भी आपको सफ़र करने को मिलेगा। मैं भी करूँ, और इससे एयरपोर्ट तक की कनेक्टिविटी बहुत बेहतर होने की उम्मीद है। दिल्ली मेट्रो की गोल्डन लाइन का 8 किलोमीटर 400 मीटर लंबा तुगलकाबाद संगम विहार सेक्शन दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है, जिसमें यह कॉरिडोर का सबसे पहला शुरू होने वाला हिस्सा बन जाएगा। इसके और हिस्से भी होंगे जो धीरे धीरे स्टार्ट होंगे, और इस सेक्शन में 4 स्टेशन होंगे, तुगलकाबाद, तुगलकाबाद रेलवे कॉलोनी, आनंदमयी मार्ग जंक्शन और संगम विहार, और तुगलकाबाद स्टेशन वायडक्ट एंड के साथ इंटरचेंज का काम करेगा। सो ये एक नया अपडेट है, और मेट्रो तो नए नए मतलब बढ़ाई जा रही है और रूट्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पूरा कवर किया है, ट्रैवलिंग बहुत आसान हुई है। तो अब बस बहुत सारे कलर्स, बहुत सारी लाइंस के बाद अब गोल्डन लाइन की बारी है, तो बस उस पर भी ट्रैवल करने के लिए तैयार हो जाइए। दिसंबर तक का इंतज़ार करना है।

वैसे हमें शुक्र मनाना चाहिए कि हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। चलिए मान लेते हैं हमारे पास कपड़े थोड़े कम हैं और हमारे पास और बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं हैं, मगर उन लोगों के बारे में सोचे जिनके पास तो बिल्कुल नहीं है। तो आपके पुराने कपड़े किसी के लिए नई उम्मीद बनकर आए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। आपको मैंने कुछ टाइम पहले बताया था, शायद अगस्त में, 3 अगस्त के आसपास, कि

दिल्ली में मेट्रो स्टेशंस, कुछ 10 मेट्रो स्टेशंस पर कुछ ऐसे सेंटर्स खोले जा रहे हैं जिनका नाम है अर्पण केंद्र, और वहाँ पर आप अपने जो अनयूज क्लोथ्स हैं वो आप दे सकते हैं। तो अभी तक दिल्ली के अर्पण केंद्रों में अब तक करीब 41 टन कपड़े कलेक्ट किए गए हैं, और ये सिर्फ कपड़ों का कलेक्शन नहीं है बल्कि पर्यावरण को बचाने और ज़रूरतमंदों तक मदद पहुंचाने की एक बहुत अच्छी पहल है। इन सेंटर्स पर जो कपड़े जमा किए गए हैं वो ज़रूरतमंदों तक पहुंचाए जाते हैं, और जबकि जो इस्तेमाल के लायक नहीं होते हैं कपड़े उनको रिसाइकल करके दोबारा उपयोगी बनाया जाता है। तो अगली बार अलमारी साफ करते टाइम अगर आपको कोई ऐसा कपड़ा दिखे जो आप सोचते हैं कि मैं नहीं पहन सकता, मुझे पूरा नहीं आता है, या फिर एक किसका मंत्र है, एक रूल है कि जो कपड़े आपने 6 महीने तक नहीं पहने हैं वो यकीन माने आप नहीं पहनेंगे, तो उन्हें आप निकाल दीजिए। तो ये छोटी सी पहल है मगर इसका बदलाव जो है वो बहुत बड़ा है। तो अपनी अलमारी में रखे पुराने कपड़े किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, और ये बहुत अच्छी पहल है, और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कि इसकी वजह से आने वाले टाइम में और 10 नए केंद्र खोले जाएंगे। 5 मेट्रो स्टेशंस पर 3 अगस्त को अर्पण सेंटर्स खोले गए थे, 12 से 17 अगस्त के बीच, उसके बाद और 5 खोले गए तो टोटल 10 हो गए थे, मगर अब और खोले जाएंगे। तो हो सकता है आपके लिए जो कपड़ा पुराना है वो किसी और के लिए उम्मीद बन जाए। तो अगर आपके पास ऐसे कपड़े हैं तो ज़रूरतमंदों को दान दे दीजिए, और दिल्ली मेट्रो स्टेशंस पर अर्पण केंद्र खुले हुए हैं, आपके लिए बहुत आसान है जाना। मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन है ही, हम ट्रैवल करते रहते हैं, सो डू डोनेट दोज क्लोथ्स।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।

आज हमने मेट्रो की काफ़ी सारी बात करी ना, तो अब बात करते हैं दिल्ली की बसों की। और DTC बसेज में अब निगरानी के लिए AI सिस्टम्स लगाए जाएंगे और ये यात्रियों की मांग के अनुसार रूट्स पर बसों की संख्या घटाने बढ़ाने, नए रूट्स बनाने के साथ साथ बस ऑपरेशन की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए DTC AI बेस्ड बस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि BMS लागू करेगी। इसके

52 से ज्यादा डिपो के अलावा 7,000 से ज्यादा बसों की एक तरह एक ही जगह पर निगरानी कर पाएंगे। और इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि बसों के खराब होने तक की जानकारी मिलेगी, इसी के डैशबोर्ड पर मिलेगी, और इलेक्ट्रिक बसेस की जो बैटरी की हेल्थ होती है उसकी भी मॉनिटरिंग की जा सकेगी। साथ ही साथ बस कितने किलोमीटर चली है और अगर वो रूट पर ट्रैफिक उसको मिला है और उसमें डीले हो रहा है तो वो भी एस्टिमेटेड टाइम बताएगी कि कितने बजे तक आप पहुँच जाएंगे। इसका फायदा होगा जब फेस्टिवल्स होते हैं, पीक आवर्स में डिमांड ज़्यादा होती है, तो उन रूट्स पर बसों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ाया जाएगा। और अगर रूट पर किसी स्टॉप को मिस करती है बस नहीं रुकती है तो वो भी पता चल जाएगा। ओवर स्पीडिंग और अगर रूट बदलने जैसी गड़बड़ियाँ होती हैं तो उसका भी पता लगाया जा सकेगा और इसकी लाइव ट्रैकिंग संभव होगी। तो ये एक नया अपडेट है DTC बसेस में ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स के लिए। और एक और अपडेट है आपके लिए कि आप जा सकते हैं अमृत उद्यान, क्योंकि उसकी कल आखिरी तारीख है, 15 सितंबर, समर एनुअल्स का कल लास्ट है, तो डोंट मिस दिस। और जैसे मैंने कहा कि मौसम तो अच्छा हो ही जाएगा, अभी धूप है तो क्या हुआ, दिन आते आते बारिश हो जाएगी। और हाँ, आज मंडे है, आज क्लोज होता है, तो आप आज ना जाएं, कल जाइए, कल 15 सितंबर है, लास्ट डे है, तो डोंट मिस दिस चांस। और मैं चलती हूँ फिलहाल, क्योंकि निखिल आ चुके हैं लेकर दिल के तराने, गाने नए पुराने। मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे फिर इन्हीं एयरवेज पर, तब तक बाय बाय, टेक केयर।

नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। पेश अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता

एनडीए के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देशभर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। मुंबई में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में 2025-26 के राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज हरतालिका तीज के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की। भारतीय चालक दल के 13 सदस्यों को बचाया गया। ईरान और खाड़ी देशों के बीच आज ओमान में होने वाली बैठक स्थगित हुई। इसमें होर्मुज जलमार्ग मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों की हवाजाही की व्यवस्था पर आज चर्चा होनी थी। मौसम विभाग ने गुजरात में बहुत तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान है। भारतीय तीरंदाज धीरज बोम्बादेवरा ने जापान की नाकानिशी जूनिया को हराकर तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। और महिला 2020 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर एशिया कप पर अपना कब्जा किया। वहीं दिल्ली में 2020 श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
3: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
4: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
5: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
6: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
2: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
8: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
9: पता का चाय, गजब का स्वाद।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
3: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
2: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
3: हैं इतनी जल्दी?
2: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
5: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
6: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
7: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6।

0: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

और श्रोता आपको बता दो, मेरे जाने के बाद आप कौन से प्रोग्राम सुन पाएंगे? तो भाई ठीक 10:02 से पूजा आनंद आपके साथ होंगे लेके वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम मैचलेस म्यूजिक आर। इसके बाद फिर आप सुन पाएंगे 11:02 से एक और हमारा खास प्रोग्राम जिसका नाम है बॉलीवुड ट्रीज, जो के लेके आएंगे आकृति खंडूरी। और फिर प्ले कूल के साथ पूजा आनंद आपके साथ होगी 12:02 पर। और रेनबो हेल्पलाइन में आज हम बात करेंगे हिंदी दिवस पर विशेष, जिसमें अतिथि हैं प्रोफेसर रामेश्वर राय, पूर्व प्राध्यापक हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के। ये प्रोग्राम आप सुनेंगे आकृति खंडूरे के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए चलने की इजाजत, हम लोग फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: Diamonds, You Baby, what a track. If you've loved it, you know you heard it live only on the Matchless Music Hour on Akashvani FM Rainbow 102.6, musically yours. Infusing loads of energy, love and happiness in your life is all the tracks that we play here. Yes, you've been messaging in telling us how much you're loving the show, loving the vibe and loving the crazy energy of Monday morning. Driving away the Monday blues is this gorgeous track which will be coming on next. But before that, let's take that teeny weeny break. Just can't help it. Have to. So don't go anywhere. We'll be back in just a couple of seconds. Remember, this is the place to be because this is the Matchless Music Hour.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है. ये है जनगणना का अभियान. यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है. साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है. जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है. सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है. घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है. वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे. साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है. आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं. कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी. आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं. जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है. यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है. बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं. इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती. समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है. साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है. अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है. साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है. आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है. जनगणना 2027 को सफल बनाएं.

0: Okay, that is from the movie Zakhmi, and well, what a movie this was. This was, of course, Rina Roy, and she was looking so pretty. If you've not seen it, you just have to see this movie. And came way back here, I guess it was in 1975. Yeah, that's right. And of course, it did star, from what I gather, it did star Sunil Da, Tasha Parekh, Rakesh Roshan and Rina Roy. And well, this was a beautiful movie and the songs were so catchy. You just have to see it. The music director was Bappi Lahiri and it was directed by Raja Thakur. I've not seen this movie. I think so. I've seen it because I remember this song and that's why I got it for you. If you've liked this song, do give me a thumbs up. Our number remains the same, 9868107070. You tuned in live with us only on the Matchless Music Hour. Yes, this is the time for me to take a break. Stay close, stay tuned. We'll be back in just a couple of seconds.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
4: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
5: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
6: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
7: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
8: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
3: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
9: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
10: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
11: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।

0: की गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

नमस्कार, प्रस्तुत हैं इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। मुंबई में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में 2025-2026 के राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एनडीए के सहयोगी दल और कई स्वयंसेविक संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देशभर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को शुभकामनाएं दी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज हरतालिका तीज के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की है। भारतीय चालक दल के 13 सदस्यों को बचाया गया। ईरान और खाड़ी देशों के बीच आज ओमान में होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में भी तेज बारिश का अनुमान है। भारतीय तीरंदाज धीरज बोमा देवरा ने जापान के नाकानिशी जूनिया को हराकर

तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल्स में स्वर्ण पदक जीता है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला T20 एशिया कप का खिताब जीतने पर बधाई दी है। ये थे अभी तक के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार।

जी हाँ, गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो आपको। और गणपति उत्सव का मतलब केवल पूजा ही नहीं है, इसका मतलब है खुशी, उमंग, नाच और बप्पा के साथ खुलकर, दिल खोलकर जश्न मनाना। और इस जश्न को बॉलीवुड का जब तड़का मिलता है तो ये वाला गाना है, आपको याद आता है कि नहीं आता है? जी हाँ, डॉन फिल्म का ये गाना गणपति उत्सव के रंग में मुंबई की गलियों में एनर्जी और ढोल ताशों की धड़कन को एक साथ लेकर आता है। फेस्टिवल मूड को और हाई करते हैं।

आकाशवाणी रेनबो पर सुन रहा है बॉलीवुड ट्रेस और बॉलीवुड की चटपटी अटपटी मजेदार जायकेदार खबरों के साथ आपके साथ हूँ मैं आकृति खंडूरी। फिलहाल बॉलीवुड की अपडेट जो हम तक सबसे पहली आज के प्रोग्राम में आ रही है वो मेघना गुलजार के डायरेक्शन में बन रही अपकमिंग फिल्म दायरा के बारे में है, जो कि इसी फ्राइडे को सिनेमा हॉल्स में रिलीज होने वाली है। और रिलीज से ठीक पहले फिल्म के मेकर्स ने थ्रिलर फिल्म के मेन जो कैरेक्टर्स हैं उनके इंटेंस पोस्टर्स जो हैं वो जारी कर दिए हैं। फिल्म में एक्ट्रेस करीना कपूर खान और एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन हैं जो मेन लीड में हैं। और अभी सैटरडे को ही इस फिल्म के मेकर्स ने करीना कपूर के किरदार डीएसपी अजूनी कोहली का नया पोस्टर जारी किया था। और कल जो है पृथ्वीराज के दमदार किरदार डीसीपी रमन कुमार का एक नया पोस्टर जो है वो सोशल मीडिया पर रिलीज कर दिया गया है। आपको बता दें कि करीना और पृथ्वीराज की ये एक सच्ची घटना पर आधारित इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा फिल्म है, जिसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स की भूमिका निभा रहे हैं। मेघना गुलजार जो हैं वो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रही हैं और साथ ही साथ करीना और पृथ्वीराज के अलावा इस फिल्म में जितेंद्र जोशी, कृति जोग, संदेश कुलकर्णी, तृप्ति खामकर जैसे कलाकार हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया 18 सितंबर को ये फिल्म जो है ये सिनेमा हॉल्स में रिलीज़ होने के लिए तैयार है।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आज फिर लेट हो गए?
2: अरे यार, वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
1: क्यों बैठे थे बाहर?
2: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
1: मुझे पता है, HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
2: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ ही जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
4: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय काले खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
3: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
4: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

बॉलीवुड रील्स में भी अगली अपडेट हमारी प्रीति जिंटा के बारे में ही है. उन्हीं की फिल्म का ये ट्रैक भी मैं प्ले कर रही हूँ. और खास बात ये है जो अपडेट हम आपको देना चाहते हैं वो ये है कि कुणाल खेमू के डायरेक्शन में बनी वाइब फिल्म जो कि एक्शन कॉमेडी है 18 सितंबर को यानी कि इसी फ्राइडे को रिलीज होने वाली है. और बहुत सालों के बाद प्रीति जिंटा जो है इस फिल्म में वापसी कर रही हैं. फिल्म में उनके साथ कुणाल खेमू भी हैं और साथ ही साथ लापता लेडीज फेम वाली स्पर्श श्रीवास्तव और वंशिका धीर भी इसमें नजर आएंगे. फिल्म का डायरेक्शन और साथ ही साथ फिल्म को लिखा भी कुणाल खेमू ने ही है. और अगर बात करें कुणाल की तो मडगांव एक्सप्रेस के बाद जो कि 2024 में रिलीज हुई थी ये उनकी दूसरी फिल्म है जिसको वो डायरेक्ट कर रहे हैं. दो ऐसे दोस्तों की कहानी है जो अपनी ज़िंदगी खुद ठीक से नहीं संभाल पाते लेकिन एक गलती करते हैं और एक साजिश में जो है ये कहीं पर फंस जाते हैं. 18 सितंबर को ये फिल्म रिलीज हो रही है. इसका मुकाबला होगा हमने अभी मेंशन किया था दायरा फिल्म का करीना कपूर की फिल्म. दोनों फिल्म जो है 18 सितंबर को रिलीज हो रही है और बहुत ही लंबे टाइम के बाद प्रीति जिंटा जो है इस फिल्म के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रही है.

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

बॉलीवुड ट्री सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो पर, जिसे आप सुन सकते हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर, या फिर देश या दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो आप न्यूज ऑन एयर ऐप या फिर वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ सकते हैं आप आकाशवाणी रेनबो से। फिलहाल बॉलीवुड में हमने आपको बताया कि इस फ्राइडे को 2 फिल्म्स रिलीज हो रही हैं। दायरा की हमने आपसे बात की, वाइफ प्रेटी जिंटा जिसके साथ एक बार फिर कमबैक कर रही हैं बहुत सालों के बाद, वो भी 18 सितंबर को रिलीज होगी। इसके अलावा 25 सितंबर को इसी महीने रिलीज होगी फिल्म द वन फॉर्स ऑफ द फॉरेस्ट, और सिद्धार्थ मल्होत्रा, तमन्ना भाटिया, अनूप सोनी की ये फिल्म है। एक्शन एडवेंचर फैंटेसी है और इस फिल्म में उनके अलावा दीपक कुमार और अरुणाप कुमार ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। इसके अलावा एक और फिल्म दृश्यम द कंक्लूजन, वो भी बहुत ही जल्द रिलीज होने वाली है। उसकी रिलीज डेट है

2 अक्टूबर की। अभिषेक पाठक की दृश्यम द कंक्लूजन एक मिस्ट्री थ्रिलर है और दृश्यम सीक्वल का तीसरा पार्ट है ये। इसमें अजय देवगन हैं, जयदीप अहलावत हैं, प्रकाश राज हैं, तब्बू हैं और रजत कपूर जैसे आर्टिस्ट हैं। 2 अक्टूबर को दृश्यम द कंक्लूजन जो है वो रिलीज होने वाली है।

सुन रहे हैं आप बॉलीवुड रील्स आकाशवाणी रेनबो पर और आकाशवाणी रेनबो क्योंकि बॉलीवुड रील्स में अब वो समय आ चुका है जब हम आपसे पूछने वाले हैं बॉलीवुड सरताज का आज का सवाल और इस सवाल का सही जवाब हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर सबसे पहले सही पहुंचाकर बन सकते हैं आप आज के बॉलीवुड सरताज। प्रस्तुत है आज का सवाल दायरा फिल्म जो कि इसी फ्राइडे को 18 सितंबर को रिलीज हो रही है। आपने मुझे ये बताना है कि दायरा फिल्म को किसने डायरेक्ट किया है। हमने इस बारे में चर्चा आज के प्रोग्राम में भी की थी। करीना कपूर हैं इस फिल्म में, पृथ्वीराज सुकुमारन हैं और इसी फ्राइडे को रिलीज हो रही है। बताइए मुझे दायरा फिल्म की डायरेक्टर कौन है, किसने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है 9868107070 पर।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

बॉलीवुड से अटैच सवाल हमने आपसे पूछा था कि दायरा फिल्म को डायरेक्ट किसने किया है। ये फिल्म जो कि 18 सितंबर को रिलीज होने वाली है और करिश्मा कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म में लीड रोल पर हैं। आप में से बहुत से लोगों ने हम तक इस फिल्म के जो ये सवाल जो था इसका फिल्म का नाम बताया है, लेकिन आज के प्रोग्राम में सबसे पहले इस फिल्म का डायरेक्टर जो है उनका सही नाम बताकर आज बॉलीवुड सरताज का जो खिताब जीत रहे हैं वो कौन है बताते हैं।

जी हाँ, तो इस डायरेक्टर का सही नाम जो कि है मेघना गुलजार, हम तक सबसे पहले पहुंचाने वाले हैं कृष्ण कुमार मिश्र जो कि दिल्ली के हैं, और इसी सवाल के सही जवाब के साथ बनते हैं आज के बॉलीवुड सरताज। बहुत बहुत बधाई हो कृष्ण कुमार मिश्र जी आपको। इसके अलावा भी बहुत से लोगों ने सही जवाब हम तक पहुंचाए हैं, सभी का नाम जरूर लेना चाहूंगी। सलीम मलिक साहब, उनका भी सही जवाब आया है। तरुण कोहली सूरज कुंड से, प्रवीण चौहान साहब हम तक मैसेज पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा मैसेज देने वाले हैं मसूद मिर्जा, पूजा और कोमल हरिनगर दिल्ली से। ये मैसेज हम तक आया है अनिल शाह साहब का उत्तम नगर से। इसके अलावा पंकज का अमरावती से, धर्म भाटिया जी का ईशा धर्मशाला से, मेघना गुलजार बताने वाले उमेश कुमार, मेघना गुलजार कहने वाले कंचन सोनिया विहार से, तौफीक अहमद साहब अंशु सोनिया विहार से, राजकुमार के संतानी साहब का भी मैसेज हम तक आया है, कमलेश यादव करनाल से, गुलजार कहने वाले मनोज कुमार साहब भवाना हरियाणा से, फैज शिव विहार से उत्तम नगर से, फहीम खान मेघना गुलजार इन्होंने भी सही बात कही है, ऋषि कटारिया, पवन कटारिया, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, इनका भी सही जवाब हम तक पहुंचा है। इसके अलावा ये हैं प्रवीण दिल्ली से, लेकिन आज के प्रोग्राम में सबसे पहले इस सवाल का सही जवाब जो कि है दायरा को डायरेक्ट किया है मेघना गुलजार ने, बताने वाले कृष्ण कुमार मिश्र दिल्ली से जो बन रहे हैं आज के बॉलीवुड सरताज। और इसी के साथ मैं यानी कि आकृति भी बॉलीवुड सरताज से फिलहाल विदा लेती हूँ। कुछ ही मिनटों में पूजा आपके साथ रहेंगी प्लेट को लेकर, और 1 बजे आज हिंदी दिवस है और रेनबो हेल्पलाइन में भी आज हम हिंदी दिवस के अवसर पर ही बात करेंगे। और कहते हैं ना कि इंसान की पहचान केवल उसके नाम से नहीं होती, उसकी आवाज़ से होती है, उसके विचारों से होती है, और उन विचारों को किन शब्दों से वो किस भाषा में प्रकट करता है उससे भी होती है। और आपकी और हमारी वो भाषा है हिंदी, जो हमारी पहचान का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। आज हिंदी दिवस के अवसर पर हेल्पलाइन में बात होगी हिंदी हमारी बात हमारी। हमारे साथ होंगे अतिथि प्रोफेसर रामेश्वर राव राय जो कि पूर्व प्राध्यापक हैं हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में, और मैं आकृति ही आपके साथ रहूंगी 1:02 से 2 बजे तक। आशियाना प्रोग्राम लेकर 2:02 पर आएंगी शालिनी खंडेलवाल, और 3 बजे आज रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम में बात होगी जेरियाट्रिक हिप फ्रैक्चर्स की। और हमारे साथ इस विषय पर जानकारी देने के लिए बहुत ही अनुभवी डॉक्टर्स होंगे पैनल में, डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जो कि एक्स ट्रॉमा सेंटर चीफ हैं एम्स के, और डॉक्टर प्रसून चैटर्जी जो कि वो भी एम्स के पूर्व डिपार्टमेंट ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन में हैं। और ज़रूर जानिएगा, स्पेशली ओल्ड एज में जेरियाट्रिक हिप फ्रैक्चर जो है वो बहुत होता है, क्या करना चाहिए, क्या एहतियात बरतनी चाहिए, ट्रीटमेंट क्या होता है, बहुत जानकारियाँ आपको मिलेंगी इस विषय में।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा

घरों के शुचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान शुचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: एक से दो बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
3: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
2: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
5: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
6: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
7: पता का चाय, गजब का स्वाद।
8: आज फिर लेट हो गए।
9: अरे यार, वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
8: क्यों बैठे थे बाहर?
9: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
8: मुझे पता है, HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूँ। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
9: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ ही जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
10: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी

0: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: रेडियो स्टेशन BTS।

नमस्कार, प्रस्तुत है इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार

सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। मुंबई में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में 2025-2026 के राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एनडीए के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को शुभकामनाएं दी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज हरतालिका तीज के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की। भारतीय चालक दल के 13 सदस्यों को बचाया गया। ईरान और खाड़ी देशों के बीच आज ओमान में होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में तेज बारिश के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में भी तेज बारिश का अनुमान है। भारतीय तीरंदाज धीरज बोमा देवरा ने जापान के नाकानिशी जूनिया को हराकर तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला T20 एशिया कप का खिताब जीतने पर बधाई दी। तो ये थे अभी तक के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड।
2: रेनबो हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आकृति खंडूरी और आज हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और कहना आपसे यही चाहती हूँ कि जो शब्द होते हैं ना, वो समय के साथ बदलते हैं, उन्हें बोलने के अंदाज भी बदलते हैं, लेकिन कुछ भाषाएं, कुछ बोलियां ऐसी होती हैं जो कई पीढ़ियों के बीच एक पुल बनकर खड़ी होती हैं। हिंदी भी हमारी एक ऐसी ही विरासत है, हिंदी जिसने हमारे जीवन के अनगिनत रंगों को शब्द दिए हैं। हिंदी दिवस के अवसर पर एक बार फिर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आज फिर लेट हो गए?
2: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
1: क्यों बैठे थे बाहर?
2: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
1: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूँ बाहर क्यों बैठे थे। रवि भैया को घर ही ले आते।
2: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ की जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय।

0: गजब का स्वाद।
1: राहुल अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
2: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
1: इम्पॉसिबल
2: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: मैं है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: रेनबो हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आकृति खंडूरी, और कहना आपसे यही चाहती हूँ कि कुछ ऐसी भाषाएं होती हैं, कुछ ऐसी बोली होती हैं जो हम बोलते हैं, लेकिन हिंदी की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी भाषा है जिसमें शब्द केवल अर्थ नहीं देते, मुझे लगता है दिल को छू लेते हैं, हमारी भावनाओं को छू लेते हैं। हिंदी दिवस के विशेष अवसर पर आइए शब्दों से थोड़ा और रिश्ता जोड़ें और उस भाषा की बात करें जो हमारी अभिव्यक्ति ही नहीं हमारी संवेदना भी है। हिंदी हमारी, बात हमारी। रेनबो हेल्पलाइन में आज का हमारा यही विषय है और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे आज के अतिथि प्रोफेसर रामेश्वर राय, जो कि पूर्व प्राध्यापक हैं हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में। प्रोफेसर राय, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका रेनबो हेल्पलाइन में।
2: धन्यवाद
1: जी। और श्रोता, अगर आप प्रोफेसर राय से या फिर हिंदी दिवस के अवसर पर कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें अपने मैसेजेस के माध्यम से अपनी बात पहुँचा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। और आपके सवालों को लूं, उससे पहले मेरे बहुत से सवाल हैं प्रोफेसर राय। हिंदी हमारी, बात हमारी, आपके लिए इसका क्या अर्थ है?
2: हिंदी हमारी, बात हमारी, इस वाक्य का मेरे लिए अर्थ है कि हम एक ऐसे देश में हैं जहां पर अधिकांश लोग हिंदी बोलते हैं। एक ऐसी भाषा है जिसमें हमारी समूची परंपरा और हमारी समूची सांस्कृतिक स्मृति और भविष्य के स्वप्न निहित हैं। इसलिए हिंदी मेरे लिए भाषा नहीं है, यह इतिहास भी है, यह वर्तमान भी है और भविष्य का सपना भी है। इसलिए जब मैं हिंदी बोलता हूँ तो मैं हिंदुस्तान बोलता हूँ।
1: जी जी। अच्छा, हिंदी जैसा हमने कहा कि हम कहते हैं हमारी अपनी भाषा है, हमारी, तो इस अपनेपन को हम कैसे परिभाषित करेंगे?
2: अपनेपन को किसी भी संदर्भ में हम कैसे परिभाषित करते हैं? अपनेपन का अर्थ होता है कि जो हमारी भावनाओं का आधार हो, जिसमें हम हंसते हों, जिसमें हम रोते हों, जिसमें हम सपने देखते हों, जिसमें हम समय और इतिहास का मानचित्र बनाते हों, वह अपना होता है। अपना जो केवल हमारे दिमागों में नहीं है, हमारे दिलों में है। दिमागों में तो दुनिया के नक्शे हैं और दुनिया के लोग हैं और दुनिया के देश हैं, लेकिन जो दिल में है, तो हिंदी को जब मैं अपना कहता हूँ, अपनी भाषा कहता हूँ, तो इसका अर्थ मेरे लिए बहुत साफ है
1: जी,
2: कि मैं यही हूँ और मैं इसी में अपने को दर्ज करता हूँ, इसी में अपने को सोचता हूँ, इसी में सपने देखता हूँ।
1: जी जी। इनफैक्ट आपने बहुत कहा कि हम हिंदी में ही सोचते हैं, हिंदी में ही सपने देखते हैं, लेकिन आज के समय में अगर मैं बात करूँ तो आज का युवा थोड़ा अलग हो गया है। कुछ जो सेक्शन है समाज का, जैसे कि सोशल मीडिया में हिंदी जो है वो देवनागरी में नहीं लिखी जाती, रोमन लिपि में लिखी जाती है, और ये एक बहुत ही आम बात हो गई है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्या हिंदी को हम इस तरीके से कहीं खो देंगे?
2: थोड़ा पीछे हमें चलना पड़ेगा। 15 अगस्त 1947 को हमें राजनीतिक आज़ादी मिली, लेकिन वो मैं काले की आज़ादी नहीं थी। तो 14 सितंबर 1949 को जब संविधान ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया और संविधान

0: संविधान का प्रावधान 343(1) जब कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी, तो एक संवैधानिक प्रतिज्ञा और स्वप्न था कि हम राजनीतिक गुलामी से ही नहीं बल्कि हम सांस्कृतिक गुलामी से भी मुक्त होंगे। हमारी कुछ अदृश्य गुलामियाँ होती हैं जिसकी कड़ियाँ दिखाई नहीं देती, वो अदृश्य गुलामियाँ दरअसल भाषा में होती हैं
1: जी।
0: तो हम राजनीतिक स्तर पर भी स्वतंत्र हों लेकिन सांस्कृतिक स्तर पर भी स्वतंत्र हो, यह सपना देखा गया। तो आज की जो तारीख है दरअसल उस गुलामी को याद करने का भी दिन है। और आपने सवाल पूछा कि आज की जो पीढ़ी है, जो सोशल मीडिया है, इसमें स्क्रिप्ट रोमन में आ रही है। मुझे लगता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि जिस भाषा में यूरोप की पूरी जनसंख्या से अधिक उत्तर भारत का मध्य वर्ग हो और उस भाषा की एक लिपि हो और उस लिपि में मैं आऊँगा जाऊँगा या खाऊँगा या मैं सोऊँगा सोचूँगा आप नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब है कि मकाले की गुलामी अभी बरकरार है। ये गुलामियों को याद करने और दुखी होने का भी एक स्तर पर दिन है।
1: जी, अच्छा एक नई हिंदी की बात हो रही है क्योंकि इसी विषय पर चर्चा चल रही है और कितनी सारी पुस्तकें जो हैं वो प्रकाशित हो रही हैं नई हिंदी में और बहुत ज़बरदस्त बिक रही हैं। तो ये जो हिंग्लिश एक हिंदी के नए विकास के रूप में देखा जा रहा है, आप इसको चुनौती के तौर पर देखते हैं या क्या सोचते हैं इस विषय में?
0: भाषा के बारे में दो तीन चीज़ें बहुत साफ होनी चाहिए। एक तो यह है कि भाषा कभी भी स्थिर होती नहीं है, भाषा शुद्ध नहीं होती, शुद्ध केवल बोतल का पानी होता है, नदी का नहीं। तो भाषा निरंतर बदलती है कई तरह की परिस्थितियों के कारण। लेकिन जिस तरह से एक बीज आम का अंकुरित होता है और वृक्ष बनता है और एक दिन सूख जाता है, बीज से लेकर सूखने तक की पूरी यात्रा में वो आम ही रहता है। एक नदी निकलती है हिमालय से और सागर में समा जाती है, उसमें कई नदियाँ मिलती रहती हैं लेकिन रहती गंगा ही है। तो भाषा स्टैटिक नहीं होती, भाषा शुद्ध नहीं होती, लेकिन वह अपनी पहचान नहीं खोती, वह समाहित करती है। तो मैं समझता हूँ कि समाहित करने की पूरी प्रक्रिया
1: जी।
0: और हिंदी को अंग्रेजी को गिरवी रख देने की स्थिति, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप याद करें कि एक ज़माने में वैदिक संस्कृत रही होगी, उस समय शायद प्राकृत बोली जा रही थी, फिर अपभ्रंश और फिर पुरानी हिंदी आई और फिर इसके बाद बोलियाँ आईं, भारतीय आर्य भाषाएँ आईं और अंततः एक बहुत सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली कौरवी जिसको हम कहते हैं, वो खड़ी बोली हिंदी के रूप में स्थापित हुई, स्वाधीनता आंदोलन की भाषा बनी। और एक तरह से इस हिंदी के आईने में हिंदुस्तान के बदलते हुए मिजाज और इतिहास को हम देखते हैं। जब मुग़ल आए तो फारसी मिश्रित हुई इसमें और हिंदी की खूबसूरती बढ़ी
1: और बढ़ी।
0: दिक्कत इसमें नहीं है कि अंग्रेजी के शब्द आ रहे हैं, शब्दों से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है उस मानसिक संरचना से
1: जी,
0: जिसमें अंग्रेजी हिंदी की तुलना में अधिक समर्थ, श्रेष्ठ और उपयोगी है। दिक्कत यहाँ है
1: जी, सोच में दिक्कत है,
0: सोच में दिक्कत,
1: भाषा की दिक्कत उतनी नहीं,
0: नहीं
1: है। अच्छा, आप हिंदी से इतने लंबे समय से जुड़े रहे हैं, हिंदी मतलब एक तरह से आपका व्यक्तित्व, तो मुझे जब आपसे बात कर रही हूँ तो लग रहा है, तो कोई ऐसी बात जो हिंदी में कही जाती है या फिर यूँ कह लूँ कि कोई ऐसा शब्द जो आपको अंदर तक छूता है या ऐसी कोई अभिव्यक्ति जो किसी और भाषा में हम कर ही नहीं सकते, ऐसे कुछ हैं, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी पंक्तियाँ?
0: मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी भाषाओं के पास उस समाज की गहनतम अनुभूतियों को व्यक्त करने की क्षमता है। इसलिए जाहिर है कि मैं तो ये नहीं कह सकता कि बात केवल हिंदी में कही जा सकती है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ बातें केवल हिंदी में सोची जा सकती हैं क्योंकि हिंदी में एक भूगोल, हिंदी में एक परंपरा, हिंदी में एक संस्कृति, हिंदी में एक मानवीय संबंध हैं। जैसे मैं आपको याद दिलाऊं कि छायावाद की जो हिंदी है
1: जी,

0: छायावाद के हिंदी के बारे में कहा गया कि ये बोलचाल की भाषा नहीं है, लेकिन छायावाद को पढ़ने वाला वो समाज मौजूद था, इसलिए वो भाषा थी
1: जी।
0: मुझे हमेशा ये लगता है कि कोई भी भाषा शून्य में होती नहीं है। भाषा और समाज का एक बहुत गहरा संबंध होता है। भाषा पर उस समय के समाज की परछाइयाँ होती हैं। मैं एक जैसे उदाहरण देता हूँ, फिल्मी गाने से उदाहरण देता हूँ
1: जी।
0: हेमंत साहब ने गाया इसे, हेमंत कुमार ने, छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा
1: जी,
0: कि जैसे मंदिर में लौ दिए की। मुझे नहीं लगता कि इसको आप जब ट्रांसलेट करेंगे दुनिया की किसी भी भाषा में तो शायद ट्रांसलेट तो हो जाएगा, लेकिन जो बात हिंदी में कही जा रही है उसको अनुवाद में कह पाना संभव नहीं है। तो प्रेम की जो पूरी अवधारणा है उसकी एक परछाई इस वाक्य में है। और मुझे ऐसा लगता है कि बदलते हुए समय में भाषा का मिजाज बदलता है, और उस बदलाव के माध्यम से भी हम समाज को समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि वो कहाँ पर खड़ा है। जैसे वह प्यार जो किसी समय मंदिर में जलता हुआ दिया है, पवित्र दिया है, वो कालांतर में जाकर कमीना भी हो सकता है। मुश्किल कर दे जीना इश्क कमीना, तो जो इश्क इबादत है एक ज़माने में वो कमीना भी हो सकता है। ये केवल वक्तव्य नहीं है। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, जिस भाषा में अपने प्रियतम के साथ चांद के पार जाने का सपना देखा जा सकता है, उसमें खंडाला जाने का भी प्रस्ताव हो सकता है।
1: जी, जी।
0: तो चांद के पार और खंडाला के बीच जो रिश्ता है उसमें एक सांस्कृतिक सफर है दरअसल
1: जी।
0: इस सफर को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए,
1: रखना ही होगा। और इसी नोट पर आइए ममता फिल्म से इसी गाने को सुनते हैं, हेमंदा की आवाज में, छुपा लो यूं।

रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आकृति खंडूरी और कहना आपसे यही चाहती हूँ कि किसी व्यक्ति की पहचान जो है उसकी नाम से ही नहीं होती बल्कि उसके विचारों से भी होती है। और अगर विचार जैसे होते हैं वैसे ही शब्दों का, वैसे ही भाषा का, वैसे ही बोली का प्रयोग भी हम करते हैं। हिंदी

0: दिवस के अवसर पर रेनबो हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ भाषा की ही नहीं, बल्कि भाषा से जुड़े उस एहसास की जिसे हम अपना कहते हैं, जो अपना लगता है। क्योंकि जब शब्द अपने होते हैं तो बात जो हम कहते हैं अपनी ज़ुबान से वो भी किसी के दिल तक पहुँच ही जाती है। आज के प्रोग्राम में हमारे अतिथि हैं प्रोफेसर रामेश्वर राय, जो कि पूर्व प्राध्यापक हैं हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में, और आपके सवाल हम तक पहुंच रहे हैं 9868107070 के माध्यम से। और फिलहाल ये सवाल हम तक आया है भोपाल से प्रिया का, प्रोफेसर राय, और ये कहती हैं कि आज हम बातचीत में हिंदी को और अंग्रेज़ी को मिलाकर बोलते हैं, क्या इससे हिंदी की खूबसूरती बढ़ रही है या कम हो रही है, आप क्या सोचते हैं?
1: हिंदी के वाक्यों में या बोलचाल में अंग्रेजी के शब्दों का आना बहुत अस्वाभाविक नहीं है।
0: जी,
1: हम बहुत दुखी हो सकते हैं अगर इतिहास की तरफ से पीठ मोड़ कर इसको देखें। इसी तरह से फारसी, अरबी, तुर्की के शब्द भी आए होंगे शुरुआती दौर में, और उसको समाहित किया हिंदी ने।
0: जी,
1: भाषा ने। अंग्रेजी के शब्दों की मिलावट परेशानी नहीं है, मूल परेशानी ये है कि शब्दों की मिलावट करने वाला एक खास तरह के श्रेष्ठता बोध से ग्रस्त है। दूसरा इसमें यह है कि जिन शब्दों के पूरी तरह से पारंपरिक पर्याय हमारे सामने उपलब्ध हैं, उन शब्दों के लिए भी अगर अंग्रेजी शब्द का प्रयोग हो रहा है तो ये निश्चित रूप से गहरे सांस्कृतिक चिंता का विषय है। माएँ बच्चों को सेब नहीं एप्पल खिला रही हैं, और उनकी उंगलियां जब आकाश की तरफ उठती हैं तो चंद्रमा की तरफ नहीं, मून की तरफ उठ रही हैं।
0: जी,
1: ये जो मून और एप्पल है, समस्या यहाँ पर है। अंग्रेजी आएगी, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, जिस तकनीक की दुनिया में रह रहे हैं, वो तकनीक की दुनिया, विकास की वह पूरी अवधारणा, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यूरोप से आया है। जाहिर है कि जब चीज़ें आएंगी तो नाम लेकर आएंगी, तो उन नामों का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। उसका अनुवाद आप करेंगे तो संप्रेषण में बहुत दिक्कत पैदा होगी। कंप्यूटर का अनुवाद आप कर सकते हैं लेकिन उचित नहीं है, स्मार्टफोन का आप अनुवाद कर सकते हैं लेकिन उचित नहीं है। लेकिन जिन शब्दों के पर्याप्त पर्याय हमारे सामने हैं, उसे एक गहरी सांस्कृतिक हीनता ग्रंथ के कारण अगर हम जबरदस्ती या स्टेटस के कारण, श्रेष्ठता के कारण अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसा हो रहा है और ये बहुत चिंता का विषय है।
0: इसीलिए मैं इसी जब इस बारे में चर्चा हो रही है तो सर आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हिंदी की समकालीन चुनौतियाँ क्या हैं और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए कोई रास्ता है, क्या करें हम?
1: हिंदी की चुनौतियों पर अगर हम बातचीत करें तो मेरे ख्याल से तीन बड़ी चुनौतियाँ हैं। पहली चुनौती तो उत्तर भारत का मध्य वर्ग है, क्योंकि मध्य वर्ग संगोष्ठियों में और सार्वजनिक मंच पर निश्चित रूप से हिंदी की चिंता करता है, लेकिन अपने पूरे व्यवहारिक जीवन में, अपने पूरे ताने बाने में वो बुनियादी तौर पर अंग्रेजी दाँ है। हिंदुस्तान के जो सबसे बेहतर और महंगे अंग्रेजी स्कूल हैं वे उत्तर भारत में हैं। तो एक समस्या तो ये हिंदी भाषी मध्य वर्ग ही है।
0: जी,
1: बशीर भद्र की एक पंक्ति है कि मैं अपनी ही राह में दीवार बन के बैठा हूँ। तो हिंदी के मार्ग में जो जो बड़ी बाधा है वो मध्य वर्ग की यह संरचना है, इस तरह की सोच है। दूसरी बड़ी चुनौती ये है कि जिस भाषा के पास लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए का बाज़ार हो, और निश्चित रूप से बाज़ार की एक बहुत ताकतवर भाषा है, वो फिल्म की भाषा है, विज्ञान

0: विज्ञापनों की भाषा है, लेकिन क्या वो ज्ञान विज्ञान की भी भाषा है? क्या दुनिया का जो श्रेष्ठतम ज्ञान विज्ञान है, क्या वो हिंदी में उपलब्ध है? तो हम केवल साहित्य, संस्कृति और भावना के आधार पर एक भाषा को जीवित नहीं रख सकते। जो भाषा हमें सामाजिक प्रतिष्ठा दिला सकती है और जिस भाषा में हमारा कैरियर, जिस भाषा में हमारा भविष्य सुरक्षित रह सकता है, उसी भाषा को प्रतिष्ठा भी मिलती है। हिंदी को इस दिशा में बहुत आगे बढ़ना है और मुझे लगता है कि हिंदी को जब तक ज्ञान विज्ञान की भाषा नहीं बनाया जाएगा, और कम से कम कुछ ऐसी स्थितियां जब तक पैदा नहीं की जाएंगी कि हिंदी बोलना या हिंदी में पढ़ना या हिंदी दा होना किसी हीनता ग्रंथ की तरफ न ले जाए बल्कि गर्व की तरफ ले जाए, तो मुझे लगता है कि इस चुनौती से हम पार पा सकते हैं।
1: जी,
0: लेकिन लेकिन आपने कहा कि भविष्य है कि नहीं है। अगर इसको थोड़ा सा साहित्य की दुनिया से और चिंतन की दुनिया से बाहर राजनीति की तरफ जाएं, तो इस समय आप देखेंगे कि जो भारतीय संसद है इसमें अहिंदी भाषी लोग भी हिंदी में बोलते हैं, और उत्तर भारत के बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं
1: जी
0: जो अंग्रेजी नहीं जानते।
1: अभी ब्रिक्स सम्मेलन हुआ नई दिल्ली भारत मंडपम में, और प्रधानमंत्री जी ने हिंदी में बात की। हर मौके पर उन्होंने हिंदी में
0: तो
1: बात की।
0: मतलब ये पॉजिटिव है, ये बहुत सकारात्मक है
1: जी।
0: और मुझे लगता है कि कोई भी समस्या और कोई भी निराशा इतनी बड़ी नहीं हो सकती जो एक देश और एक जीवन के भविष्य से बड़ी हो। वो ढल जाएगा एक दिन।
1: जी जी, एक मैसेज हम तक पहुंचा है रिया का दिल्ली से, और रिया कहती हैं कि हिंदी हमारी है, बात भी हमारी है, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये कहती हैं मैं हिंदी के शब्दों को प्रयोग करने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन एक चुनौती इनको सामने आती है। वो कहती हैं कि कितनी बार सुनने वाला थोड़ा ठहर कर बोलता है कि इसका क्या मतलब हुआ। तो इनकी ये जो समस्या है, अपनी इस दुविधा को वो आपके साथ शेयर कर रही हैं।
0: इस संबंध में मुझे इतना ही कहना है
1: जी
0: कि दूसरों की परेशानी से आप परेशान ना हों। आप हिंदी में अपनी बात बेहतर तरीके से अगर कह रही हैं तो आप बिल्कुल बेहतर तरीके से हिंदी में कहिए
1: जी।
0: सामने वाला समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, ये उसकी समस्या होनी चाहिए। वॉर काउंसिल की मीटिंग में 1918 में गांधी को इनवाइट किया गया। गांधी ने शर्त रख दी कि मैं हिंदी में ही बोलूँगा। तो अधिकारी ने कहा कि जो वायसराय है वो हिंदी नहीं समझता, तो कहा कि उनकी समस्या है। तो सामने वाला अगर हिंदी समझने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है तो इस कठिनाई का समाधान उसे ढूंढना है, हमें नहीं।
1: जी जी, विवेक का मेरठ से प्रश्न आया है। वो कहते हैं कि सर, हिंदी बोलना और हिंदी पर गर्व करना, ये क्या दो अलग अलग बातें हैं? मेरे ख्याल से ये भी उसी दुविधा से गुजर रहे हैं कि गर्व तो करते हैं लेकिन बोलते हुए इसी तरह की परेशानियां आती हैं कि लोग समझ नहीं पाते।
0: मुझे लगता है कि हिंदी बोलने की जरूरत है। गर्व करना एक तरह का कॉस्ट्यूम है
1: जी।
0: गर्व नहीं करना है, उसमें जीना है। हम सांस लेने पर गर्व कहाँ करते हैं? तो गर्व तो एक बहुत ही नाटकीय भंगिमा है केवल। तो मुझे लगता है कि हिंदी बोली जाए, और हिंदी में इतनी क्षमता है
1: जी
0: कि वो गहरी से गहरी बात को भी पूरे प्रभाव के साथ दर्ज कर सकती है। मतलब एक समस्या आती है कि बोलचाल की हिंदी और शुद्ध हिंदी। तो इसी देश में एक सीरियल बना चाणक्य, और चाणक्य की अगर भाषा आप देखेंगे या आप महाभारत की भाषा देख लीजिए, राय मासूम रजा ने लिखा, वो अद्भुत हिंदी है, लेकिन उसने पूरे देश के साथ कम्युनिकेट किया।
1: बिल्कुल, लोग जुड़े और बहुत जुड़े। जी जी,
0: तो इसलिए आप बिना किसी दुविधा के और बिना किसी आरोपित गर्व के आप हिंदी में इत्मीनान से विश्वास
1: के
0: साथ बात कीजिए,
1: हिंदी में सोचिए, हिंदी में हिंदी बोलिए। गर्व हम सच सही मायने में तभी करेंगे अगर हम हिंदी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे। सर एक चीज और बताइए, एक और प्रश्न है कि जब आप हिंदी बोलते हैं तो भाषा की शुद्धता जो है वो महत्वपूर्ण है या भाषा का सहज होना वो ज्यादा जरूरी है?
0: भाषा की सहजता और भाषा की शुद्धता में कोई विरोध नहीं है। सहज भाषा अशुद्ध हो
1: जी,
0: ऐसा सोचना ही मुझे दिक्कत में डाल रहा है। दुनिया का कोई भी जंगल असहज नहीं होता
1: जी,
0: लेकिन वो दुनिया का सबसे पवित्र और शुद्ध जगह भी होता है। तो सहजता और शुद्धता ये दरअसल एक साथ हैं। भाषा बुनियादी तौर पर अगर आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को, आप के विवेक को
1: जी
0: पूरी गहराई से व्यक्त कर पा रही है तो पर्याप्त है।
1: आपसे पूछने के लिए तो बहुत से प्रश्न हैं लेकिन समय जो है वो बहुत ही तेजी से गुजर जाए बात, क्योंकि हमसे बहुत युवा श्रोता हमसे जुड़े हुए रहते हैं। तो ये आजकल कंटेंट एंड सोशल मीडिया का युग है, ज़माना है, और बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि सोशल मीडिया के इस दौर में हिंदी जो है वो कंटेंट की दुनिया में बहुत पॉपुलर, बहुत मशहूर हो रही है। तो आपको भी लगता है कि हिंदी के लिए डिजिटल युग एक नए दौर के तौर पर आ रहा है, ऐसा आपको भी लगता है? हिंदी में बहुत कंटेंट राइटर्स हैं और बहुत चीजें जो है वहां पे डाली जा रही हैं।
0: मुझे लगता है कि डिजिटल दुनिया ने दुनिया को एक आसमान दिया है। उस आसमान में हिंदी की भी उतनी ही हिस्सेदारी है
1: जी,
0: जितनी कि दुनिया की किसी भी भाषा की है। इसलिए डिजिटल दुनिया ने, डिजिटल प्लेटफॉर्म ने हिंदी के प्रचार और प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये कहना कि भाषा उससे ख़राब हुई है, तो ख़राब भाषा हर ज़माने में थोड़ी बहुत रही होगी, लेकिन मुझे लगता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के मिलने से हिंदी को एक विश्व व्यापकता मिली है और सभी तरह के लोग, सभी तरह के भूगोलों में रहने वाले लोग, सभी तरह की संस्कृतियों में रहने वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला है। हिंदी के भूगोल का विस्तार हुआ है, हिंदी को एक आत्मविश्वास मिला है डिजिटल दुनिया से। तो मुझे लगता है कि हिंदी के लिए शुभ है
1: जी। धन्यवाद बहुत बहुत आपका प्रोफेसर राय, आप रेनबो हेल्पलाइन में आए और हिंदी दिवस के अवसर पर आपकी उपस्थिति हमारे लिए सौभाग्य है।
0: धन्यवाद
1: जी। उसी के साथ मैं आकृति भी आज की रेनबो हेल्पलाइन से लेती हूँ विदा, और चलते चलते बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हिंदी, जैसा कि प्रोफेसर राय से भी हमने जाना, सिर्फ शब्दों को जोड़ने की भाषा नहीं है, ये हमारी अभिव्यक्ति है, ये हमारी पहचान है, यहीं से हमारा व्यक्तित्व बनता है। तो आइए हिंदी को हिंदी दिवस तक ही सीमित ना रखें, इसे बोलें, इसे पढ़ें, इसे लिखें और इसे सबसे बढ़कर मुझे ऐसा लगता है कि महसूस करें। इसी के साथ आकृति को दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक नई बात, एक नए अंदाज के साथ रेनबो हेल्पलाइन में। नमस्कार।

नमस्कार, दो बज चुके हैं। पेश है इस घंटे के आकाशवाणी मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि सेना के अथक प्रयासों के चलते जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी बलों की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। मुंबई में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में 2025-26 के राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एनडीए के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देशभर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को शुभकामनाएं दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज हरतालिका तीज के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2020 के बाद से 9 राज्यों में 147 कोयला खंडों की नीलामी की गई है। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की। भारतीय चालक दल के 13 सदस्यों को बचाया गया। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, ओडिशा और बिहार में भी तेज बारिश की आशंका है। भारतीय तीरंदाज धीरज बोम्मादेवरा ने जापान के नाका निशी जुनिया को हराकर तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला T20 एशिया कप का खिताब जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। ये थे अब तक के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो दोस्तों, जी हाँ, आप सुन रहे हैं आपका अपना आकाशवाणी रेनबो और शुरू हो चुका है आपका फेवरेट प्रोग्राम आशियाना। और आशियाना में हम बात करते हैं घर की, परिवार की, और कैसे जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग किया जाए, इस पर होती है आशियाना में ढेर सारी बातें। तो दोस्तों, आजकल कई जगह पर बच्चों की हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स की शुरुआत होने वाली है, और ऐसे में घर में ना आ रहे हैं बच्चों के असाइनमेंट्स, उनके प्रोजेक्ट्स, और उसको पूरा करने के लिए टेंशन देखी जा रही है। और ऐसे में पेरेंट्स सबसे ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। प्रोजेक्ट्स कब जमा करने हैं, सामान क्या क्या चाहिए,

बनाएंगे कैसे, और इन सवालों के बीच कभी कभी जो घर का माहौल होता है ना वो स्ट्रेस से भर जाता है। लेकिन क्या बच्चों का प्रोजेक्ट सच में पेरेंट्स के लिए टेंशन की वजह होना चाहिए, या फिर यही प्रोजेक्ट और असाइनमेंट्स बच्चे के साथ कुछ सीखने, उसकी क्रिएटिविटी को समझने और फैमिली टाइम बिताने का एक खूबसूरत मौका बन सकता है। तो आज आशियाना में करेंगे इसी टॉपिक पर बात, और बच्चों की प्रोजेक्ट्स और पेरेंट्स का स्ट्रेस, साथ ही जानेंगे कि कैसे इस पूरे प्रोसेस को प्रेशर की बजाय लर्निंग और बॉन्डिंग का शानदार अनुभव बनाया जा सकता है।

दोस्तों, बच्चों ना बच्चे जीवन को भरपूर तरीके से जीना चाहते हैं, लेकिन जब स्कूल से बारी आती है स्कूल प्रोजेक्ट्स की, तो कई घरों में प्रोजेक्ट के नाम पर पेरेंट्स की टेंशन शुरू हो जाती है। बच्चे तो चिल रहते हैं क्योंकि पेरेंट्स को सोचना पड़ता है कौन सा चार्ट पेपर लाना है, क्या बनाना है, कैसे डेकोरेट करना है, और फिर डेडलाइन का प्रेशर। लेकिन दोस्तों, एक सवाल अपने आप से पूछिए, प्रोजेक्ट आखिर हैं क्यों? प्रोजेक्ट हैं बच्चे का, जिससे बच्चा सीखे, सोचे और उसकी क्रिएटिविटी दिखाने का उसको मौका मिले। इसीलिए बच्चे के प्रोजेक्ट को परफेक्ट बनाने की बजाय कोशिश करिए कि बच्चे उसमें अपना योगदान खुद दें, उसको इन्वॉल्व करें, जिससे कि वो नई नई चीज़ों को सीखे, चाहे वो कटिंग हो, क्राफ्टिंग हो या फिर कलर्स भरना। कहीं ना कहीं जब वो अपना योगदान देगा, पार्टिसिपेट करेगा, तभी वो कुछ सीख पाएगा। अदरवाइज आप कर देंगे तो काम तो आसान हो जाएगा, लेकिन जो उसके सीखने का स्कोप है, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट दिया गया है, वो खत्म हो जाएगा।

0: आज फिर लेट हो गए?
1: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
0: क्यों बैठे थे बाहर?
1: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
0: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूँ। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
1: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ ही जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।
4: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: दोस्तों आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना और बात हो रही है बच्चों के प्रोजेक्ट्स की और पेरेंट्स की स्ट्रेस की। तो दोस्तों जब भी प्रोजेक्ट घर में आता है तो पेरेंट्स कोशिश करते हैं उस प्रोजेक्ट को परफेक्ट बनाने की, और इसी जद्दोजहद में बच्चे की जो क्रिएटिविटी है वो पीछे छूट जाती है। इंटरनेट से सुंदर सुंदर पिक्चर्स निकाले जाते हैं, रेडीमेड मटेरियल लाया जाता है और बिल्कुल प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन तैयार करने की कोशिश की जाती है। प्रोजेक्ट देखने में सुंदर तो लगता है, शानदार लगता है, लेकिन लेकिन लेकिन उसमें बच्चे की मेहनत कहाँ होती है, उसमें बच्चे की लर्निंग कहाँ होती है? इसीलिए पेरेंट्स का रोल है कि वो बच्चे के प्रोजेक्ट को खुद का ना समझें, बल्कि उसे समझें अपने बच्चे के लिए है, और उसे समझाने की कोशिश करें अपने बच्चे को, उसको आइडिया दें और ज़रूरत पड़ने पर उसकी मदद करें, उसे करने दें। थोड़ा ख़राब बनेगा, परफेक्ट नहीं बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी टेढ़ी मेढ़ी ड्राइंग भी आपको खूबसूरत लग सकती है। उसकी हैंड राइटिंग भले ही परफेक्ट ना हो, लेकिन उसकी कोशिश, आगे की कोशिश को बेहतर बना सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे को अपनी कोशिश करने दिया जाए, जिससे कि वो सीखे और उसकी लर्निंग बहुत ही बढ़िया हो।

दोस्तों बात हो रही है आशियाना में बच्चों की प्रोजेक्ट की। तो अगर बात करें प्रोजेक्ट की तो कई बार क्या होता है ना, पेरेंट्स क्या करते हैं बच्चों से कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त ने कितना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। ये सेंटेंस ना शायद पेरेंट्स के लिए तो मोटिवेशन हो सकता है, लेकिन ये बच्चों के लिए प्रेशर बन सकता है। हर बच्चा ना अलग तरीके से सीखता है, किसी की ड्राॅइंग अच्छी होगी, किसी की राइटिंग, किसी की रिसर्च और किसी की इमेजिनेशन। इसलिए दूसरे बच्चे के प्रोजेक्ट से अपने बच्चे की तुलना करने की बजाय आप उसकी प्रोग्रेस को देख सकते हैं और उससे कह सकते हैं कि उसमें उसने क्या नया सीखा। तो कहीं ना कहीं जब आप उसकी प्रोग्रेस को देखेंगे तो इससे वो कॉम्पिटिटिव फील नहीं करेगा, बल्कि इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन एक बात और दोस्तों, जब बात आती है उस मोमेंट की जब टीचर की डेडलाइन सबको याद आ जाती है घर में कि प्रोजेक्ट मंडे को जमा करना है, तो संडे की शाम को ही जब अचानक से याद आता है तो घर में शुरू हो जाती है भागदौड़। बच्चे को भी डर, पेरेंट्स को भी स्ट्रेस। और इस सब से बचने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? काम को छोटे छोटे हिस्सों में आप बांट सकते हैं और एक दिन टॉपिक तय कर सकते हैं, एक दिन मटेरियल तैयार कर सकते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा करके घर के सभी लोग टीम वर्क के जरिए काम कर सकते हैं।

दोस्तों क्यों ना स्कूल प्रोजेक्ट को फैमिली बॉन्डिंग का एक मौका बनाया जाए। अगर पौधों पर प्रोजेक्ट है तो साथ में बालकनी में जा सकते हैं, प्लांट्स को देख सकते हैं, और अगर बात हो रही है हेरिटेज की तो घर के किसी बुजुर्ग से पुरानी यादों को पूछा जा सकता है। साइंस मॉडल है तो बच्चे को एक्सपेरिमेंट को समझने दीजिए। इससे प्रोजेक्ट सिर्फ एक असाइनमेंट नहीं रहेगा बल्कि परिवार के साथ बिताया गया मीनिंगफुल टाइम बन जाएगा, और शायद यही मेमोरीज बच्चे को लंबे समय तक याद रहेंगी कि प्रोजेक्ट के लिए मम्मी पापा ने उसके साथ बैठकर ढेर सारी बातें की थी और बहुत सारी ऐसी बातें बताई थी जो उसको शायद पता ही नहीं थी।

तो बिल्कुल दोस्तों, अगली बार जब कोई प्रोजेक्ट रहा है तो उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश बिल्कुल मत करेगा, क्योंकि हमको परफेक्ट प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक कॉन्फिडेंट बच्चा चाहिए। क्योंकि मार्क्स और प्रेजेंटेशन अपनी जगह ज़रूरी हैं, लेकिन बच्चे का मेंटल पीस, क्रिएटिविटी और पेरेंट्स के साथ उसका रिश्ता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है।

दोस्तों सब कुछ बढ़िया होगा जब आप प्रोजेक्ट को बच्चे की लर्निंग के हिसाब से सोचेंगे। और फिलहाल प्रोग्राम आशियाना में हमारा आज का सफर इतना ही रहेगा, क्योंकि अब समय हो गया है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है बहुत बहुत आज के उमंग कार्यक्रम में। सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलोदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीन बाई मानिकपुरी जी ने। अच्छे स्वभाव और व्यवहार वाले लोगों की जगह इस दुनिया में प्राणवायु फैलाने वाले हरे वृक्षों जैसी होती है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल और दीपांजलि पटेल के साथ दीपक पटेल, टेकलाल पटेल जी लिखते हैं। विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार। 19 अगस्त को सुनने को मिला नदी का सफर, हमें और हमारे परिवार को बहुत अच्छा लगा। उसके लिए उमंग टीम को हम हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। ज्ञान का खजाना है उमंग कार्यक्रम। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू ने लिखा है नमस्कार। ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत हमारी प्रिय हिंदी भाषा के कुछ ऐसे शब्दों को जान सके जिनको सर्वसम्मति से पूरा विश्व ये मान्यता प्रदान करता है कि इन शब्दों की उत्पत्ति भारतीय है। जंगल, शैम्पू, पायजामा और अगले अंक में बंगला, खाकी, लूट, योग, गुरु शब्दों की मूल उत्पत्ति पर गहन साहित्यिक मालूमात हासिल हुई। कुछ दिनों पहले कुछ हिंदी शब्दों के अर्थ भी बताए गए थे, उसके लिए हम पूरी उमंग टीम का आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल, बेंगलुरु से जगदम्बिका और हमसावेनी, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये और राधिका गजभिये, रेडमा डाल्टनगंज पलामू झारखंड से मिंटू दुबे, दिशानी दुबे, किसले और आनंद के साथ साथ प्रीति दुबे। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। हमारा पहला प्रश्न था, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर है साथियों, साइकिल का आविष्कार जर्मनी के एक आविष्कारक कार्ल ड्राइस ने किया था। हमारा दूसरा प्रश्न था, महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की थी? तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं, उन्होंने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया और माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली दिव्यांग महिला बनने का असाधारण गौरव प्राप्त किया। और हमने अगला प्रश्न पूछा था, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा? इसका उत्तर है, उन्हें कुल 22 वर्षों का समय लगा। और हमारा अगला प्रश्न था, देश के लिए कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में शहीद हुए 3 युवा क्रांतिकारियों के नाम बताइए। उन शहीदों का नाम था विनोय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। हमारा अंतिम प्रश्न था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिताजी का क्या नाम था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिताजी का नाम था ठाकुरदास बंदोपाध्याय। तो ये थे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताजा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है बैंगनी जोजो। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम एक प्यारे डॉगी के बारे में बताता है जो एक पेड़ के नीचे सो रहा था और जब वो उठा तो उसने देखा कि उसका पूरा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। पर क्यों, आइए जानते हैं इस कार्यक्रम से।

0: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
1: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
0: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
1: बादल बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
0: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
1: सूरज सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो पीला हूं।
1: कौवे कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं नहीं, मैं तो काला हूं। गुब्बारे गुब्बारे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो लाल हूं।
1: घास घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
3: नहीं, मैं तो हरी हूं।
0: बेचारा जोजो।
1: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
4: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए।
5: बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम मारिया मोंटेसरी। इस कार्यक्रम में विश्व की महान शिक्षाविद, चिंतक और शिक्षिका मादाम मारिया मोंटेसरी के जीवन और शैक्षिक जगत में उनके अमूल्य योगदान के बारे में विस्तार से बताया गया है।
3: शिक्षा का उद्देश्य मात्र तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना होता है। ये कथन है 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन का।
4: आज हम बात करेंगे एक महान विलक्षण स्त्री की, जिसने बाल मनों को प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षा शास्त्र को एक नया आयाम दिया और शिक्षण प्रणाली में सुखद और क्रांतिकारी परिवर्तन का सूत्रपात किया।
3: उनका नाम है मारिया मोंटेसरी। वो इटालियन चिकित्सक और शिक्षाविद थी। मैडम मारिया मोंटेसरी को क्रिया प्रधान मनोवैज्ञानिक शिक्षण एवं खेल आधारित बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति के विकास का श्रेय दिया जाता है।
4: उनका पूरा नाम था मारिया टेकला आर्टेमिसिया मोंटेसरी। मारिया का जन्म 31 अगस्त 1870 को चेरा वाले इटली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम एलेसेंड्रो मोंटेसरी था, जो इतालवी सरकार के वित्त मंत्रालय में एक अधिकारी थे।
3: उनकी माँ का नाम रेनेल्ड स्टोपानी था, जो बहुत ही सभ्रांत और सुशिक्षित घराने से आती थी। मारिया के जीवन पर उनकी विदुषी माता का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जो जीवन भर उनके साथ रहा।
4: जब वो मात्र 4 वर्ष की थी, उनका परिवार चेरा वाले से रोम आ गया। 6 वर्ष की आयु में मारिया ने स्थानीय राज्य पोषित विद्यालय में दाखिला लिया। वो बहुत कुशाग्र बुद्धि की थी।
3: उनके विद्यालय में सह शिक्षा थी। उन दिनों सामाजिक मान्यताओं के कारण ये स्वीकार करना आसान नहीं था कि लड़कियां लड़कों से अच्छा कर सकती हैं।
4: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए 1886 में रेजियो इंस्टीट्यूटो टेक्निको लियोनार्डो दा विंची नामक तकनीकी स्कूल में दाखिला लिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने चिकित्सा विज्ञान पढ़ने का मन बनाया। सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण उन्हें बहुत हतोत्साहित किया गया
3: और आखिर आ ही गया 10 जुलाई 1896 का वो गौरवशाली दिन।
5: साथियों, आज का दिन रोम विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक दिन है। हम बहुत हर्ष के साथ सूचित करते हैं कि मादाम मारिया टेकला आर्टेमिसिया मोंटेसरी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ

0: मास्टर ऑफ साइंस इन मेडिसिन की उपाधि प्राप्त करके इटली की पहली महिला डॉक्टर बनने का गौरव प्राप्त किया है।
1: बधाई हो,
2: धन्यवाद,
3: बहुत बहुत बधाई,
2: धन्यवाद।
3: इटली की पहली महिला डॉक्टर, भाई वाह, कमाल है,
1: बहुत बहुत बधाई हो।
4: अठारह सौ सत्तानवे में वो रोम विश्वविद्यालय के मनोरोग क्लिनिक द्वारा संचालित एक शोध कार्यक्रम में शामिल हुई और इस शोध कार्यक्रम के तहत वो रोम शहर और आसपास के पिछड़े इलाकों में बने बाल गृहों का दौरा करने लगी।
5: इन बाल गृहों में सामान्य बच्चों के साथ साथ आंशिक रूप से दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, लोकोमोटर बाधित और कुछ कुछ बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चे भी शामिल थे। इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके सोचने के तरीके में एक नया आयाम जोड़ दिया। एक दिन वो एक बाल गृह पहुंची। मिस्टर गैब्रियल उस बाल गृह की देखभाल करते थे।
6: आइए मारिया जी।
7: कैसे हो गैब्रियल, कैसा चल रहा है यहाँ? आप कुछ उदास लग रहे हो।
6: जी मैडम, अब आपको क्या बताऊं, मुझे तो लगता है कि इन दिव्यांग बच्चों की हालत दिन ब दिन और बुरी होती जा रही है।
7: और बुरी?
6: जी।
7: अब भला वो कैसे?
6: आज दोपहर के भोजन के बाद आप बच्चों का ध्यान पूर्वक निरीक्षण कीजिएगा।
7: हाँ हाँ जरूर।
6: जी
5: बच्चों की कक्षा का समय समाप्त हुआ और दोपहर के भोजन का समय हो गया। भोजन के बाद बच्चों को कुछ समय का अवकाश दिया जाता था। मारिया ने देखा कि भोजन के बाद कुछ बच्चों ने अपने बर्तनों को, भोजन की मेज की खुरदरी सतह को, खिड़कियों की जालियों को छूना और टटोलना शुरू किया।
8: देखा आपने मारिया जी, क्या ये असामान्य नहीं है? जब ये बच्चे छोटे थे तो इनकी इस तरह की गतिविधियां बहुत कम थी, लेकिन अब तो देखिए देखिए, कुछ बच्चे बाहर जा रहे हैं, अभी वो सड़क की गिट्टियों से खेलेंगे। वो देखिए, वो बच्चा टूटी हुई दीवार से निकली ईंटों पर उंगलियां फेर रहा है। देखिए देखिए।
7: नहीं नहीं गैब्रियल, मुझे लगता है कि यह सामान्य नहीं है।
5: बाल गृह से बाहर आकर लौटते समय रास्ते में वो सोच रही थी,
7: शायद ये बच्चे चीजों को इसलिए बार बार छूते हैं क्योंकि उन्हें संवेदी उत्तेजना चाहिए, लेकिन ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा करके शायद वो सीखना चाहते हैं, वो अवलोकन और निरीक्षण करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि शायद इनके सीखने सिखाने का एक नया रास्ता मुझे मिल गया है।
4: उन्होंने इस विषय पर गहरा अध्ययन किया और इस विषय पर अन्य शिक्षाविदों के विचार जाने। उन्होंने सीखने के प्रतिफल विषय पर जितना संभव हो सके पढ़ना शुरू किया और विशेष रूप से उन्होंने 19वीं शताब्दी के शुरुआती फ्रांसीसी शिक्षाविद एवं बाल शिक्षा विशेषज्ञ एडवर्ड सेगुइन के अभूतपूर्व काम का 2 वर्षों तक गंभीर अध्ययन किया।
5: उन्होंने लोम्ब्रोसो और सर्गी जैसे विचारकों द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि की भी जानकारी प्राप्त की।
7: महसूस कर लिया है कि इन बच्चों की बहुत सी समस्याओं का निदान चिकित्सा और दवा से अधिक शिक्षा विधि में निहित है। क्यों ना उनके लिए ऐसे खिलौनों और पाठ्यचर्या का विकास किया जाए जो उनकी संवेदना को उत्तेजित करे और उनमें उत्सुकता जगाए। खिलौनों को यदि एक समस्या की तरह उन्हें दे दिया जाए तो वो खिलौना ही उनका समाधान बन जाएगा।
5: बस फिर क्या था, उन्होंने बौद्धिक रूप से दिव्यांग और अन्य बाधित बच्चों की संवेदी धारणाओं और मोटर कौशल को विकसित करने में मदद करने के लिए व्यवहारिक उपकरण और खिलौने बनवाए, जिनमें ब्लॉक्स, छिद्रों वाला तख्ता, बीट्स, कंचे, माला, गीली मिट्टी, रंग, विभिन्न अलग अलग आकारों की खुरदरी आकृतियां, वाद्य यंत्र, लकड़ी के जोड़ने वाले ब्लॉक्स और पैटर्न्स वाले खेल मुख्य रूप से शामिल थे।
3: उन्होंने बाल गृहों के रखरखाव पर भी बहुत जोर दिया और सुनिश्चित किया कि इन गृहों के वातावरण को सुसज्जित और साफ सुथरा रखा जाए। दीवारों पर अलग अलग प्रकार की रंग बिरंगी समतल और खुरदरी आकृतियां बनाई जाएं। 6 जनवरी 1907 को कासा देई बम्बिनी यानी चिल्ड्रन हाउस खुला।
5: इन बाल गृहों में 3 से 8 वर्ष के बच्चों को प्रवेश दिया जाता था और शर्त ये थी कि बच्चों को साफ सुथरा बिना पुस्तकों के भेजा जाए। अब सीखने सिखाने के ये बाल गृह लोगों की उत्सुकता और आलोचना का केंद्र बन चुके थे। चाइल्डहुड हाउस के कुछ फर्नीचर ऐसे भी होते थे जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। इससे मोटर ट्रेनिंग भी हो जाती थी।
3: एक दिन मारिया कक्षा में आई। नव सुसज्जित स्कूल का दृश्य ही अद्भुत था। हर बच्चा अपने अपने कार्य में लगा हुआ था। कोई ज्ञानेंद्रियों तो कोई कर्मेंद्रियों से संबंधित अभ्यास में लगा था। कोई चित्र बना रहा था तो कोई कुछ और कर रहा था। सारा कक्ष रोचक गतिविधियों से भरा हुआ था।
5: ১৯০৮ की शरद ऋतु तक 5 बाल गृहों का संचालन किया गया, 4 रोम में और 1 मिलान में। इन खेल आधारित बाल गृहों में आंशिक रूप से दिव्यांग बच्चों ने असाधारण प्रगति की और जल्द ही 5 साल के इन बच्चों ने लिखना और पढ़ना शुरू कर दिया। मोंटेसरी के इस नए दृष्टिकोण की खबर सारे यूरोप में तेजी से फैल गई। शिक्षाविद और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी और बच्चों के अभिभावक खुद ये देखने के लिए पहुंचे कि वो इस तरह के आश्चर्यजनक परिणाम कैसे प्राप्त कर रहे हैं।
1: धन्यवाद डॉक्टर मारिया, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता था कि मेरी बच्ची कभी नहीं सीख पाएगी, लेकिन अब वो लिखने और पढ़ने भी लगी है।
7: धन्यवाद
2: डॉक्टर मारिया, मेरे पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। आपने असंभव को संभव कर दिखाया। वाह, मुझे धन्यवाद के शब्द नहीं मिल रहे हैं। आपके पढ़ाने का तरीका कमाल है, बेमिसाल है।
7: धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, मुझे लगता है कि मैंने शिक्षा का कोई नया तरीका इजाद नहीं किया। मैंने तो बस कुछ छोटे बच्चों को उनके अनुसार जीने का मौका दिया है।
1: जी,
7: मैं सोचती हूँ कि यदि इसी खेल और अनुभव आधारित विधि का प्रयोग सामान्य बच्चों में भी किया जाए तो परिणाम आश्चर्यजनक होंगे।
1: जी जी, धन्यवाद
7: धन्यवाद।
5: समावेशी शिक्षा की सफल शुरुआत शायद यहीं से होती है। मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों के संदर्भ में सफलता मिलने पर मोंटेसरी ने इसी विधि का उपयोग सामान्य बच्चों की शिक्षा के लिए भी किया।
3: उनकी असाधारण सफलता को देखते हुए इटली की सरकार ने

0: उन्हें बाल गृह संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। मारिया मोंटेसरी ने बाल शिक्षा विषय पर अनगिनत लेख लिखे और एक पुस्तक भी लिखी, जिसे आज विश्व मोंटेसरी मेथड्स के नाम से जानता है।
1: 1939 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के निमंत्रण पर वो भारत आईं और देश भर में बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति पर व्याख्यान दिए। उन्होंने लगभग पूरे विश्व में जाकर मोंटेसरी शिक्षण विधि का प्रचार प्रसार किया।
0: आज पूरे विश्व में मोंटेसरी शिक्षण पद्धति पर आधारित अनगिनत विद्यालय हैं, जो बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित सीखने सिखाने के कार्य में जुटे हैं।
1: मोंटेसरी पद्धति में कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है। बच्चों का कार्य और ज्ञान में कुशलता प्राप्त करने के भाव को ही बच्चे के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। उनकी शिक्षण विधि के मूल स्तंभ हैं बच्चों की स्वतंत्रता, स्वशिक्षा, रोचक शिक्षण, संवेदी अनुभव, प्यार और सम्मान।
0: मई 1952 को इस महान शिक्षा शास्त्री का हॉलैंड में निधन हो गया। मारिया मोंटेसरी को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। उन्हें फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर सम्मान से भी नवाजा गया और दुनिया के कई महानतम विश्वविद्यालयों से उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। आधुनिक शोध भी उनके नवाचार और निष्कर्षों की मूलभूत भावना को मान्यता देता है।
1: विश्व शिक्षा के क्षेत्र में उनके महान योगदान के लिए सदा ऋणी रहेगा।
2: आओ खेलें झटपट चटपट कुछ अनूठे खेल, सब मिलकर बनाएं हम अक्षरों की।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अरशद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आगे आप सुनेंगे आकाशवाणी रेनबो पर कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो के साथ।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
4: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। श्रोताओ, रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ अनुराधा, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है जेरियाट्रिक हिप फ्रैक्चर, जो बढ़ती उम्र के साथ एक आम समस्या है। यदि आप भी हैं इस समस्या से परेशान, तो क्या है समाधान, जानकारी देंगे हमारे आज के दो विशेषज्ञ। आप हैं डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जी, फॉर्मर चीफ JPN एपेक्स ट्रॉमा सेंटर एम्स न्यू दिल्ली, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एम्स न्यू दिल्ली। साथ ही हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रसून चटर्जी, फॉर्मर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन एम्स न्यू दिल्ली। तो आप दोनों का स्वागत करते हैं स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार आप दोनों को।
2: नमस्कार।
1: तो डॉक्टर साहब, आप दोनों के स्वागत के साथ ही अब आज का प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। और हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि जो ये समस्या है जेरियाट्रिक हिप फ्रैक्चर, तो ये किस उम्र में होने वाले फ्रैक्चर को कहते हैं?
2: जी, तो अनुराधा जी, मेरे श्रोताओं को मेरा बड़ा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहली तो ये है कि जेरियाट्रिक का मतलब है वृद्धावस्था। तो जब भी हमारे बॉडी में चेंजेस ओल्ड एज के होते हैं, जैसे लेडीज में तो मेनोपॉज होता है तो पता रहता है, जिसको रजोनिवृत्ति बोलते हैं। आदमियों में ऐसी कोई ड्रामेटिक चीज नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे उनके भी बॉडी में मेल हार्मोन कम हो जाते हैं। तो आप मोटे तौर पे अगर कहें तो, मुझे सिंपल कहना हो तो, जो पोस्ट रिटायरमेंट है कोई, तो उसको हम जेरियाट्रिक कह सकते हैं, हालांकि उसकी डेफिनेशन भी बदल रही है। लेकिन जब आपकी मांसपेशियां कमजोर पड़ गई हैं, जब आपको चलने फिरने में मुश्किल है, जब आपको कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, कुछ ट्रेमर्स, जब आप बहुत सारी दवाइयां खाते हैं और आपको गिरने का खतरा रहता है, आंखें कमजोर हो जाती हैं, सुनने में कमजोर हो जाता है, तो जो गिरने से जो फ्रैक्चर होते हैं उनको मोटे तौर पर हम जेरियाट्रिक हिप फ्रैक्चर बोल सकते हैं। ज्यादातर ऑस्टियोपोरोटिक्स में होते हैं, लेडीज ज्यादा ऑस्टियोपोरोटिक होती हैं। तो ये जो वृद्धावस्था में होने वाले, गिरने से होने वाले कूल्हे के फ्रैक्चर को हम जेरियाट्रिक हिप फ्रैक्चर बोलते हैं।
1: जी, तो शो, तो ये अभी डॉक्टर राजेश सर ने हमें बताया है, प्रसून सर से सवाल करेंगे, आगे का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: जी हाँ श्रोताओ, आज हम बात कर रहे हैं जीरियाट्रिक हिप फ्रैक्चर के बारे में। तो करते हैं सवालों का सिलसिला शुरू, आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। जैसा कि बढ़ती उम्र की हम बात कर रहे हैं, तो ओल्ड एज में क्यों बढ़ जाता है हिप फ्रैक्चर का खतरा?
1: जी अनुराधा जी, पहले तो धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए, आपके श्रोताओं को भी नमस्कार। क्योंकि देखो, ओल्ड एज कुछ एक हद तक पुराने गाड़ी जैसे है। हड्डी भी वीक होती है, मसल भी वीक होती है। मसल के बारे में हम बोलते हैं इवन मसल वीकनेस स्टार्ट्स आफ्टर 30 इटसेल्फ, बट जैसे कि सर ने कहा कि 65 के बाद हम जेरियाट्रिक पॉपुलेशन काउंट करते हैं, बट इट इज मोर ऑफ फंक्शनल एज, नॉट कैलेंडर एज, इसके ऊपर हम ज्यादा बात करते हैं। तो देखा गया कि 60 के बाद हर डिकेड हम ऑलमोस्ट 10% के करीब मसल लॉस करते हैं। तो जो जितना भी हड्डी हमारे शरीर में है, हड्डी को पकड़ के रखे मसल। सो उम्र के साथ साथ जो मसल वीकनेस हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि थोड़ा सा सॉफ्ट फॉल से भी उनका फ्रैक्चर होने का चांस होता है, चाहे वो हिप हो, चाहे वो स्पाइन हो, चाहे कोलिस फ्रैक्चर जो हाथ में होता है वो होता है। उसके साथ साथ इनका जो मोबिलिटी है, उम्र के साथ साथ मोबिलिटी भी कम हो जाए। तो मसल को, मसल का एक है, मसल का खाना है प्रोटीन, मसल का मोबिलिटी है एक्सरसाइज, जितना हम करें। तो उम्र के साथ साथ हमारा मोबिलिटी भी कम होता है। प्लस इसके साथ आप देखेंगे तो फॉल के कारण में हेड टू फुट हर जगह पे, चाहे वो नर्वस सिस्टम में थोड़ा वीकनेस हो जाए, बीट पार्किंसोनिज्म, डिमेंशिया जो न्यूरोडिजनरेटिव डिसऑर्डर बोलते हैं, विजन के बाद सर ने कहा, हियरिंग देखा गया स्टडी में कि हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए, क्योंकि हियरिंग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, हमारा जो कॉक्लियर सिस्टम है वो बैलेंस को भी बना के रखते हैं। तो उम्र के साथ साथ देखा गया कि मसल वीकनेस के साथ साथ बैलेंस भी उनका बिगड़ जाती है। इसके साथ साथ आपका कार्डियक रिदम डिसऑर्डर भी होने का चांस, हार्ट जो पंप कर रहा है, हार्ट पंप करने की क्षमता कम हो जाती है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो भी चेंज हो जाती है। सिमिलरली इवन स्टडी में देखा गया कि आपका फूट प्रॉब्लम भी कैन बी कॉज ऑफ फॉल, कि आप कौन सा जूता पहन रहे हो वो भी एक कारण हो सकता है। ये सब इंटरनल हुआ, बट इसके साथ साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट इज आई विल से एक्सटर्नल कॉज, चाहे आपका बाथरूम स्लीपर ही हो, या घर में इधर उधर लूज फिटेड वेयर हो, या कारपेट एंड टू एंड नहीं रखा हो, आपका विजन कम हो, लाइट नहीं जल रहा है, बाथरूम में गए आप गिर गए, तो रात को अंधेरे में बाथरूम जाना और उसके ऊपर दवाई का असर काफी ज्यादा होता है। मेनी ऑफ द पीपल दे टेक स्लीपिंग पिल, कोई दवाई, कोई प्रेशर का दवाई जिसे हम डायरेटिक्स बोलते हैं, उसके कारण आप कोई उठे बैठे है सडनली उठा तो चक्कर आएगा। बिस्तर से लेटे चक्कर आया, गिर गया, बाथरूम में गए, कमोड में बैठे, उठने गया, चक्कर आया, गिर गया। ये सारे फैक्टर सीनियर सिटीजन में होती है, जिसके कारण दे आर मोर प्रोन फॉर नॉट ओनली वीकनेस ऑफ देयर ओन बॉडी सिस्टम, ताकि एनवायरमेंट भी काफी हद तक उनको, एंड इसीलिए WHO एक नया कंसेप्ट दिया जिसे हम बोलते हैं एज फ्रेंडली एनवायरमेंट, चाहे वो शहर हो, कुछ कुछ शहर भी दुनिया में बन गया जो कि एज फ्रेंडली है, चाहे आपका घर हो, चाहे हर जगह में एज के मतलब दिमाग में रखते हुए एनवायरमेंट को फ्रेंडली करना चाहिए।
0: जी, वो कैसे होगा आपसे आगे जानेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना शुभ नाम बताए।
2: हेलो
0: जी सर, अपना शुभ नाम बताए।
2: विजय कुमार बोल रहा हूँ, रोनी से।
0: जी विजय कुमार जी, क्या सवाल है आपका? हमारे दोनों विशेषज्ञ आपको सुन रहे हैं, बताएं।
2: मेरी एज 84 है
0: जी।
2: अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई खास, लेफ्ट टांग के ऊपर एक सॉफ्ट गांठ सी हो गई है, और मुझे पूछा लीवर की साइड में होता है बॉडी के।
0: जी तो क्या सवाल क्या है आपका, जो आपकी दिक्कत किस तरीके की आप चाह रहे हैं समाधान डॉक्टर साहब से?
3: देखिए अगर हाँ
2: गांठ हो गई है।
3: हाँ विजय कुमार जी, जो गांठ है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोगों को उसकी एग्जामिन करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, उससे काफी उसके बारे में पता लगता है, और फिर एक सुई से कैफेनेसी नाम की एक जांच करके पानी निकाल के उसमें से या सेल निकाल के उसके नतीजे पे पहुंचा जा सकता है। ये कुछ बिल्कुल हार्मलेस चीज, फैट जैसी चीज भी हो सकती है, या उससे कुछ ज्यादा सिंपल ना हो ऐसी चीज भी हो सकती है। तो हमारा परामर्श ये है कि आप एक डॉक्टर को मिलके दिखा लें, और अगर कुछ परेशानी होगी तो डॉक्टर उसको निकाल देंगे।
0: तो इनकी समस्या का समाधान हो गया। राजेश सर, आपसे ही मेरा अगला सवाल है कि कितना सीरियस होता है ये हिप फ्रैक्चर जिसकी आज हम बात कर रहे हैं?
3: अनुराधा जी, इतना सीरियस होता है कि हमारे एक ब्रिटिश ऑर्थोपेडिक सर्जन होते थे सर एस्ले कूपर, उन्होंने ये कहा कि हम दुनिया में आते हैं श्रोणी या पेल्विस से और जाते हैं कूल्हे से। मतलब ये एक डेथ सेंटेंस है, और उस उम्र में बुजुर्गों में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। बहुत बार रिश्तेदारों को समझ में नहीं आती है, बोलते बाथरूम में जरा सा स्लिप हुए थे, जरा सा गिर गए, लेकिन इस बात को जानना जरूरी है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि इस हड्डी का टूटना जरा से गिरने से, अब जवानी में गिरते हैं लोग, फिसलते गिरते कूला तो नहीं टूटता है, लेकिन जो उस उम्र में थोड़ा सा हल्का सा फिसल के हल्की सी चोट लगने से कूला टूटना जो है, एक प्रकार से आपका शरीर अब आपका साथ छोड़ रहा है, उसकी भी निशानी हो सकती है। कई बार उसमें हमारे पास पेशेंट आता है तो उनका ब्लड शुगर 600 होता है, ब्लड प्रेशर 200/100 होता है, और कई बार किडनी काम नहीं कर रही होती है। तो कई बार ये पूरी बॉडी का फिजियोलॉजिकल, जिसको हम कहते हैं जो उसकी फंक्शनिंग है, उसका फेलियर भी हो सकता है। और ज़्यादातर जगह ये दिखाया जा गया है कि एक साल तक इसमें मृत्यु दर बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है। अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में भी 20-25% पेशेंट एक साल तक नहीं जी पाते, जबकि उनके रोगी ज़्यादा स्वस्थ होते हैं हमारे लोगों से, उनके वृद्ध ज़्यादा स्वस्थ होते हैं और वहाँ मेडिकल केयर भी तुरंत मिल जाती है और अच्छे से हो जाता है, तब भी उनमें से 4 में से 1 व्यक्ति अपनी जान एक साल में खो बैठता है। और अगर फ्रैक्चर ठीक ठाक भी फिक्स हो गया और जल्दी से खड़े कर दिया, जल्दी से चला दिया, तो भी मृत्यु का खतरा जो है कम से कम एक साल तक लगातार बना रहता है, इसलिए इसको इतनी सीरियसली लिया जाता है।
0: तो कह सकते हैं कि ये संकेत होता है कि आप पूरी तरह से आगाह हो जाएं, अगर कहीं ना कहीं कोई कमी आपको दिखाई दे रही है, आपको लग रहा है कि कहीं इस तरीके की समस्या हो सकती है, तो जैसा कि अभी

0: मासूम सर ने कहा था कि बहुत ज़रूरी है कि फ्रेंडली थोड़ा सा हम एनवायरनमेंट करें और उस तरह की जीवनचर्या रखें कि हमें पता हो कि हमें रात में उठना है, हमारे बुजुर्ग रात में उठते हैं, तो किस तरीके की उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। अब अगला सवाल मैं चाहूँगी प्रसून सर आपसे कि यहाँ पर जो हम जान रहे हैं किस तरीके से समस्या होती है, लेकिन इसमें ऑर्थोपेडिक का रोल होता है, लेकिन आप का क्या रोल होता है सर, वो भी जानना चाहूंगी।
1: ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुराधा जी, शायद काफ़ी लोगों को भी पता नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट मैं आपको बताऊं, एक तो हुआ कि फ्रैक्चर हो का मतलब गिरने का कंसिक्वेंस है फ्रैक्चर। आप नोटिस करेंगे, हम देखते हैं कि तीन चीज़ें होती है, कोई सीनियर सिटीजन अगर गिरते हैं उनको तीन चीज़ें हो सकती है, या तो कूल्हे का हड्डी टूटा, या तो हेड इंजरी हुआ फिर अनकॉन्सियस जैसे हो जाता, या तो तीसरा चीज़ कुछ नहीं हुआ। So, ये तीनों चीज तीनों ही खतरनाक है। मैं तीसरा चीज को सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए समझता हूँ क्योंकि ये पहले दोनों में तो आप मेडिकल अटेंशन लोगे, डॉक्टर के पास जाओगे, ऑर्थोपेडिक सर्जन या न्यूरो सर्जन कुछ ना कुछ करेंगे, ऑपरेट करेंगे, जो रिक्वायरमेंट है करेंगे। तीसरा जो चीज है उसके बाद क्या होता है, उनमें एक डर पैदा हो जाता है, मैं गिर गया, इसे हम फियर ऑफ फॉल बोलते हैं। सो फॉल को हम जेरियाट्रिक मेडिसिन में जेरियाट्रिक सिंड्रोम कहते हैं। हर छह में से एक लोग रोज गिर रहा है, कहीं ना कहीं गिर रहा है, और एक बार गिरना मतलब आप अपने मन में जो डर आ गया, फिर उनका चलने का गति कम हो जाता है,
0: स्टडी
1: आत्मविश्वास कम होता है। तो स्टडी में देखा गया गेट स्पीड इज इक्वली इंपॉर्टेंट लाइक योर हार्ट हेल्थ, कितना तेजी से हम चल रहे हैं, तो उम्र के साथ साथ चलने का स्पीड भी कम हो जाती है, बैलेंस कम हो जाती है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो एक बार आपका मोबिलिटी कम हो जाती है, देन देयर इज ए विशियस साइकिल। मोबिलिटी कम होगा तो खाना कम लगेगा, खाना कम लगेगी तो खाना हजम कम होगी, मसल को एडिक्वेट प्रोटीन नहीं मिलेगा, तो ये धीरे धीरे करके एक सिचुएशन होता है जिसे हम फ्रेलिटी बोलते हैं एल्डरली में, तो नाजुक हो जाते। तो ये रहा, तो इसलिए हम जेरियाट्रिक ओपीडी में हम बोलते हैं कंप्रिहेंसिव जेरियाट्रिक हस्बैंड। कोई भी पेशेंट हमारे पास आए, जैसे सर भी हमारे पास भेजते है कि उनका मेमोरी, मूड, मसल, फॉल रिस्क, हम फॉल रिस्क लोगों का एसेस कर सकते हैं। जैसे कि आप चेयर में 3 मीटर की दूरी में हम चेयर रखते हैं, उठ के गया और वापस आया, इसमें अगर 14 सेकंड से ऊपर होता है तो हम लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि देखो आपको गिरने का चांस ज्यादा है, तो इसलिए आप मसल के ध्यान दो, अपने खान पान पर ध्यान दो, मेडिसिन पे ध्यान दो। मेडिसिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। लोग 10-10, 15-15 गोली खाते हैं, तो हमारा एक काम होता है गोली कम करके मिनिमम और एसेंशियल गोली देना। दूसरा चीज होता है जब ऑपरेशन होता है तो यूजुअली सीनियर सिटीजन, जैसे मैं बोला ये तो पुरानी गाड़ी है, इसमें सिर्फ चेसिस खराब हुआ है, टायर खराब हुआ है, ऐसा नहीं है, काफी चीजें एक साथ होती है, प्रेशर, शुगर, डेलीरियम, उनका तो प्रेजेंटेशन ही डेलीरियम होता है। फिर ऑपरेशन के बाद सोडियम घट जाता है तो भी डेलीरियम होता है। तो सर के गाइडेंस में हम लोग एम्स में, सर जब ट्रॉमा सेंटर का चीफ थे तो हम लोग वहां पे कुछ डेडिकेटेड बेड एम्स में क्रिएट किए थे जिसे ऑर्थो जेरियाट्रिक्स कहते थे। तो सर लोग ओटी करते थे, हम लोग आगे पीछे मेडिकल मैनेज करते थे, तो इससे पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ और जल्दी रिकवरी होता है।
0: बहुत ही अच्छी सूचना आपने यहाँ पर लोगों को दी है कि किस तरह से हम पहले ही अवेयर हो जाएं तो समस्या ना आए। फिलहाल यहाँ एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आगे की बात है।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ अनुराधा और मेरे साथ दो विशेषज्ञ मौजूद हैं। आप हैं डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जी, फॉर्मर चीफ जेपीएन एपेक्स ट्रॉमा सेंटर एम्स न्यू दिल्ली, और साथ ही डॉक्टर प्रसून चटर्जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन एम्स न्यू दिल्ली। तो आप सबके सवालों का जो समाधान है, जो समस्या है, उसका निदान कर रहे हैं हमारे दोनों विशेषज्ञ। हमारे पास अनूप कुमार जी रांची से लिख रहे हैं कि इनकी उम्र 54 ईयर्स है और ये बीपी शुगर के पेशेंट हैं लगभग 37 सालों से। ये बता रहे हैं कि इनकी स्टिफनेस है बोन्स में और इनको चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कैसे इनको जो आराम है वो मिल सके और क्या इनको प्रिकॉशंस बरतने चाहिए।
2: तो अनूप जी, आपकी बात सुन के ऐसा लगता है कि आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम के गठिया को रूल आउट करना चाहिए। उसमें अक्सर युवाओं में होता है, पुरुषों में होता है, सो के उठ के अकड़न होती है, बहुत सारे शरीर के जोड़ इन्वॉल्व रहते हैं। इनफैक्ट हम ये कहते हैं कि अगर किसी युवा व्यक्ति को, पुरुष को 6 सप्ताह से ज़्यादा पीठ में दर्द और अकड़न रहती है तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम के गठिया को ज़रूर रूल आउट करना चाहिए। तो मेरा आपसे परामर्श ये है कि आप किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से तुरंत मिलें और उनको दिखा के जो भी एक्सरे और खून की जांच, हम लोग HLA-B27 टेस्ट करते हैं, एक जेनेटिक टेस्ट है, और उससे इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि आपको ये गठिया है कि नहीं, और उसके हिसाब से उसका आपका इलाज किया जा सकता है।
1: जी राजेश सर, आपसे ही मेरा अगला सवाल है कि कैसे पता चले, क्योंकि ये होता है कि कभी स्लिप कर गया, कोई भी हमारे घर का बड़ा बुजुर्ग है वो स्लिप कर गया, तो कैसे पता चले कि जेरियाट्रिक हिप फ्रैक्चर ही है।
2: तो गिरते ही सबसे पहली बात यह है कि उठ नहीं पाते, तेज दर्द होता है कूल्हे में, टांग छोटी हो जाती है, बाहर की तरफ लटक जाती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे किसी का फोन आए कि पिताजी गिर गए, माताजी गिर गए और उठ नहीं पा रहे हैं, तो हम फिर सबसे पहले यही सस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि जाहिर है अगर आपका कूल्हा टूट गया तो आप वजन तो लेगा नहीं और आप नीचे से उठ पे नहीं पाते हैं। तो कई बार हम ऐसे किस्से सुनते हैं कि कोई माता पिता घर पे थे, अकेले थे कोई उनमें से, और गिर गए और कहीं 1 घंटे 1.5 घंटे तक वो जमीन पे ही पड़े रहे क्योंकि कोई था नहीं जो उनको उठा पाए। तो इस हिसाब से हमें इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। हमने एक्चुअली IIT के कुछ साइंटिस्ट के साथ में कुछ हिप प्रोटेक्टर भी बनाए हैं, और आजकल ये चीज़ कई फ़ोन में ऐप भी आ गए हैं, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट भी है। तो हम लोग वृद्धों को समझाते हैं कि अगर आप गिर जाएं और घर पे अकेले हों तो उसी टाइम एमरजेंसी हेल्प के लिए या एमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर तुरंत बटन दबाएं, क्योंकि अपने आप से उनके लिए उठना भी संभव नहीं होता और तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाके एडमिट कराना पड़ता है।
1: जी, सतर्क रहना बहुत जरूरी है, जैसा कि आपने बताया कि इसको इग्नोर ना किया जाए, अगर कहीं कोई बड़ा बुजुर्ग स्लिप कर गया है तो इमीडिएट उसका इलाज कराया जाए। अगला हमारे पास मैसेज आया हुआ है ज्योति जी का, इन्होंने कहां से भेजा है ये तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इन्होंने लिखा है कि इनकी उम्र लगभग 40 साल की है और आगे लिखते हैं कि 2 साल से अर्थराइटिस है इनको और नी में इनकी इंजरी भी है और 2 साल से दवाई ले रही हैं ये और इनको रिलीफ नहीं मिल रहा है, ये फिजियोथेरेपी भी करवा रही हैं, तो किस तरह से इनको आराम मिली ये जानना चाहती हैं, क्या ये असर करेगा फिजियोथेरेपी कराना।
2: जी, फिजियोथेरेपी तो बड़ा फाउंडेशन है किसी भी ऑर्थोपेडिक इंजरी का, लेकिन आपको चोट लगी उसके बाद में कैसा रहा, आपका एग्जामिनेशन करना, आपके MRI की फिल्म देखना, आपके एक्सरे देखना, सब कुछ ज़रूरी है।

0: उसके बाद ही कोई आपको ठीक से इसके बारे में सलाह दी जा सकती है। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें, और अगर आप कहीं, एक रूल है, हम लोग कई बार पेशेंट को खुद ही एनकरेज करते हैं कि अगर आप कहीं ट्रीटमेंट करा रहे हैं और अगर आपको पूरा रिलीफ नहीं आ रहा है या आप वो चाहते हैं, तो एक सेकेंड ओपिनियन लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर सेकेंड ओपिनियन वैसी होगी जैसे आपके पहले डॉक्टर ने कहा, तो आप उसको फॉलो करने में आपको फिर कोई संकोच नहीं होगा। तो अगर ऐसी परेशानी है तो डॉक्टर को दिखाएं, और अगर दिखा रहे हैं और सेटिस्फाइड नहीं है तो एक सेकेंड ओपिनियन लें।
1: जी, ये जानना चाहती है कि 100% क्या असर करता है फिजियोथेरेपी?
0: फिजियोथेरेपी 100% अपने आप में नहीं करता है। कुछ बीमारियों में 100% ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी होता है, कुछ में परसेंटेज होता है। अगर जैसे कि आपको अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसमें ऑपरेशन चाहिए, तो फिजियोथेरेपी से ऑपरेशन का काम नहीं हो सकता। लेकिन ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद में भी फिजियोथेरेपी का रोल है। तो फिजियोथेरेपी का रोल हमेशा है, लेकिन फिजियोथेरेपी अपने आप में पूर्ण उपचार बहुत ही रेयर केसेस में होता है।
1: आगे बढ़ते हैं, हमारे कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। जी, अपना शुभ नाम बताएं।
2: हेलो जी, नमस्कार।
1: जी नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: जी बताएं गौतम जी, क्या सवाल है?
2: बढ़ती उम्र में रीढ़ की हड्डी कमजोर होने के क्या कारण है, और 3-4 ऐसे उपाय बताएं जो रीढ़ की हड्डी मजबूत हो जाए।
1: जी
2: धन्यवाद।
3: सो जैसा कि गौतम जी हम लोग चर्चा कर ही रहे कि उम्र के साथ साथ हड्डी का वीक होना, उसमें हार्मोनल से लेके मोबिलिटी, आप कितना चलते हो, आपका पोस्चर क्या है, आपका खान पान क्या है, आपका और कोई कौन कौन बीमारी है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस को एक एंडोक्रिन ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर में माना जाता है, तो जिनको डायबिटीज़ है, थायराइड की बीमारी है, इन लोगों को भी इनसे ज़्यादा चांसेस होती है। तो एक तो प्लस हमने जैसे कहा कि पेन का हर टाइम कारण हड्डी नहीं होता है, उसके साथ साथ जो मसल है उसका भी कभी कभी कारण हो सकता है, जिसके साथ आपका पोस्चर का काफी हद तक रिलेशन है। तो रोकने का तरीका यही है, आप खान पान सही करिए। जैसे कि हम अभी रेकमेंड करते हैं कि एज पर योर वेट, अगर आपका वेट अगर 60 किलो है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन दिन में लेना चाहिए। मसल का खाना है प्रोटीन, तो हमें 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। आइडियली दैट शुड बी नेचुरल प्रोटीन, अलग से प्रोटीन पाउडर बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। हमारा खान पान में हम प्रोटीन की मात्रा बढ़ाए, रोज थोड़ा थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, हर मसल को थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करने की जरूरत है, जितना आपका बॉडी परमिट करे। शुरू में अगर आपको एक्यूट पेन है तो उस टाइम में आप खुद से एक्सरसाइज ना करके डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर जैसे सजेस्ट करे नियरेस्ट डॉक्टर, उसके बाद आप करिए। तीसरा चीज है, हमारा पोस्चर को काफी ठीक रखना जरूरत है। आज के जमाने में 40-50 साल से ही हम लोग भी मैक्सिमम टाइम कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, तो हमारा जो बैक का मसल है वो कोई ना कोई अलग ऐसे ऐसे पोस्चर में रहते हैं जिसमें हमारा पेन बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। सो इवन जो बीमारी पहले 60 साल में होता है, मोस्टली ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको हम बोलते हैं, मतलब हड्डी घिस जाना जिसको कहते हैं, चाहे वो घुटनों में हो, चाहे वो स्पाइन में हो, हाथ में हो, वो आजकल काफी अर्ली एज में हो रही है। प्राइमरली दिस इज ड्यू टू पोस्चर एंड एक्सरसाइज कम करना। तो एक्सरसाइज करिए, खान पान सही रखिए, पोस्चर को मेंटेन करिए, दिस 3 विल बी माई एडवाइस।
1: राइट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम घर में बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो या गाड़ी चला रहे हो, हमारी आदत हो जाती है कि हम जो अपना जो पोस्चर है वो स्ट्रेट नहीं रख पाते हैं, तो उसको हैबिट में लाना एक बहुत बड़ा, जो आपने समाधान बता दिया है वो है, छोटी सी बात है लेकिन ध्यान रखें तो बहुत सारी मुश्किलें कम होंगी। डॉक्टर साहब, अगर फ्रैक्चर होता है, हिप फ्रैक्चर होता है, तो किस तरीके का प्राथमिक उपचार लेना जरूरी है?
3: उपचार तो जैसे सर ने कहा कि अगर हिप फ्रैक्चर हुआ है आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाना है ऑर्थोपेडिक सर्जन के अंडर में, क्योंकि एविडेंस दुनिया भर में एविडेंस कहते हैं कि अर्लीएस्ट यू डू सर्जरी, जितना जल्दी आप सर्जरी करेंगे उतना उनका रिकवरी होने का चांस रहेगा, एक्सेप्ट फ्यू केसेस, लेट्स से 90+ केसेस विद फ्रेल्टी, जो कि अगेन नीड्स असेसमेंट बाय द डॉक्टर, बट आप उनको घर में ऐसे तो रख नहीं सकते हो लंबा समय तक। जो बात सर भी कह रहे थे कि एक सपोज किसी ने बाथरूम में गिर गया, फ्रैक्चर हुआ, जो उठ नहीं पा रहा है, उनका बाकी कॉम्प्लिकेशन भी फटाफट होता है, जैसे कि उनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि सलाइवा अंदर एस्पिरेट कर जाती है, उनका वो बेहोश हो सकता है। फ्रैक्चर होने के बाद अगर हेड इंजरी हल्का भी हुआ है उससे उनको ब्रेन स्ट्रोक का होने का भी चांस रहता है। फिर शुगर का भी जो पेशेंट है उनका सडनली शुगर घट जाने से वो भी एक रिस्क फैक्टर है, जिससे कार्डियक इवेंट भी हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर को आपको मतलब सोचना है। तो गिरने के बाद आदमी को घर में रखना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल एंड देन मल्टीडिसिप्लिनरी टीम विल डिसाइड कि क्यों गिरे थे और इमीडिएट उपचार क्या है।
1: और किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है या किस तरह के टेस्ट होते हैं उसके लिए कुछ बताएं सर।
0: जी, तो सबसे पहले जब ऐसा पेशेंट आता है, जैसे डॉक्टर प्रसून ने कहा कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि चोट लगने के 48 घंटे के

0: अंदर अगर ऑपरेशन करके उनको खड़ा करके चला दिया जाए तो उनकी जान बचाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम रहती है। जितना ऑपरेशन में डिले होता है, विलंब होता है, उतना कॉम्प्लिकेशन का रिस्क होता है। बेड सोर हो जाते हैं, निमोनिया हो जाता है, यूरिन में इन्फेक्शन हो जाती है, टांग में क्लॉट बन सकते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है जिसके लिए हमें डॉक्टर प्रसून को पकड़ना पड़ता है कि पेशेंट को ऑपरेशन की कंडीशन में जल्दी से जल्दी लाया जाए। शुगर हाई है तो शुगर कंट्रोल हो, ब्लड प्रेशर हाई है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो। जो चीज क्रॉनिक है कि किडनी खराब है, लंग्स खराब है, अब वो है तो है, लेकिन इस समय तो ये जान बचाने का ऑपरेशन हो जाता है, तो इसमें कई बार थोड़ा सा नॉर्मल से ज्यादा रिस्क भी लेना पड़ता है। लेकिन ऑपरेशन का उद्देश्य ये होता है कि बेड पे पड़े रहने से होने वाली जो जटिलताएं हैं, जो कॉम्प्लिकेशन है, उनसे बचा जा सके और जल्दी से जल्दी पेशेंट को खड़े करके चलाया जाए। और इसके लिए ही ऑपरेशन होता है और इसी के लिए फिटनेस देखी जाती है। पर ये आसान निर्णय नहीं होता है क्योंकि ये सब हाई रिस्क पेशेंट होते हैं। तो हम लोग पेशेंट के अटेंडेंट से बात करते हैं, उनको समझाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, कई बार उनको ये पता ही नहीं होता कितनी सीरियस प्रॉब्लम है। उन्हें लगा कि थोड़ा सा हल्का सा गिर गए थे, ठीक है, फ्रैक्चर हो गया, लेकिन उनको ये नहीं मालूम रहता कि अच्छा से अच्छा इलाज होने के बाद भी एक साल तक उनकी मृत्यु होने के चांसेस, रिस्क बहुत हाई है। सब कुछ ठीक हो गया, हड्डी भी जुड़ गई, लेकिन कम से कम 40% पेशेंट ही ऐसे होते हैं जो उतना अच्छे से चल पाते हैं जितना कि ऑपरेशन, जितना चोट से पहले चलते थे। 60% जो है वो स्टिक या वॉकर पे आ जाते हैं। 40% पेशेंट से ज्यादा अपने काम पे दोबारा नहीं जा पाते हैं। तो एक तरह से पूरी जिंदगी, पूरा जीवन बदल जाता है इस एक फ्रैक्चर से।
1: जी, तो मतलब ये साधारण सी बात ना समझी जाए, जो कि हम समझ लेते हैं कि नहीं, थोड़ा सा अगर फ्रैक्चर हुआ है तो ठीक हो जाएगा। किस तरह से आगे की सावधानियां हो, बात करेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: हेलो
1: जी सर, अपना नाम बताएं मैम।
2: मैं मिसेस बेदी बोल रही हूँ, पंचकूला से।
1: जी मैम बताएं, क्या सवाल है आपका?
2: हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब, सबको मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं 76 की हो जाऊंगी नेक्स्ट मंथ
1: जी,
2: और मेरा नवंबर 24 में, मैं योगा की टीचर हूँ
1: जी, जी।
2: तो मैं गई क्लास लेने, तो वहाँ स्लिप करके दीवार के साथ लगी, तो मेरा फेमर का वो जो नेक बॉल होता है वो टूट गया।
1: ओ।
0: उसी प्रोग्राम, उसी फ्रैक्चर की आज बात कर रहे हैं हम।
2: हाँ जी, वही बता रही हूँ मैं। थोड़ा मेरा केस डिफरेंट इसलिए मैं बता रही हूँ कि थोड़ा पॉजिटिविटी ने मुझे जिंदा रखा है।
1: कुछ
2: एक तो मैं योग में हूँ, 27 इयर्स हो चले हैं
1: जी।
2: दूसरा, मेरा नेक्स्ट डे सर्जरी हो गई। मैं 91 से डायबिटिक भी हूँ, बीपी मेरा ठीक ही रहता है, 60 रहता है ऑलमोस्ट
1: जी।
2: तो मैं ये मैसेज सा देना चाहती हूँ आपके थ्रू कि मेरी सर्जरी हुई तो मेरे डॉक्टर इस बात से खुश थे कि मेरी मेंटल हेल्थ बड़ी स्ट्रांग थी। सारा दिन मुझे विजिटर्स आने, मिलने जुलने, तो वो कहते आप ठीक ही इसलिए हुए हो, चाहे डायबिटिक हो, आपके स्टिचेस इतने अच्छे कट गए हैं
1: जी।
2: तो
1: जी,
2: मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर चोट लगती है तो ये मत सोचिए कि दुनिया खत्म हो गई।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने।
0: और एक और बहुत जरूरी बात है, जैसे मिसेस बेटी ने कहा कि इनका ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं दिखलाता, ऑपरेशन के बाद ट्रीटमेंट शुरू होती है। क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस, जिससे कि ये फ्रैक्चर हुआ, मुझे लगता है जो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन अगर वो फ्रैक्चर का इलाज करता है और उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज नहीं करता है, उसने अपना काम अधूरा किया है। क्योंकि एक हिप टूटा है तो दूसरा हिप बचाना जरूरी है। रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होने से जो आगे झुक जाती है, वो जो पीछे डिफॉर्मिटी हो जाती है, कुबड़ निकल आता है, वो सब ऑस्टियोपोरोसिस से है। और अगर हमें एक बार झटका लगा और उससे डॉक्टर और मरीज दोनों को इस बात का रियलाइजेशन नहीं हुआ कि ऐसी चीज दोबारा हो सकती है और उसको बचाना बहुत जरूरी है, तब तक इलाज प्रॉपर नहीं हुआ। और पेशेंट का भी ये कर्तव्य है कि जो ट्रीटमेंट को फॉलो करें, कि हड्डी टूट गई, जुड़ गई, तो इलाज खत्म नहीं हुआ। अक्सर ऐसा होता है कि डॉक्टर के एंड पे वो लोग ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट नहीं शुरू करते, और करते हैं तो पेशेंट ठीक होने के बाद वो दवाइयां लेते नहीं हैं जो उनको और फ्रैक्चर से बचा सकती हैं। तो कुल मिला के इसके लिए हम सभी जिम्मेवार बन जाते हैं फिर।
3: मैं मिसेस बेदी मैडम के बारे में और एक चीज बताऊंगा। एक और एक इम्पोर्टेंट मतलब आपका प्रेडिक्टिंग फैक्टर है, प्रोबेबली सी वॉज वेरी मोबाइल। फ्रैक्चर से पहले जो लोग ज्यादा मोबाइल होते हैं, जिसमें आपका मेंटल

0: भी एक फैक्टर है, मे बी सी हैज ए पर्पस, यू कैन से दैट. सो
1: राइट.
0: हैप्पीनेस, पर्पस, ये सब कुछ मैटर करता है. जैसे कि
1: राइट.
0: सर ने कहा ट्रीटमेंट तो करना है. सो जो भी मोबिलिटी सीनियर सिटीजन में काफी इंपॉर्टेंट है. आप जितना ज्यादा मोबाइल रहोगे, फ्रैक्चर के बाद आपका रिकवरी का चांस ज्यादा है.
1: ज्यादा हो,
0: जितना ज्यादा
1: बिल्कुल.
0: मोबाइल रहोगे, इवन स्ट्रोक के बाद भी इंप्रूवमेंट उन्हीं लोगों का ज्यादा होता है जो पहले काफी मोबाइल रह चुके हैं. सो मे बी दैट इज वन ऑफ द रीजन फॉर हर ऑल्सो कि सी रिकवर्ड वेल.
1: ठीक. तो यहाँ पर ये संदेश आपने दे दिया है डॉक्टर प्रसून सर कि अपनी जो दिनचर्या है उसको ऐसा रखें कि लगातार आप थोड़ा सा चलते फिरते रहें,
0: एब्सोल्युटली.
1: चाहे आप पार्क घूमने जाएं, आप घर में ही थोड़ा चल फिर लें, जो भी पॉसिबल हो वो करें. आपसे बहुत सारे भी सवाल करने हैं, बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आए हुए हैं, लेकिन फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक.

0: अनुराधा जी, बहुत ही बेहतरीन गाना डॉक्टर प्रसून ने चलवाया, और मैं अपने श्रोताओं को ये कहना चाहूँगा कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तो आपका परिवार, आपके मित्र और आपके डॉक्टर आपके लिए हमेशा साथ है। और अच्छा डॉक्टर वो है जो आपको ये बताए कि मुश्किल से बचा कैसे जाए, और इसीलिए शायद अनुराधा जी ने आज ये प्रोग्राम रखा है।
1: रेडियो डॉक्टर लगातार आपके साथ है हर मुश्किल में कि आप स्वस्थ रहें, और अगर कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो उसका निदान कैसे हो। और स्वस्थ रहने का एक विकल्प और है कि अच्छा संगीत सुना जाए, थोड़ा बहुत गाया गुनगुनाया भी जाए। और आपको श्रोताओं बता दूं कि हमारे आज के जो दोनों विशेषज्ञ हैं, गाने भी महारत उनको हासिल है, तो एक एक लाइन हमारे श्रोताओं के लिए सर हो जाए।
2: अरे अभी जो गाना हमने गाया ये बहुत फेवरेट सुने हमने, ये बहुत फेवरेट गाना है मेरा। तो

0: रूप माँ है तो गाने तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन एक लाइन में गाना चाहूंगा, उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी, ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी।
1: बहुत सुंदर। और श्रोताओं, माँ का आशीर्वाद हो और हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनका साथ हो तो आप स्वस्थ रहेंगे, और दोनों आशीर्वाद आज आपके साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब ने इतना सुंदर गीत आपको सुनाया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे कॉलर फोन लाइन पर हैं, जान लेते हैं कि उनका क्या सवाल है। जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, शुभ नाम बताएं अपना।
2: हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब।
0: नमस्कार जी,
2: मैं ब्रह्मदत्त मंगोलपुरी दिल्ली ट्रैफिक से कॉल कर रहा हूँ। पहला तो आई एम सब के जावा योर मेलोडी सॉन्ग दे उत्ते जेडे तुसी गाए ने हुणे। ब्रोसरा साहब मेरी चाई जी ने 80 ईयर ओल्ड।
0: अच्छा जी।
2: ओ टैप है सी थल्ले प्रेशर हो गया सीगा लै ते हुण वाकर नाल तुरदे ने, ते मैं जानना चाहंदा सीगा वाकर किस तरह उहनां दी छुट्टेगी।
0: इतना कारकर दी कहानी है, इसीलिए हमने ये टॉपिक इस बार चुना है, क्योंकि हर घर में, हर पड़ोस में, रिश्तेदारी में, देखिए ऐसा है कि हम सबकी उम्र बढ़ रही है, और पहले तो लोग चेचक मलेरिया से ही चले जाते थे, अब हम जीते हैं देर तक तो कैंसर और ऑस्टियोपोरोसिस, ये बीमारियां बढ़ गई हैं। तो इस टाइम पे ना, देखो मैं आपको दो बातें कहना चाहूँगा। एक तो वॉकर छुड़वाने से ज़्यादा उनको गिरना नहीं है, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरी बात ये है कि डॉक्टर प्रसून ने भी कहा कि उम्र के साथ हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हमारा मसल मास ख़त्म हो जाता है, मांसपेशियाँ ख़त्म हो जाती है, कमज़ोर हो जाती हैं। और फिर एक ये भी बात हुई कि बड़ी सारी दवाइयाँ, ये भी हम जानते हैं कि जो पेशेंट 5 से ज़्यादा दवाइयाँ एक दिन में खाते हैं, और जिनको कुछ सुनने में प्रॉब्लम है, किसी तरह का भी है, और जो गिर चुके हैं, इन सबको गिरने का खतरा बहुत होता है। तो पहली बात तो ये है कि इनको गिरने से बचाना है, इनके दिमाग से गिरने का खतरा हटाना है। दूसरे, इनकी ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज करना है, इनकी मांसपेशियों को मजबूत करना है। वॉकर एकदम नहीं छूटेगा, हम कोशिश करें कि वॉकर से स्टिक पे आएं, और इसके लिए कुछ खास एक्सरसाइजेस होती हैं जिनको हम बैलेंस एंड फॉल प्रिवेंशन एक्सरसाइजेस बोलते हैं, जिनका मतलब है कि आपका बैलेंस कैसे अच्छा किया जाए और कैसे आपको गिरने से बचाया जाए, तो उसके लिए भी एक्सरसाइजेज आती हैं। तो और जितना ज़्यादा, जैसे कहा कि फिजिकली फिट रहेंगे और उतना ही ज़्यादा उनको गिरने का खतरा कम रहेगा। तो एक इनको अच्छे फिजियोथेरेपी सेंटर में एक्सरसाइजेस करवा के सुपरविजन में इनको वॉकर से पहले स्टिक पे लाया जाए, और स्टिक छोड़ने की मुझे जल्दी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा रिस्क मैं नहीं लेना चाहूँगा कि वो बिना स्टिक के चले और गिर जाए, पर कम से कम वॉकर से उनको स्टिक पे जरूर शिफ्ट किया जाए
1: जी।
3: और वेट अगर ज्यादा है तो वेट मैनेजमेंट करने के प्रयास करें, क्योंकि काफी टाइम
1: बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। जोया जी का मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हमारे पास मैसेज आया हुआ है, बड़ी नियमित हमारी श्रोता हैं और मैसेजेस आते हैं हर बार इनके। इन्होंने लिखा है, डॉक्टर हैज मेडिकल साइंस डेवलप्ड एनी इंस्ट्रूमेंट विच कुड गेट अटेस्ट टू देयर यूरिनरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर ओल्ड मैन एंड वुमेन, सो दे कुड बी वेल, दे आर ऑन देयर बेड्स एंड डोंट हैव टू गेट अप, देयर फॉल कुड कम्प्लीटली बी स्टॉप्ड इन दिस वे।
3: जोया जी, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बट आई थिंक पेशेंट स्पेसिफिकली कैसा है ये जानना चाहूंगा मैं, बट अगर वो उठ के बाथरूम तक जा सकते हैं तो ये तरीका तो एकदम ही सही नहीं है। कोई भी हम फॉरेन बॉडी हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में डाले तो वो इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाती है। तो इवन हम लोग प्रेफर करते हैं कि जितना कम से कम लोगों को कैथेटर में रखा जाए या डायपर पहनाया जाए। तो बाकी चीज में ध्यान दीजिए, अगर आप स्लीप हाइजीन प्रॉपर मेंटेन कर रहे हो, अगर ये कोई सीनियर सिटीजन है जिनका प्रोस्टेट बड़ा हुआ है, उनको रात को बार बार बाथरूम जाने की रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो उनको कोई प्रेशर की दवाई खा रहे हैं जिसके कारण उनको बाथरूम हो रहा है, तो ये सब हमें दवाई पे देखना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, स्लीपिंग पिल इज वन ऑफ द मेजर कल्प्रिट। अगर कोई स्लीपिंग पिल पे है, कप सिरप पे है, रात को उठते हैं, उनको गिरने का संभावना ज्यादा होती है। सो बाथरूम जाना हमें बंद करना इज प्रोबेबली नॉट पॉसिबल एट दिस एज, लेकिन हमें साथ में ये भी जानना है कि कि रात को हमें बाथरूम

0: आना ज़्यादा होती है उम्र के साथ साथ ड्यू टू सिरकेडियन रिदम चेंजेस। तो इसलिए मैं मेरे पेशेंट को ये प्रमोट करता हूँ कि आप अगर घर में हो 6 बजे तक अपना आखिरी डिनर कर लो, विच इज़ वेरी साइंटिफिक। 6 बजे तक हम अपना खाना ख़त्म करते हैं और 7 बजे तक पानी पी लेते हैं। तो और सपोज हम 10 बजे 11 बजे सोने जाते हैं, तो इवन इफ़ यू हैव प्रोस्टेट प्रॉब्लम 3-4 बार आप बाथरूम चले जाते हो तो रात को उठने का चांस कम हो जाती है। एट ए स्टेज 3 से 4 घंटे हमें सोना हो जाए, देन वी गो टू बाथरूम, चांसेस ऑफ फॉल विल ऑल्सो बी लेस, क्योंकि वी कंप्लीट अ पूरा स्लीप साइकिल।
1: और जैसा कि डॉक्टर प्रसून ने कहा, देखिए कोई कैथेटर डालना, कोई डायपर, ये सब इन्फेक्शन को दावत देते हैं। इनके बारे में छोड़े, इसके उससे ज्यादा अच्छा ये है कि गिरने का खतरा कम किया जाए। वृद्ध व्यक्तियों के पास में एक बेड स्विच रखते हैं जिससे वो पहले लाइट जला पाए, बाथरूम कमरे के अंदर अटैच्ड हो, वहां आराम से जा पाए तो अच्छा है। अगर उनको चलने में मुश्किल है तो स्टिक या वॉकर पास में रखें, और अगर इससे भी मुश्किल लगती है तो एक बेड साइड कमोड चेयर रख लें, उसमें से खड़े हो, चेयर में बैठे पास कर लें, उसको ढक दें, लेकिन पूरी तरह से आश्रित हो जाना डायपर पे या कैथेटर पे, और आगे जाके इन्फेक्शन और किडनी फेलियर को दावत।
0: और इसके साथ मैं ये भी बोलूंगा कि जिनको फॉल रिस्क ज्यादा है, जो कि हम लोग एसेस करते हैं, सो आजकल काफी सारे डिवाइस भी आ गए, जैसे अभी जैसे सर ने भी कह रहे थे एम्स के साथ मिलके ग्रुप में बनाया है, तो आप एक बेल्ट जैसे पहनोगे, जब आप लेटे हो तो वो डिफ्लेटेड है, जब भी आप उठते हो इन्फ्लेट हो जाए। सो इसका प्लस माइनस सब कुछ है, बट स्टिल यू कैन प्रोटेक्ट लिटिल बिट ऑफ योर हिप। सो हिप प्रोटेक्टर के दौर पे ही आते हैं। सो आपको प्रिवेंट करना है फ्रैक्चर, ना कि बाथरूम जाना आप प्रिवेंट कर दोगे पूरा पूरा। ऑफ कोर्स द पेशेंट इज टोटली बेड बाउंड तो स्टोरी अलग होता है, तब तो डॉक्टर खुद ही डिसाइड करेंगे क्या करना।
2: आगे का क्या, जब होता है ऑपरेशन सर्जरी होती है तो क्या आपको प्रिकॉशंस रखने चाहिए, उस बारे में बात करेंगे। फिलहाल एक मैसेज ले लेते हैं। हमारे पास सतीश कुमार जी का रोहिणी दिल्ली से मैसेज आया हुआ है। इन्होंने लिखा है कि इनकी उम्र लगभग 65 साल की है और वेट इनका 90 kg है। इन्होंने लिखा है कि इनकी कमर में दर्द रहता है और जब ये उठते बैठते हैं तो ज्यादातर दर्द होता है, और इन्होंने ये भी लिखा है कि 500 मीटर चलता हूं लेकिन इनको फिर भी कोई आराम नहीं मिलता है, क्या एडवाइस देना चाहेंगे।
0: सो पहली तो बात मैं बोलूंगा आपको वेट घटाना होगा।
2: जी बिल्कुल, अभी
0: इस उम्र में जाके वेट घटाना काफी कठिन होता है, क्योंकि आप उतना फ्लेक्सिबल उतना एक्सरसाइज तो कर नहीं सकते हो। बट डाइट के ऊपर मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा, डाइट को हम पहले अल्टर करें, सही टाइम पे खाना खाए। हमारा इंडियन डाइट में ओबेसिटी का चांस ज्यादा बढ़ रहा है, जिसके ऊपर भी काफी स्टडी हो रहा है, क्योंकि हम लोग ज्यादा कार्बोहाइड्रेट बेस्ड खान पान पे फोकस्ड है, रोटी चावल सब्जी सारे हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो एक तो आप ओवरऑल खान पान में कैलोरी थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करिए, हर खान पान में 30% प्रोटीन को डालने की प्रयास करिए। 2 बार से 3 बार से ज्यादा हमारा खाने की जरूरत नहीं है, एक ब्रेकफास्ट, हेवी ब्रेकफास्ट, हल्का सा लंच एंड देन डिनर अराउंड 6 PM, ये हम करें। और फ्लेक्सिबिलिटी जितना हमारा मोबिलिटी बनते रहे उसको करें, पोस्चर को ठीक रखें। इसके बावजूद भी आपको पेन हो रहा है तो आपको डॉक्टर से सलाह करना चाहिए, बट वेट इज अ मेजर फैक्टर फॉर हिम,
2: उसको नियंत्रित रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब अब बात कर लेते हैं कि सर्जरी जिसकी हुई है तो किस तरह की सावधानियां होनी चाहिए और कितने समय तक हॉस्पिटल में रखा जाता है पेशेंट को।
1: जी तो पेशेंट को हॉस्पिटल ज्यादा देर रखने की जरूरत नहीं होती है। अगर पेशेंट का ऑपरेशन जो ही हो जाता है, मैंने आपको बताया एनेस्थीसिया का इफेक्ट खत्म होते ही हम उनका खड़ा कर देते हैं, चला देते हैं और उनको बाथरूम भेजते हैं, 1-2 सीढ़ी भी उनको चढ़ने की प्रैक्टिस करवाते हैं। तो जब ऐसा रहे कि वो घर में कंफर्टेबल रहेंगे, जरूरत पड़ने पर कुछ सीढ़ियां चढ़ लेंगे, चल फिर लेंगे, बाथरूम चले जाएंगे, एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाएंगे, फैमिली के साथ कहीं गाड़ी में बैठ के खाना वाना खाने चले जाएंगे, तो हम भेज देते हैं, उसमें कुछ ज्यादा समय नहीं लगता है। 48 घंटे में अक्सर ऐसा हो जाता है, जब तक कि कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन ना हो जिसकी वजह से उनको रखना पड़े शुगर कंट्रोल या ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। अदरवाइज उनको चला के हम ये चाहते हैं कि उनको कम से कम देर बेड पे रहना पड़े, तो चोट लगते ही ऑपरेशन करते ही खड़े करना, चलाना और नॉर्मल होने की कोशिश करना, कुछ दिन तो ऑफकोर्स उनको सपोर्ट यूज करनी पड़ेगी। पर इक्वली इंपॉर्टेंट है ऑस्टियोपोरोसिस की दवाई शुरू करना, बैलेंस एंड फॉल प्रिवेंशन एक्सरसाइजेस शुरू करना ताकि गिरे नहीं, और एक बार अपनी डाइट पे प्रोटीन इंक्लूड करना, मसल स्ट्रेंथनिंग इंक्लूड करना, बैलेंस एंड फॉल प्रिवेंशन करना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है।
2: हमारे पास एक मैसेज आया हुआ है, मनीषा जी रांची से लिख रही हैं कि इनकी उम्र 75 साल की है, ऑस्टियोपोरोसिस है, उसके लिए मैं फ्लोरिश गोली महीने में एक बार लेती हूं, इसे मैं कितने दिन ले सकती हूं।
1: इसको 3 से 5 साल ले सकते हैं, लेकिन ये जो महीने में एक बार लेने वाली गोली होती है ये बहुत स्ट्रांग नहीं होती है, आप अपने डॉक्टर से परामर्श करें, बड़ा वीक एजेंट है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बहुत ही हल्का सा ऑस्टियोपोरोसिस है जिसके लिए आपको डॉक्टर ने दिया, हल्के से मतलब है कि बहुत ऑस्टियोपोरोसिस के बजाय ऑस्टियोपीनिया ज़्यादा कहना चाहूँगा, और अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है और आपकी 75 साल की उम्र है तो आपको हफ्ते में एक बार से ज़्यादा स्ट्रांग दवाई लेनी चाहिए जो डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको स्टार्ट करनी चाहिए।
2: डॉक्टर साहब सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन अब समय इजाजत नहीं दे रहा, तो बस अपने श्रोताओं से हम ये कहना चाहेंगे कि श्रोताओं हमने आज चर्चा की जेरियाट्रिक हिप फ्रैक्चर के बारे में, और हमारे आज के दो विशेषज्ञ थे डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, फॉर्मर चीफ JPN एपेक्स ट्रॉमा सेंटर एम्स न्यू दिल्ली, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एम्स न्यू दिल्ली, साथ ही डॉक्टर प्रसून चटर्जी, फॉर्मर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन एम्स न्यू दिल्ली। तो आप दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। धन्यवाद
1: धन्यवाद।
2: और अब श्रोताओं अनुराधा को दीजिए रेडियो डॉक्टर से इजाजत। नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

पेश है इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि सेना के अथक प्रयासों के चलते जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी बलों की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। मुंबई में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में 2025-26 के राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एनडीए के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देशभर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को शुभकामनाएं दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज हर तालिका तीज के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2020 के बाद से 9 राज्यों में 147 कोयला खंडों की नीलामी की गई है। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की। भारतीय चालक दल के 13 सदस्यों को बचाया गया। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, ओडिशा और बिहार में भी तेज बारिश की आशंका है। भारतीय तीरंदाज धीरज बोमादेवरा ने जापान के नाकानिशी जुनिया को हराकर तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला T20 एशिया कप का खिताब जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। ये थे अब तक के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने आकाशवाणी रेनबो पर। और शुरू हो चुका है आपका फेवरेट प्रोग्राम अल्फा जेन, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे शालिनी। दोस्तों, खास सोमवार के दिन अल्फा जेन में हम लेकर आते हैं यूथ स्पीक्स, यानी आप युवाओं में से मिलता है किसी खास को मौका यहाँ रेनबो के स्टूडियो में आने का और आपसे जुड़े मुद्दे उठाने का और आपके दिल की बात यहाँ कहने का। तो आज ये मौका मिला है उर्बी बैनर्जी को। उर्बी दिल्ली विश्वविद्यालय में BA सेकेंड ईयर की स्टूडेंट्स हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ती हैं, और आज उनका मैं स्वागत कर रही हूँ यहाँ आकाशवाणी रेनबो के स्टूडियो में। उर्बी, आज आप क्या टॉपिक लेकर आई हैं और किस मुद्दे पर बात करने वाली हैं?
2: पहले तो धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आज मेरा विषय है हिंदी सिर्फ भाषा नहीं, एहसास है।
1: बिल्कुल उर्वी, आप हिंदी को लेकर आई हैं, आज हिंदी दिवस है और इस मौके पर आप हिंदी की बात करने वाली हैं, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन क्यों आपने इसी टॉपिक को चुना?
2: तो आज हिंदी दिवस है और हम हिंदी को अक्सर एक सब्जेक्ट की तरह देखते हैं जिसमें नंबर लाने होते हैं, पर वह तो हमारे घर की भाषा है, हम तो अक्सर भूल भी जाते हैं, दादी नानी की भाषा है। मुझे लगा कि आज के दिन इतनी सी बात कहना ज़रूरी होगी।
1: बिल्कुल उर्वी, और कई बार क्या होता है ना कि जो भाषा हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, बच्चा जब जन्म

रहता है और धीरे धीरे जब वो बोलना शुरू करता है तो सबसे पहले माँ बोलता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं आसपास हमारी उसी मातृभाषा को सुन रहे हैं और उसी को सीख रहे हैं, तो उससे एक जुड़ाव भी महसूस होता है। तो आज यहाँ अल्फा जेन प्रोग्राम में उर्वी बात करेंगी हिंदी भाषा की, हिंदी से जुड़ाव की। तो आगे आप सुनेंगे उर्वी को, और इस गाने के बाद उर्वी होंगी आपके साथ और करेंगी बात हिंदी की, क्योंकि हिंदी ना सिर्फ एक भाषा नहीं है, एहसास है।

हेलो दोस्तों, आज आपके साथ मैं हूं उर्वी और मैं शुरू करना चाहूंगी तीन पंक्तियों से। शब्दों में जो घुली हुई है वो मिठास है हिंदी, दूर कहीं परदेस में भी अपना एहसास है हिंदी। सिर्फ जुबान नहीं है साथी, सिर्फ जुबान नहीं है साथी, दिल की प्यास है हिंदी। इंसान चाहे कितनी भी भाषाएं सीख ले, दुनिया के किसी भी कोने में जा बसे, पर जिस पल उसे चोट लगती है उसके मुंह से जो शब्द निकलता है वह उसकी अपनी भाषा का ही होता है। क्योंकि दोस्तों, दर्द झूठ नहीं बोलता और दर्द ना हमेशा माँ की भाषा में बाहर आता है। शायद इसीलिए हमने उसे नाम दिया मातृभाषा। सोचिए, जरा सोचिए, बच्चे का सबसे पहला शब्द क्या होता है? माँ। और जब कोई अपना हमेशा के लिए बिछड़ जाता है तो हमारे मुंह से सिर्फ दो शब्द

निकलते हैं। खुश रहना, शब्द तो बदले जा सकते हैं, एहसास नहीं। खास बात यह है कि हम किसी के नाम के पीछे बस जी जोड़ देते हैं और उसी पल एक रिश्ता बन जाता है। इसीलिए दोस्तों, मैं मानती हूँ दूसरी भाषाएं रिश्ते बताती हैं, हमारी रिश्ते ना रिश्ते बना दी है। अब मैं आपको 77 साल पीछे ले जाना चाहूँगी। साल 1949, आज़ादी को सिर्फ 2 साल हुए थे और दिल्ली में संविधान सभा बैठी थी। अंग्रेज तो चले गए थे देखिए, पर उनकी भाषा यही रह गई थी। अदालत, दफ्तर, कागज सब अंग्रेजी में, और इस देश का आम आदमी उन कागजों को हाथ में लेकर चुपचाप सिर हिला देता था, बिना समझे, बिना कुछ सीखे। बहस लंबी चली क्योंकि भाषा का जो सवाल होता है ना, दिमाग का नहीं, दिल का सवाल होता है। आखिरकार 14 सितंबर यानी आज का दिन 1949 को फैसला हुआ, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत संघ की राजभाषा होगी।

अब मैं आपको उन लोगों के बारे में बताना चाहती हूँ जिन्होंने हिंदी को सिर्फ लिखा नहीं, जिन्होंने हिंदी को जिया। सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद, जिन्होंने हिंदी को अपनी कहानियों से, देश की मिट्टी से जोड़ा। उनका हामिद याद है आपको? ईद का दिन था, मेले में चारों तरफ खिलौने थे, मिठाइयाँ थी, और किसको नहीं पसंद खिलौने और मिठाइयाँ। और उस नन्हे बच्चे ने अपने सारे पैसे खर्च करके क्या खरीदा? एक चिमटा, क्योंकि उसने देखा था कि दादी तवे पर रोटी सेकते हुए उंगलियां जला बैठती हैं। 100 साल हो गए इस कहानी को, 100 साल, पर वह चिमटा आज भी हमारी आंखें भिगो देता है। यही तो हिंदी का एहसास है। और फिर आया 1977 का वह पल, न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा, और भारत की तरफ से खड़े हुए अटल बिहारी वाजपेयी। और वे अंग्रेजी में नहीं बोले, उन्होंने हिंदी में बोला। उस दिन सिर्फ एक भाषण नहीं हुआ था, उस दिन एक देश ने अपनी आवाज पहचानी थी।

0: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
1: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
0: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
1: हैं? इतनी जल्दी?
0: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते

0: शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम अल्फा जेन में। आज हम हिंदी की बात कर रहे हैं। हिंदी हम तक सिर्फ किताबों से नहीं पहुंची, वह हम तक उन पंक्तियों से पहुंची जो एक बार कान में पड़ जाए तो वही सिर्फ बस जाती है। सोहनलाल द्विवेदी हिंदी के कवि थे जिनका जन्म सन 1906 में हुआ था और जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे। उन्हीं की एक कविता है बड़े चलो बड़े चलो, वही गीत जो हमने प्रार्थना सभा में 1000 बार गाया है। ना हाथ एक शस्त्र हो, ना हाथ एक अस्त्र हो, ना अनवीर वस्त्र हो, हटो नहीं डरो नहीं, बड़े चलो बड़े चलो। उसके शब्द किसी को अलग से याद नहीं करने पड़े, बस गाते गाते भीतर उतर गए।

केदारनाथ अग्रवाल जी हिंदी के कवि थे, जिनका लेखन प्रगतिशील धारा से जुड़ा माना जाता है और जिन्होंने ग्रामीण जीवन और आम मेहनत कश इंसान पर बहुत कुछ लिखा। उन्हीं की एक यह पंक्ति है दोस्तों, मैं हूं आग और बर्फ की वसीयत, मौत जिसे पाएगी जीवन से लिखी। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी सन 1904 में जन्मी एक कवियत्री और स्वतंत्रता सेनानी, जिन्हें उनकी कविता झांसी की रानी के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। उन्होंने लिखा, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बस एक पंक्ति दोस्तों और पूरी लड़ाई आंखों के सामने आ जाती है, घोड़ा तलवार और वो रानी। किताब पढ़नी पड़ती है दोस्तों, पर पंक्ति अपने आप याद रह जाती है।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अल्फा जेन। बात हो रही है आज हिंदी के ऊपर। आज दुनिया में हिंदी बोलने समझने वालों की संख्या लगभग 60 करोड़ है, यानी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हमारी हिंदी। मॉरिशस में यहाँ घर घर की भाषा है। फिजी में फिजी हिंदी वहाँ की मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक है। और पता है दोस्तों, दुनिया की 150 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में हिंदी पढ़ाई जाती है।

दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, लंदन के किसी बाजार में, न्यूयॉर्क के किसी स्टेशन पर या दुबई के किसी मॉल में, अगर अचानक कहीं से हिंदी में कोई गाना बज उठे या कोई अजनबी हिंदी में एक वाक्य बोल दे तो एक अनजाना अपनापन तुरंत जाग उठता है। यही वजह है कि आज दुनिया भर में बसे लाखों भारतीय चाहे कितने भी सालों से अपने देश से दूर क्यों ना हो, अपने बच्चों को हिंदी सिखाने की कोशिश करते रहते हैं, ना किसी परीक्षा के लिए बल्कि सिर्फ इसलिए कि यह भाषा उनके साथ उनके अपनों तक पहुंचे। अब आप ही बताइए, इसे भाषा कहेंगे या एहसास?

0: कोयल सी तेरी बोली, कु
1: आए हाय,
0: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने

0: मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: दोस्तों एक बात है जो आज मुझे लगता है कहना जरूरी है। आपने अक्सर सुना होगा सॉरी मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, और यह कहते वक्त चेहरे पर शर्म नहीं हल्का सा गर्व होता है। यह उस सीख का असर है कि जो अंग्रेजी बोलता है वही काबिल होता है, और वह सोच इतनी गहरी बैठ गई है हमारे अंदर। इसका नतीजा यह है कि बच्चा अंग्रेजी में सोचता है, दादी हिंदी में बोलती हैं, और दोनों के बीच एक चुप्पी आकर बैठ जाती है। जरा सोचिए, दादी के पास सुनाने को 100 कहानियां हैं और पोते के पास सुनने की भाषा नहीं है। यह सिर्फ भाषा का नहीं रिश्ते का नुकसान है, क्योंकि जब कोई भाषा मरती है तो सिर्फ शब्द नहीं मरते, मुहावरे मरते हैं, लोरियां मरती हैं, कहानियां मर जाती हैं।

दोस्तों, मैं बस तीन छोटी बातें आपसे कहना चाहती हूँ। पहली, साल में एक हिंदी की किताब जरूर पढ़िए। प्रेमचंद की ईदगाह ही काफी है, 20 मिनट लगेंगे और 20 साल याद रहेंगी। दूसरी, अपने बुजुर्गों से, अपनी दादी नानी से उनकी भाषा में बात कीजिए और सुनते वक्त मोबाइल नीचे रख दीजिए, वे कहानियाँ किसी किताब में नहीं मिलेंगी। और तीसरी, कभी किसी की हिंदी पर मत हंसिए, क्योंकि जो टूटी फूटी हिंदी बोल रहा है वह आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है। और जब कभी आपको खुद बोलने में झिझक हो दोस्तों, तो याद रखिए, आप किसी और की भाषा नहीं बोल रहे, आप अपनी माँ की भाषा बोल रहे हैं।

0: दोस्तों वाकई में ये नया भारत है, यहाँ पर एक नया मंजर देखने को मिल रहा है जहाँ आज के युवा भी हमारी अपनी भाषा पर गर्व कर रहे हैं। और आज अल्फा जैन में उर्वी ने बात की हमारी भाषा हिंदी की, हमारी मातृभाषा की, जो एक एहसास है। उर्वी, चूँकि समय हो गया है यहाँ से जाने का, तो जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं इतना कहना चाहती हूँ कि भाषा हमारे लोगों को हमारे भीतर जिंदा रखती है। जब तक हिंदी है तब तक हमारा देश है। तो आज बस इतना कीजिए, यह कार्यक्रम खत्म होने के बाद अपने किसी अपने से हिंदी में बात कीजिए, खुले दिल से, बिना झिझक के। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी भाषा बोलिए, अपनी भाषा में सोचिए और अपनी भाषा पर गर्व कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद उर्वी हमसे जुड़ने के लिए और इतना अच्छा मैसेज हमारे युवा साथियों को देने के लिए। तो दोस्तों आप सभी

को हिंदी दिवस की आकाशवाणी रेनबो की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि उर्वी ने कहा है कि जाने के बाद, हमारे जाने के बाद आप हिंदी में खुलकर बातें करिए। मैं बता रही हूँ आपको, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ हिंदी में अपनी भावनाओं को व्यक्त करके। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ यहाँ से, लूँगी आपसे इजाज़त, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, जुड़े रहना है आकाशवाणी रेनबो के साथ। आगे आप सुनेंगे प्रोग्राम सिटी लाइट्स।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आइए अब सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भाषाई विविधता देश की ताकत है और हिंदी विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच संवाद का प्रभावशाली सेतु बनकर राष्ट्रीय एकता को और मजबूत कर सकती है। गृह मंत्री आज नवी मुंबई में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में यह बात कही। रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित

लेन देन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत पूरे बैंक अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेन देन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ब्रिक्स नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण नींव बताया। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर आगाह किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा, देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर है। भारत के विद्युत मंत्रालय ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को 13 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की है कि गुजरात ने मिष्ठी योजना के अंतर्गत कच्छ में 27,000 हेक्टेयर में मैंग्रोव पौधे लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में आज शाम हल्की बारिश हो सकती है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। और अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। तो आकाशवाणी एफएम रेनबो पर ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आज शहर में कहाँ है रौनक, कहाँ है कुछ खास इवेंट, क्या होने वाला है खास और ट्रैफिक का क्या है ट्विस्ट, हर जरूरी खबर मिलेगी बिल्कुल शॉर्ट और स्मार्ट अंदाज में। तो लाइट्स ऑन, दिल की धड़कने ऑन, मूड भी बिल्कुल मैजिकल, क्योंकि शहर की इन चमकती गलियों से लेकर आपके दिल के कोने तक आज का सफर है बहुत खास। वेलकम टू सिटी लाइट्स विद आरजे सीमा, जहां शहर की रोशनी और किस्से कुछ कहते हैं। शाम ढलने को है, शहर ने ओढ़ ली है रोशनी की चादर, कुछ किस्से सड़कों के, कुछ बातें मौसम की, मिजाज की, कुछ यादें दिल की और कुछ बातें आपकी और हमारी। आज की फिजाओं में शामिल है उत्सव की रौनक की महफिल, खुशियों की आहट और जश्न का अंदाज।

सुन रहे हैं आप सिटी लाइट्स मेरे यानी सीमा के साथ। बट अब मौसम की, दिल्ली की फिजाओं की, जहां आज पूरे दिन बादल की आंख मिचोली लगातार रही है। दिल्ली की फिजाओं में आज बादलों ने ये बादलों की नरम सी आहट है, कहीं बूंदों की रवानी है तो कहीं हवाओं में बारिश की खुशबू है। तो शाम में निकलने से पहले थोड़ी सी सावधानी रख सकते हैं, छाता लेकर चलिए, कहीं बारिश में भीग ना जाएं। और अगर आपको बारिश में भीगना पसंद है तो फिर इस मौसम को जाने ना दीजिए, भीग लीजिए और साथ में कुछ जायके के लिए कुछ खट्टा कुछ मीठा ले सकते हैं। तो शाम में निकलने से पहले छतरी साथ

रखें क्योंकि आज मौसम थोड़ा मिजाजदार है और साथ ही साथ बता दें थोड़ा सा समय लेकर चलें। बहरहाल ये प्यारा सा ट्रैक आपकी पेशी नजर।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

हाँ, तो बात अब ट्रैफिक अपडेट की। सबसे पहला मंत्र, धैर्य रखें, नियमों का पालन करें, सुरक्षित चलें और अपनों तक सही सलामत पहुंचें। आज जैसा कि सोमवार है, सप्ताह का पहला दिन, तो इस दिन को भी दिल्ली में ट्रैफिक सामान्य सोमवार से कुछ ज्यादा प्रभावित रहने की संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि पीक आवर्स में मुख्य चौराहों और व्यस्त सड़कों पर ट्रैफिक धीमा हो सकता है। निकलने से पहले वैकल्पिक मार्ग चुनें, पर्याप्त समय लेकर चलें, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मानकर चलें, क्योंकि गणेश उत्सव की वजह से राजधानी में कई इलाकों में पंडाल

पूजा और श्रद्धालुओं की आवाजाही रहेगी, इसलिए शाम के वक्त धार्मिक लोकल ट्रैफिक रोड्स और भीड़भाड़ थोड़ी सी आपको मिल सकती है। तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर होंगे इस चीज़ के लिए तो ज़्यादा अच्छे ऑप्शन चूज कर पाएंगे और कूल रहेंगे, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स, जहाँ आपको स्पेशल फील कराते हैं हम, क्योंकि आपकी और हमारी होती है दिल की बात। आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर दिल्ली और NCR में आप सुन रहे हैं हमें इसी फ्रिक्वेंसी के साथ। इसके अलावा देश के तमाम हिस्सों में अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर अलग अलग माध्यम से हम आपके साथ और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये रिश्ता है दिल से दिल का। और बातें भी हो रही हैं यहाँ पर दिल के साथ साथ बहुत से काबू भी। महरहाल रफ्तार जरूर मंद है, लेकिन वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा कर रखिए, क्योंकि सिटी लाइट सुन रहे हैं आप मेरे यानी RG सीमा के साथ। और यहाँ पर सिटी लाइट्स में भी जयपुर से गाड़ी निकलकर दिल्ली आ रही है हल्ले हल्ले। एंजॉय कीजिए, बहुत ही प्यारा गाना, आपको बहुत मजा आएगा सुनकर। लेकिन ट्रैफिक मंत्रा को जरूर ध्यान रखिएगा।

जी गाड़ी जयपुर से निकलकर दिल्ली हल्ले हल्ले जरूर चल रही है, लेकिन आपको जरूर ध्यान रखना है कि सीट बेल्ट बांधनी है, हेलमेट लगाना है और दिल्ली की शाम के साथ अपडेट रहना है सिटी लाइट्स में। एंजॉय कर रहे हैं सिटी लाइट्स विद आरजे सीमा।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

शहर की इन चमकती गलियों से लेकर आपके दिल के कोने तक आज का सफर है बहुत खास। सिटी लाइट्स में लेकर आए हैं आपके लिए वो प्यारे गीत जो आपके दिल के हैं बेहद करीब, यानी कि इंफॉर्मेशन में म्यूजिकल तड़का।

आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक। बहुत ही प्यारा खूबसूरत सफर और इस सफर की हम सफर मैं सीमा। आज का दिन है बहुत खास क्योंकि आज फिजाओं में है भक्ति के रंग, श्रद्धा और उल्लास क्योंकि आज है गणेश चतुर्थी। विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति गणपति बप्पा के स्वागत का पावन दिन। तो आइए पूरे प्यार और श्रद्धा से कहें गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। सुबह से घरों और पंडालों में गूंज रहे बप्पा के जयकारे और शाम होते होते दिल्ली की फिजाओं में भक्ति के साथ सेलिब्रेशन का रंग और भी गहरा हो गया है। तो फिर आइए इस भक्ति, श्रद्धा और उल्लास में हम भी डूब जाएं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

आज की शाम में खास जिक्र के नाम, हमारी प्यारी हिंदी के नाम। 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस, वो जुबान जिसमें माँ की ममता भी है, मोहब्बत की मिठास भी और अपनेपन की वो खुशबू भी जो सीधे दिल तक पहुँचती है। कुछ रिश्ते लफ्जों के मोहताज नहीं होते और हिंदी वो जुबान है वो जो खामोश एहसासों को भी आवाज है। तो हिंदी दिवस पर आप सभी को दिल से मुबारकबाद, बहुत बहुत बहुत बधाइयां।

और इसी के साथ हमारे स्टूडियो की मैडम टिक टिक ने इशारा कर दिया है कि समय हो गया है यहाँ पर आपसे इजाजत लेने का, इस वादे के साथ कि फिर आपसे मुलाकात होगी। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और दीजिए इजाजत सीमा चौधरी को। टाटा बाय बाय।

लीजिए प्रस्तुत है तुर्की एफएम रेनबो मुख्य समाचार। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भाषाई विविधता देश की ताकत है और हिंदी विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच संवाद का प्रभावशाली सेतु बनकर राष्ट्रीय एकता को और मजबूत कर सकती है। गृह मंत्री ने आज नवी मुंबई में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में ये बात कही। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने मिजो संस्कृति को संरक्षित रखते हुए हिंदी सीखने का आह्वान किया है। उन्होंने आज आइजोल में हिंदी दिवस समारोह में ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान दिल्ली सरकार 13,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेगी। रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेनदेन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा पर मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेनदेन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। अमेरिका के एक विश्लेषक ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। रक्षा मंत्रालय ने कहा, देश के उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर

चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। लंदन में कल हजारों लोगों ने पहली बार टेम्स नदी की आरती की। कार्यक्रम का आयोजन चिन्मय मिशन यूके ने टोटली टेम्स महोत्सव के सहयोग से किया। ये आयोजन संस्था की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया। और देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। तो ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

नमस्कार, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों आप सुन रहे हैं म्यूजिकल यूर्स, आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6, दिल से दिल तक। दोस्तों दिल्ली और एनसीआर के अलावा आप हमें अलग जगहों पर और विभिन्न फ्रीक्वेंसीज पर सुन रहे हैं। अब वक्त हो गया आपके मस्त मस्त प्रोग्राम का, जिसका नाम है मैसेज मसाला मिक्स। और दोस्तों आज मैसेज मसाला मिक्स में आपका साथ देने स्टूडियो में उपस्थित है आपका दोस्त रोस्ट प्रवीण शर्मा। दोस्तों जैसे कि आप सबको मालूम ही है कि आज है गणेश चतुर्थी का पावन पर्व, और आज से ही गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको गणेश उत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। जी, आपको बहुत बहुत गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई दोस्तों। भगवान श्री गणेश के चरणों में हम सभी नमन करते हैं और ये कामना करते हैं दोस्तों कि भगवान श्री गणेश अपने भक्तों पर असीम कृपा करें, हम सब पर उनका आशीर्वाद समय सदा हमेशा बना रहे। और दोस्तों आज का हमारा सवाल है वो ये है कि क्या आपको कभी अचानक कोई सुखद समाचार मिला है जिसकी आपको कभी कल्पना ही नहीं थी? क्या कोई ऐसी सूचना आपको मिली है या ऐसी सूचना आपको प्राप्त हुई जिसने आपके हृदय को प्रफुल्लित कर दिया हो और आपके हृदय को खुशी से भर दिया हो? तो आप अपना जवाब हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो हमारा नंबर है 9868107070। जी हाँ, 9868107070। और सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो पर अपना मस्त मस्त प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

ने हमें मैसेज किया है आसाम से, स्वागत है आपका हितेंद्र जी। कंचन ने सोनिया बिहार दिल्ली से हमें संदेश भेजा है, कह रही है गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? हम तो अच्छे हैं, आप कैसे हैं कंचन जी? आगे कह रही हैं कि आपका प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, अच्छा चल रहा है। गणेश चतुर्थी की और हिंदी दिवस की और तीज की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी गणेश चतुर्थी की और हिंदी दिवस की ढेरों हार्दिक बधाइयां। नरेंद्र सोनी देवीगढ़ पटियाला से हमें संदेश भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि शुभ संध्या। आज के जो टॉपिक पर मैं कहना चाहता हूं कि हमेशा की हमें सुखद समाचार जो है वो मिलने की संभावना हमें हमारे मन में रहती है, कामना बनी रहती है। और ये कह रहे हैं कि ऐसा हुआ कि एक सुखद समाचार मुझे भी मिला, क्योंकि मैं जब घर से दूर पंजाब में आया हुआ था, यहाँ रहता हूँ, और घर से समाचार आया कि मेरे घर पर एक नन्ही बिटिया आई है। क्या बात है, बहुत खूब, आपको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जी हाँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, एक नन्ही सी प्यारी सी बिटिया आपके घर आई है। और यकीन मानिए जो है बिटिया जो है वो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं, ऐसा कहा जाता है। तो आपको ढेरों बधाइयाँ। प्रदीप सलूजा जी जनकपुरी नई दिल्ली से कह रहे हैं कि प्रवीण जी कैसे हैं आप? हम तो अच्छे हैं। ये कह रहे हैं कि बहुत बहुत शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की, आपको भी बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।

किशन बजनानी, नीलम स्वाति और किशोर रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से जुड़ गए हमारे साथ। कह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर गीत आपने बजाया शुरुआत में, और कह रहे हैं कि कार्यक्रम बड़ा अच्छा लग रहा है, हमारी भी अटेंडेंस लगा दीजिए भाई, आपके भी उपस्थिति दर्ज हो गई है। बस आप हमें संदेश जरूर भेजिएगा कि क्या आपको कुछ सुखद समाचार ऐसा मिला जिसकी आपने कभी कल्पना तक नहीं की थी।

प्रेमचंद प्रेमी जी ने धामपुर से हमें संदेश भेजा है कि ये कह रहे हैं कि नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी ओर से और समस्त देशवासियों को गणेश चतुर्थी और गणेश चतुर्थी एवं हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे उन्होंने कहा है कि यूं सिरमौर हिंदी बने और होवे उत्थान, सभी मिलकर जो करें निज भाषा में काम, निज भाषा में काम। क्या बात है प्रेमचंद जी, बहुत बहुत बधाई आपको और शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की और हिंदी दिवस की, ढेरों बधाइयां। दोस्तों कहीं में जाइए, हमारे और इस प्यारे से गीत के बाद फिर करेंगे आपके संदेश लेंगे और करेंगे आपसे ढेरों बातें।

0: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
1: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाले खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
0: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
1: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
0: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

दोस्तों ब्रेक के बाद पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप सुन रहे प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। अगला संदेश हमें मिला है, यह है यशवंत धाराशिव महाराष्ट्र से। यशवंत जी कह रहे हैं कि एक बार मुझे मालूम चला कि मेरा भाई जो है वो एडमिट है, और जब वो अच्छे हो गए तो मैं बड़ा खुश हुआ। ये खुशखबरी जब मुझे मिली तो मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। यशवंत जी आपका धन्यवाद संदेश भेजने के लिए कि आपको मालूम चला कि आपका जो भाई है एडमिट है, उसके बाद जब वो स्वस्थ हो गए तो आप बड़े खुश हुए। यकीनन इस खुशी की शायद कल्पना भी हम नहीं कर सकते। इतनी खुशी होती है जब हमारे कोई अपने स्वस्थ होकर घर लौटते हैं। पंकज अमरावती महाराष्ट्र कह रहे हैं, पंकज जी कह रहे हैं, गुड इवनिंग प्रवीण शर्मा जी, नमस्ते, आपको भी नमस्कार। ये कह रहे हैं कि गणेश चतुर्थी की सभी को मंगलमय हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की। ये कह रहे हैं कि मुझे सुखद अच्छी बात लगी थी जब मैंने साल 2002 में 10वीं की परीक्षा पास की थी, और मेरे परिवार में अकेला इकलौता व्यक्ति था जिसने पहली बार 10वीं कक्षा पास की थी। इस खुशी में मैं बहुत प्रफुल्लित हुआ था। पंकज जी संदेश भेजने के लिए बहुत धन्यवाद। यकीनन आपने कुछ अच्छा ऐसा काम किया जिसमें पूरे परिवार को जिस पर गर्व होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। संदेश भेजने के लिए पंकज जी आपका बहुत धन्यवाद। आरिफ रब्बानी जुड़ गए हमारे साथ जिला हापुड़ से। ये कह रहे हैं कि मैं अपने घर वापस लौट रहा था गुरुग्राम से काम करके। घर जाते ही मुझे खबर मिली कि मेरे बड़े भाई के बेटा हुआ है। मुझे इस खबर का अनुमान ही नहीं था। सुनते ही मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। क्या बात है, सचमुच वो खुशी के आंसू थे आरिफ साहब।

अचानक और सदा के लिए सुखद होता है। क्या बात है। अगला संदेश मिला है, ये है कोमल वाडेकर नासिक महाराष्ट्र से। कोमल वाडेकर कह रहे हैं कि गणेश चतुर्थी की आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। पिछले महीने में मेरा फोर्थ स्कॉलरशिप एग्जाम का परिणाम आया, जिसमें प्रथम स्थान आया है मेरा। ये बात अचानक से मुझे मालूम हुई तो जो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। कोमल जी, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ऐसे खुशी के मौके पर जरूर लड्डू खाइएगा और सबको खिलाइएगा। दोस्तों कहीं मत जाइए, क्योंकि हम हाजिर हो रहे हैं इस प्यारे से गीत के बाद और फिर लेंगे आपके संदेश एक के बाद एक जो हमें मिलते चले जा रहे हैं। सुनते रहिए मैसी मसाला मिक्स आकाशवाणी FM रेनबो पर।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

दोस्तों ब्रेक के बाद अपना आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप है इस वक्त मैसेज मसाला मिक्स के खूबसूरत महफिल में दोस्त प्रवीण शर्मा के साथ और सुन रहे हैं म्यूजिकल योर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। अगला संदेश में मिला है ये है सुखलाल बाला कूच बिहार वेस्ट बंगाल से। कह रहे हैं गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई गणेश चतुर्थी की, हार्दिक शुभकामनाएं। अगला संदेश में मिला है विजेंद्र का घटौल अकोला महाराष्ट्र से। कह रहे हैं कि गणपति बप्पा मोरिया हमारी तरफ से भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी हां, आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।

ये कह रहे हैं कि मुझे मेरे भाई ने एक किसी आरजे की तस्वीर दिखाई थी और मैं बहुत खुश हो गया हूँ आज। आपको बहुत बधाई जिससे आपको दिल को सुकून मिला हो जिस बात से, और यकीनन वो बात जो है वो बहुत खुशी देती है, हमें बहुत सुकून प्रदान करती है। अगला संदेश में मिला है, ये है अंशी शर्मा हस्तिनापुर मेरठ यूपी से। अंशी शर्मा जी कह रही हैं कि गुड इवनिंग पंचू जी, आपको भी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? हम तो अच्छे हैं, आप कैसी हैं? अंशी जी ये कह रही हैं कि हैप्पी गणेश चतुर्थी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। और ये कह रही हैं कि आज के टॉपिक पर मैं कहना चाहूँगी कि मुझे तो सुखद समाचार मेरे स्कूल में टॉप करने का मिला था। क्या बात है भाई, आपने पूरे स्कूल में टॉप किया, इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। बस इसी तरह से आप सफलता के परचम लहराते जाइए, बस हम यही उम्मीद करते हैं, यही कामना करते हैं। गंजुडवारा, ये है शमसुल कमर राही गंजुडवारा से, और ये कह रहे हैं हम आपको सुन रहे हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, गणेश चतुर्थी और हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाइयां गणेश चतुर्थी की और हिंदी दिवस की। बसंत कुमार ठाकुर कह रहे हैं कि गणेश चतुर्थी तीज के त्यौहार और हिंदी दिवस की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। आपको भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं बसंत कुमार जी।

देहरादून से आलोक पवार और मिनी कह रही हैं श्री गणेश चतुर्थी की पूरी टीम को यानी कि गणेश चतुर्थी की बधाई पूरी टीम को, एफएम की पूरी टीम को और सभी श्रोताओं को भी, आपको भी धन्यवाद, बधाइयां हार्दिक। और ये कह रहे हैं कि त्यौहार है, सबके साथ में सबको मिलकर बनाना चाहिए। बिल्कुल भाई, सबको मिलकर बनाना चाहिए, यकीनन त्यौहार का मज़ा जो है तभी तो दुगना हो जाता है, बल्कि यूं कहा जाए कि चौगुना हो जाता है।

और ये हमारे से जुड़ गए हैं, ये हैं संजीव कुमार, अमन कुमार, ये हैं गांव खुखनानी, तहसील इंद्री, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से। ये कह रहे हैं कि आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की और हिंदी दिवस की। आपको भी बहुत बहुत बधाई गणेश चतुर्थी की और हिंदी दिवस की। और ये कह रहे हैं कि हमें सुखद समाचार तब मिला था जब हमें आकाशवाणी से हमारा नाम यानी कि संजीव कुमार और इनके यंगर ब्रदर का नाम यानी अमन कुमार का नाम ब्रॉडकास्ट हुआ था, तो इन्हें बड़ी खुशी मिली थी। बहुत धन्यवाद आपको संजीव जी और अमन जी कि आपका नाम प्रसारित हुआ था, और इसको कहते हैं, इस खुशी को हम शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद आपका संदेश भेजने के लिए, हार्दिक बधाई। दोस्तों, इस पहले कि हम आगे बढ़े, क्यों ना हो जाए एक प्यारा सा गीत, उसके बाद फिर लेंगे आपके ढेरों संदेश।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: वेलकम फ्रेंड्स, एक ब्रेक के बाद पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप सुन रहे प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स आकाशवाणी FM रेनबो पर। तो चलिए करते हैं एक बार फिर से आपके संदेशों का सिलसिला। ये हैं भेरूलाल वाकतरिया धाकड़, उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। ये कह रहे हैं कि आकाशवाणी रेनबो परिवार को गणेशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं गणेशोत्सव की। अनिल शर्मा जी सरिता बिहार से जुड़ गए हमारे साथ। अनिल जी कह रहे हैं कि मुझे खुशी हुई जब मेरी एक बेटी को उसके नियोक्ता ने PhD करने के लिए स्पॉन्सर किया था, यही मेरे लिए एक खुशखबरी अजूबे से कम नहीं थी। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसी खुशी जब हमें मिलती है जिसकी हमें शायद कल्पना भी नहीं होती, और वो खुशी जब हमें प्राप्त होती है ना, तो हम यकीनन हमारा जो है हमारे कदम ज़मीन पर नहीं पड़ते, हम खुशी में उछल पड़ते हैं। धन्यवाद आपका संदेश भेजने के लिए, इतना खूबसूरत संदेश, धन्यवाद अनिल जी। देहरादून से आलोक पंवार और मिनी कह रहे हैं कि श्री गणेश चतुर्थी की पूरी FM टीम को और सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। त्यौहार है, सबके मन में सबके साथ मनानी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने।

अगला संदेश में मिला है, यह है हर्षवर्धन पांडे, जिला पन्ना मध्य प्रदेश से। हर्षवर्धन पांडे जी कह रहे हैं कि आकाशवाणी एफएम रेनबो मैं अक्सर सुनता रहता हूं, और प्रवीण शर्मा जी आपको

गुड इवनिंग, आपको भी गुड इवनिंग कह रहे हैं कि आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, आपको भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हर्षवर्धन जी। और ये कह रहे हैं कि आज के प्रोग्राम के बारे में, आज का प्रोग्राम इन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है और कह रहे हैं कि मैं ही कहना चाहता हूँ आज के प्रोग्राम के बारे में कि मुझे मेरे जीवन में मुझे उस समय प्रसन्नता प्राप्त हुई जब मेरे परिवारजनों ने, मेरे प्रियजनों ने मुझे ये सूचना दी कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। और आज वही 30 वर्षीय पुत्र मेरे घर का पूरा खर्चा संभालता है। यही शर्मा जी मेरा अपना विचार है। बिल्कुल सही कहा आपने हर्षवर्धन जी, से खुशी की बात बढ़ और क्या हो सकती है कि जब बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता का सहारा बनते हैं, उनकी सच्चे में कहा जाए तो उनकी लाठी बनते हैं। और यकीनन कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम कभी कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर बड़े बुजुर्गों को कोई बात सुनने को मिल जाए अपने छोटे यानी बच्चों से, बच्चों के मुंह से, तो शायद उसी के ऊपर कुछ पंक्तियां किसी ने क्या खूब कही हैं कि दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन से रस्ते बना लिए। लेकिन हर्षवर्धन जी, आप यकीनन खुशकिस्मत हैं कि आपको इतना अच्छा पुत्र मिला है, इतने अच्छे पुत्र की प्राप्ति हुई है। यकीनन सभी माता पिता ऐसे बच्चों की कामना अवश्य करते हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। धन्यवाद संदेश भेजने के लिए, धन्यवाद। गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ पंक्तियां लेकर भेजी हैं प्रवीण शर्मा को। प्रभार भरा नमस्कार, आदा बरसो, आपको भी आदा बरस। और ये कह रहे हैं, किसी का दुख देखकर दुखी हो जाता हूं मैं, सबके सुख की हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं मैं। क्या बात है। आदाब कर रहे हैं हमें फारूक अली खान। ये कह रहे हैं कि मेरी वाइफ ताहिरा जी बहुत बीमार हो गई थी, अलीगढ़ मेडिकल में काफ़ी इलाज हुआ, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी पर ऊपर वाले का शुक्र है कि अब वो बिल्कुल ठीक है। यह कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा, आज आपका इतने दिनों बाद संदेश मिला। वैसे अक्सर आपके परिवार के नाम हम पढ़ते हैं और हमें अच्छा लगता है कि आप हमारा प्रोग्राम अक्सर सुनते हैं, हमारे निमित्त श्रोता हैं। और ये जानकर खुशी हुई कि आपकी जो बेगम हैं, आपकी जो शरीक हयात हैं, वो स्वस्थ हो गई। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि वो अच्छी हैं। यकीनन इस खुशी की खबर सुनकर आप फूले नहीं समाये होंगे। धन्यवाद फारूक अली खान साहब संदेश भेजने के लिए। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, क्यों ना हो जाए एक प्यारा सा गीत, और उसके बाद फिर लेंगे आपके ढेरों संदेश। सुनते रहिए अपना मनपसंद प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स।

0: सी तेरी बोली, कु
1: आए हाय।
0: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल,
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

दोस्तों वीक पर पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। लगभग 10 मिनट के आसपास रह गए दोस्तों, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द हम आपके संदेश शामिल कर लें। ये अगला संदेश में मिला है भुवनेश कुमार का, अशोक विहार दिल्ली से। भुवनेश जी कह रहे हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब मिली जब मेरे फेवरेट खिलाड़ी को जब मैंने मैसेज किया उनके जन्मदिन पर तो उनका भी मुझे रिप्लाई आया, तो वो दिन मेरी खुशी का बहुत बड़ा दिन था और इसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। धन्यवाद भुवनेश जी संदेश भेजने के लिए। नमस्कार कर रहे हैं हम गणेश चतुर्थी की, आपको बधाई, हम सबको बधाई दे रहे हैं। ये हैं आपको भी शुभकामनाएं, बधाइयां गणेश चतुर्थी की। ये कह रहे हैं ये हैं पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, आप सभी का धन्यवाद। कंचन सोनिया विहार दिल्ली से जुड़ गई हैं। कंचन जी कह रही हैं कि हेलो सर, मुझे भी पहली बार ऐसी गुड न्यूज़ मिली थी जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था उस बारे में कि मेरा नाम रेडियो पर पहली बार आएगा। चलिए बहुत खुशी हुई जानकर कंचन जी कि आपका नाम पहली बार आया। अब की बार जब पहली बार आया तो अब आता ही जाएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं हम, ऐसी कामना करते हैं। धन्यवाद संदेश भेजने के लिए कंचन जी। प्रदीप सलूजा जी कह रहे हैं जनकपुरी से, मेरे जॉब मेरी 7 महीने हो गए लगे हुए, कड़कड़ुमा कोर्ट में जॉब है जी। आपको आपका धन्यवाद, आपका स्वागत है और आपको बधाइयाँ, ढेरों बधाइयाँ। यानी वो दिन आपकी खुशी का सबसे ज़्यादा खुशी का बड़ा दिन होगा जब आपको ये खुशी मिली होगी, खुशखबरी मिली होगी कि आपकी जॉब लग गई है। संजीव कुमार जी और अमन कुमार जी हमें धन्यवाद दे रहे हैं मैसेज इंक्लूड करने के लिए। भाई तुम्हारा, ये तुम्हारा फर्ज है, आप हमारे नियमित श्रोता हैं, हमारे हमें अक्सर संदेश भेजते रहते हैं और हम आपके दिल में बसते हैं और आप हमारे दिल में रहते हैं सदा। ये है ही आपका अपना प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स, क्योंकि है ये दिल से दिल तक। आज से मोहल्ले में गणपति उत्सव मनाया जा रहा है। ये है विजय टुटेजा, राजेश द्विवेदी, कार्तिक, जितेंद्र टुटेजा, राजेश भल्ला, कंकड़ खेड़ा मेरठ से। आज का टॉपिक समय अनुकूल है, जय गणेश। आपको भी शुभकामनाएं, गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाइयां। वर्मा जी नमस्कार, हम वर्मा जी नहीं हैं, हम शर्मा जी हैं। कोई बात नहीं है, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार कह रहे हैं गणेश चतुर्थी की और हिंदी दिवस की तीज की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं, आपको बधाइयां, आपको ये ढेरों शुभकामनाएं बधाइयां। आधा वर्ष कर रहे हैं ये सभी हमारे सितारे हैं रेडियो के, ये हैं कह रहे हैं हम सभी आपको सुन रहे हैं। ये ऊपर कोट बुलंदशहर से हैं MS अब्बासी, पूरा अब्बासी परिवार, आपको भी बहुत बहुत बधाइयां शुभकामनाएं। नवाब अहमद भारती, शबाना भारती नमस्कार कह रहे हैं। इसके अलावा ये हैं बबलू कश्यप, अशरफ अली, सिराज मिथुन, पिंटू दीवाना, नवाब अहमद, संजय मलाकार, ये हैं बलुद्दीन, मनोहर लाल गांधी और संजय ढांगिया, ये हैं दिल्ली से, आप सभी का स्वागत है। इनका संदेश द्वारा हमें मिल गया है। ये प्रदीप जी कह रहे हैं मेरी बेटी की जॉब लगी है जी। तो आपने अपनी हमेशा लिख दिया था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, आपकी बेटी की जॉब लगी, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है भाई। जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाए ना, तो यकीनन माँ बाप की खुशी से, वो खुशी से बढ़कर कोई और खुशी हो ही नहीं सकती है कि नहीं। चलिए दोस्तों एक लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, फिर लेंगे आपके संदेश।

और दोस्तों ये अगला समय में मिला है, नमस्कार कर रहे हैं न्यू मुल्तानगर दिल्ली से सुरेंद्र खुराना, सुमित सुरभि, अनीता पुराना, कन्हैयालाल और राजू ढींगरा। प्रोग्राम काफी अच्छा लग रहा है, हमारा भी संदेश शामिल करें। गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दे रहे हैं, आपको भी शुभकामनाएं, बधाइयां। और इसके अलावा ये है गुड्डू धाकड़ उज्जैन जिले के बेड़ावन गांव से, ये भी हम शुभकामनाएं दे रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। और दोस्तों इसके साथ फिलहाल प्रवीण शर्मा आपसे लेता है इजाजत, अगली मुलाकात फिर होगी जल्दी ही, यानी रात 8 बजे प्रोग्राम होगा म्यूजिक मस्ती, जिसमें हम आप करेंगे मिलकर डांस। फिलहाल प्रवीण शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार, मिलेंगे जल्द।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सब के लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कॉन्क्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
8: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
9: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
10: Welcome back. You are tuned into the program Country Carnival with me, and I have a lot many messages. And in case you want to send in a message, the number is 9868107070. I repeat the number once again. It's the WhatsApp number. It's 9868107070. And I have a message from Colonel Gupta from Chandigarh. He says, "Good evening, Suhasini. Thank you for remembering my birthday. You're most welcome. And I hope that you had a lovely day as well." And Sriram also says, "Good evening, ma'am. How are you? Favorite weekend show, Country Carnival, playing nice tracks." And also, I have a message from Roland, and he says that, "Hi, nice to be back with you yet again. Happy birthday in advance. Love and regards, Collins." And of course, there are many people who had their birthdays as well as who passed away this past year. Let's remember Dolly Parton, who passed away, and she's one of the country singers who had a major influence in the field of music. Coming up next is another artist, and this is Luke Combs, another new artist but with Post Malone singing "Guy for That."

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: वेलकम बैक, यू आर ट्यूनिंग टू द शो कंट्री कार्निवल ऑन आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज। वेल, वी आर ट्यून्ड इनटू सम कंट्री सॉन्ग्स एंड लेट्स टॉक अबाउट द न्यू आर्टिस्ट दैट वी हैव, मॉर्गन विलन, ल्यूक कोम्स एंड देर आर मैनी एज वेल राइट नाउ। एंड दीज songwriters and singers have greatly contributed to the massive shift in the landscape of country music, because incorporating catching melodies, collaborating with various pop and rap artists and constricting themselves to different soundscapes is actually what now is called country music. Because coming up next is Blake Shelton and Jelly Roll with some of the new songs in country music.

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

लीजिए प्रस्तुत अब तक कैफे में निर्मम के समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। डॉ जयशंकर ने कहा कि यह सम्मेलन ऐसे समय हुआ जब दुनिया में ध्रुवीकरण बढ़ा हुआ है और दो बड़े संघर्ष जारी हैं। अमरीका के एक विश्लेषक ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भाषाई विविधता देश की ताकत है और हिंदी विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच संवाद का प्रभावशाली सेतु बनकर राष्ट्रीय एकता को और मजबूत कर सकती है। गृह मंत्री आज नवी मुंबई में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में ये बात कही। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दोहमा ने मिजो संस्कृति को संरक्षित रखते हुए हिंदी सीखने का आह्वान किया है। उन्होंने आज आइजोल में हिंदी दिवस समारोह में ये बात कही। दिल्ली मेट्रो रेल निगम को राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारत का सर्वोच्च राजभाषा सम्मान कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार दिल्ली मेट्रो को लगातार दूसरी बार प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान दिल्ली सरकार 13,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा, देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। और देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। तो ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। दोस्तों आप सुन रहे हैं म्यूजिकल योर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 दिल से दिल तक। दोस्तों दिल्ली और एनसीआर के अलावा आप हमें अलग अलग जगहों पर मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी पर सुन रहे हैं। और अब वक्त हो गया आपके अपने मस्त मस्त प्रोग्राम का जिसका नाम है म्यूजिक मस्ती। दोस्तों आज गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है, तो आप सभी को सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की हार्दिक ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री गणेश के चरणों में नमन करते हुए करते हैं प्रोग्राम का शुरुआत, प्रोग्राम की शुरुआत और करते हैं मिलकर एक साथ डांस, मनाते हैं गणेश चतुर्थी का पावन पर्व। आइए झूमते हैं, गाते हैं और गुनगुनाते हैं मिलकर एक साथ।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल,
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: भाई बहनों, झुमरी तलिया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है, रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है।

0: स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। कहीं में जाइए, हम आज रोने छोटे से अंतराल के बाद।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल।
4: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
5: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
6: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
7: आज की रात मजा,
6: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
5: म्यूजिक मस्ती।
8: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
9: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
5: म्यूजिक मस्ती।
10: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: दोस्तों आपको मेरे प्रोग्राम कैसे लगते हैं, आप हमें सुझाव शिकायत हमें मेल कर सकते हैं। दोस्तों हमारा ईमेल आईडी नोट करें, हमारा ईमेल आईडी है feedbackfmrainbow@gmail.com। जी हाँ, feedbackfmrainbow@gmail.com। और सुनना ना भूले, हर महीने के तीसरे शुक्रवार को दोपहर 1 बजे प्रोग्राम बिंदास बोल। फिलहाल आप हैं इस वक्त म्यूजिक मस्ती की खूबसूरत महफिल में दोस्त प्रवीण शर्मा के साथ और सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। कहीं मत जाइए, हम हाजिर हो रहे हैं छोटे से अंतराल के बाद।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: क्या है बकर? जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: डीटीएच और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज़ ऑन AIR ऐप

दोस्तों फिलहाल प्रवीण शर्मा को दीजिए अगली मुलाकात तक इजाजत, यानी म्यूजिक मिस्टर से इजाजत, फिर होगी मुलाकात लेकिन आपका मजा ही, क्योंकि अगले प्रोग्राम के साथ यानी कि आपकी याद आती रही के साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं आपके होस्ट विनीता बेदी। तो आप कीजिएगा विनीता जी का स्वागत, तो फिलहाल प्रवीण शर्मा को दीजिएगा अगली मुलाकात तक इजाजत, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि और एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां।

नमस्कार, लीजिए पेश हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये सम्मेलन ऐसे समय हुआ जब दुनिया में ध्रुवीकरण बढ़ा हुआ है और दो बड़े संघर्ष जारी हैं। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। देशभर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भाषाई विविधता देश की ताकत है और हिंदी विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच संवाद का प्रभावशाली सेतु बनकर राष्ट्रीय एकता को और मजबूत कर सकती है। गृहमंत्री आज नवी मुंबई में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में ये बात कह रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर आज जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान दिल्ली सरकार 13,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा, देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना के तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। और देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी रेनबो पर ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी दिल्ली में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी। प्रोग्राम आपकी याद आती रही मैं।

दोस्तों, कुछ शामें ऐसी होती हैं जब दिन की सारी आवाजें धीरे धीरे पीछे छूट जाती हैं। वो शाम जिसमें ना कुछ कहा गया ना सुना गया, सिर्फ और सिर्फ कुछ महसूस किया गया। ऐसी शाम को मन अपने आप उन लोगों के पास चला जाता है जो कभी हमारे बहुत ही करीब थे। कभी कोई धुन उन्हें याद दिलाती है, कभी कोई मौसम, और कभी बस यूं ही बिना किसी वजह के किसी की याद आ जाती है। आज की शाम भी ना उन्हीं मुलायम एहसासों के नाम है। मैं हूं विनीता बेदी और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी याद आती रही। तो फिर शाम को थोड़ा और खूबसूरत करते हैं कुछ मीठी यादों और कुछ सुकून भरे गीतों के साथ।

0: आती रही।
1: जी हाँ दोस्तों, आपकी याद आती रही। कुछ मुलाकातें ना बहुत ही साधारण होती हैं, लेकिन जाने क्यों उनमें से कोई एक पल हमारे भीतर ठहर जाता है। एक आवाज, एक मुस्कान, एक साथ बिताया हुआ छोटा सा पल, और फिर देखिए ना वही पल बहुत दिनों बाद भी मन के किसी कोने को रोशन किए रहता है, और तब लगता है कि आज जो है न जाने कल होगा या नहीं।

दोस्तों, जिंदगी ना हमें ये एहसास बहुत देर से करवाती है कि हमारे पास जो पल है वही सबसे अपना है। कल का भरोसा नहीं, इसलिए जो कहना है आज ही कह दीजिए। जिसे अपनेपन से देखना है आज देख लीजिए, और जिसे भी प्यार करते हैं ना उसे ये एहसास होने दीजिए कि वो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि कुछ पल कभी लौट कर नहीं आते। और कुछ लोग भी जब जिंदगी से चले जाते हैं ना तो कभी सामने नहीं आते। देखो

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे

आपकी याद आती रही विनीता बेदी के साथ। दोस्तों, दूरियां हमेशा रिश्तों को खत्म नहीं करती, कभी कभी दूरी किसी की मौजूदगी को और भी गहरा कर देती है। एक आवाज की कमी, एक चेहरे की तलाश और कभी एक नाम का अचानक से याद आ जाना, और हम समझते हैं कि कोई हमसे दूर होकर भी हमारे कितना पास है। क्या सच में, या हमारा दिल है कि रह रह कर उनके पास लौटता।

आपकी याद आती रही विनीता बेदी के साथ। दोस्तों, आंखों में भी एक पूरी दुनिया बसती है, कुछ खुशियां, कुछ सपने, कुछ इंतजार और कुछ ऐसे भाव जिन्हें शब्दों में बता पाना बहुत ही मुश्किल होता है। कभी आंखें मुस्कुराती हैं तो कभी वही आंखें बहुत कुछ छुपा लेती हैं। शायद इसीलिए किसी को समझने के लिए ना कभी कभी सिर्फ उसकी आंखों में देखना ही काफ़ी होता है, क्योंकि इंसान झूठ बोल देता है, उसकी आंखें कभी झूठ नहीं बोल पाती। इन आंखों में बहुत कुछ बसा होता है, सपने भी और हकीकत भी।

0: के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: मंगल भवन मंगलहारी,
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
4: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

आपकी याद आती रही विनी द्विवेदी के साथ। दोस्तों, एक खत कितनी सामान्य सी चीज लगता है ना, लेकिन कभी किसी अपने के हाथ का लिखा हुआ एक छोटा सा खत पूरी दुनिया से अधिक अपना लग सकता है। आज संदेश पलक झपकते पहुंच जाता है जहां तक चाहे, लेकिन इंतजार का वो सपना कहीं शायद पीछे छूट गया है, क्योंकि वो भी एक दौर था जब कभी किसी के शब्दों का इंतजार करना मोहब्बत का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा हुआ करता था। लेकिन आज आज तो लगता है कि शायद उन्हें फुर्सत ही नहीं हमसे मिलने की, बात करने की, पलट के देखने की।

और अब दोस्तों, इस शाम की आखिरी पेशकश। कुछ रिश्ते हमारे साथ नहीं रह पाते, लेकिन उनकी याद हमारे साथ हमेशा चलती है। हम आगे बढ़ जाते हैं, जिंदगी बदल जाती है, मौसम बदल जाते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में कुछ नाम वैसे के वैसे ही रहते हैं। शायद प्रेम का अर्थ हमेशा साथ रहना नहीं होता। कभी कभी किसी को उसकी पूरी सच्चाई के साथ अपने भीतर बचा लेना भी तो एक मोहब्बत है। चलिए, यादें तो दुख देती ही रहेंगी, लेकिन हर याद में कभी ना कभी कोई ना कोई खूबसूरत पल जरूर छिपा रहता है। मैं हूं विनीता बेरी दोस्तों, और आप सुन रहे थे आपकी याद आती रही। कल फिर मिलेंगे शाम के धुंधलके में किसी और याद के साथ। तब तक अपनों को अपना कहने में देर मत कीजिएगा, क्योंकि कब कौन सरक जाए यादों के झरोके से कुछ पता ही नहीं चलता।

दिस इज आकाशवाणी द न्यूज हेडलाइंस एट दिस आवर. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर हेल सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ ब्रिक्स समिट इन न्यू दिल्ली सेज इंडिया शोड स्ट्रॉन्ग कन्वीइंग पावर. ग्लोबल लीडर्स प्रेज ब्रिक्स समिट फॉर स्ट्रेटनिंग कोऑपरेशन अमंग डेवलपिंग नेशंस एंड एडवांसिंग प्रायोरिटीज ऑफ ग्लोबल साउथ. US based analyst says New Delhi declaration reflects India's ability to build consensus. India approves 18 hour power supply to flood hit Nepal till December and amid hydropower crisis. Human Rights Council of Pakistan occupied Jammu and Kashmir expresses concern over prolonged protests and unrest in the region. गणेश चतुर्थी बींग सेलिब्रेटेड अक्रॉस कंट्री विद ग्रैंडियर डिवोशन एंड फेस्टिव गेयटी. दोज वर द हेडलाइंस एट दिस आवर.

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वेलकम बैक, यू आर ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ एंड द टाइम बाय स्टूडियो क्लॉक इज 10:01:55. वेलकम टू द वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम Rainbow Showcase. And today we are showcasing none other than the boy band era that had everybody on their knees. That is the American vocal group consisting of Nick Carter, Howie Doro, AJ McLean, and cousins Brian Littrell and Kevin Richards. That is Backstreet Boys.

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

आकाशवाणी रेनबो पर लीजिए प्रस्तुत हैं इस घंटे के प्रमुख समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। डॉ जयशंकर ने कहा कि ये सम्मेलन ऐसे समय हुआ जब दुनिया में ध्रुवीकरण बढ़ा हुआ है और दो बड़े संघर्ष जारी हैं। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा भाषाई विविधता देश की ताकत है और हिंदी विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच संवाद का प्रभावशाली सेतु बनकर राष्ट्रीय एकता को और मजबूत कर सकती है। गृहमंत्री आज नवी मुंबई में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में ये बात कह रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर आज जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी बनाना और लोगों के लिए महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों को समझना आसान बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान दिल्ली सरकार 13,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा देश के उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना के तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर है। सऊदी अरब की महत्वपूर्ण तेल पाइपलाइन मरम्मत के लिए 3 से 5 सप्ताह तक बंद रह सकती है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। और देशभर में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी रेनबो पर ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आकाशवाणी रेनबो पर स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग महफिल में। दोस्तों, रात के इस पहर में शहर थोड़ा शांत हो जाता है, दिन भर की भागदौड़ थमती है और मन को अपने ही पास लौटने का थोड़ा सा वक्त मिलता है। जिन्हें हम बहुत पीछे छोड़ आए थे, वो जाने कैसे दिल के फिर से करीब बैठ जाते हैं। तो आज की महफिल उन्हीं एहसासों के नाम, जहां कुछ दर्द होंगे, कुछ यादें होंगी, कुछ अधूरी बातें और कुछ ऐसे रिश्ते जिनका कोई नाम ही नहीं। मैं हूं विनीता बेदी और आप सुन रहे हैं रंगे महफिल मेरे साथ।

जिंदगी में कुछ रास्ते हम बहुत सोच समझ कर चुनते हैं और फिर उन्हीं रास्तों पर चलते हुए कभी पीछे मुड़कर देखते हैं ना दोस्तों, तो लगता है कि कितना कुछ था जो हमने वहीं छोड़ दिया। लोग, मुलाकातें, छोटी छोटी खुशियां, वक्त गुजर जाता है लेकिन बीते हुए दिनों की खुशबू ना कहीं हमारे आसपास बनी रहती है। शायद वक्त का तकाजा या दिलों का हौसला। रंगे महफिल में आप हैं विनीता बेदी के साथ।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल विनीता बेदी के साथ। दोस्तों, कुछ रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती उनकी खामोशी होती है। बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, सामने वाला खुद ही समझ जाता है कि आवाज में छिपी थकान क्या है या चुप्पी में छिपा दुख क्या है। ऐसे रिश्ते बहुत कम मिलते हैं, और अगर कभी मिल जाए ना तो उन्हें संभाल कर रखिए।

पता है, शिकायतें हमेशा नाराजगी नहीं होती। कभी कभी शिकायत का मतलब होता है कि दिल ने अभी उम्मीद छोड़ी नहीं है। जिससे कोई उम्मीद नहीं होती उससे तो कभी शिकायत हो ही नहीं सकती। इसलिए रिश्तों में आई हुई शिकायतों को हमेशा दुश्मनी नहीं समझिए। कभी कभी शायद वो रिश्तों को बचाने की आखिरी कोशिश होती हैं, या फिर ये भी कि दिल इतना हताश इतना निराश हो चुका है कि शायद कुछ कहने को सुनने को बचा ही नहीं है।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
0: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

आकाशवाणी रेनबो पर आप हैं प्रोग्राम रंगे महफिल में अपने दोस्त विनीता बेदी के साथ। कभी कभी दिल को बस थोड़ी देर चाहिए होती है, ना कोई जवाब ना सफाई, बस कुछ पल बिना किसी बोझ के,

दोस्तों, हम पूरी ज़िंदगी बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन आखिरी में जिस शय की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, वो है सिर्फ और सिर्फ सुकून। और सुकून किसी चीज़ का नाम नहीं, दिल के एक एहसास का नाम है।

आज की रंगे महफिल की आखिरी गजल। याद की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वो किसी भी दूरी को मानती ही नहीं, जिसे हमसे बिछड़े सालों बीत गए वो भी किसी उदास रात को दिल के बहुत करीब हो सकता है। बीता हुआ वक्त जैसे अचानक से ही सामने आ बैठे, हम उससे कुछ कहते तो नहीं, बस यादों में कुछ देर उसके साथ मिल बैठते हैं। लगता है खोया हुआ सुकून एक बार फिर से मिल गया। ख्वाबों की इस तासीर के साथ ही दोस्तों, अब विनीता बेदी

आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर और मैं हूँ दुर्गेश। रात के 12 बजने को है। आइए अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में मुख्य समाचार। समाचारों के साथ मैं दुर्गेश। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि यह सम्मेलन ऐसे समय हुआ जब दुनिया में ध्रुवीकरण बढ़ा हुआ है और दो बड़े संघर्ष जारी हैं। वैश्विक नेताओं ने विकास

विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भाषाई विविधता देश की ताकत है और हिंदी विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच संवाद का प्रभावशाली सेतु बनकर राष्ट्रीय एकता को और मजबूत कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर जनसूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी बनाना और लोगों के लिए महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों को समझना आसान बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान दिल्ली सरकार 13,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। देश में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति में अगस्त में मामूली वृद्धि हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अरुणाचल प्रदेश के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बिरी टाकर ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कांस्य पदक जीता। समाचार समाप्त होते हैं। आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 MHz पर।

0: मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा है इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
6: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
5: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
6: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
7: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
9: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

आधी रात के 1 बज चुके हैं। अब FM रेनबो पर सुनिए मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यह सम्मेलन ऐसे समय हुआ जब दुनिया में ध्रुवीकरण बढ़ा हुआ है और 2 बड़े संघर्ष जारी हैं। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भाषाई विविधता देश की ताकत है और हिंदी विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच संवाद का प्रभावशाली सेतु बनकर राष्ट्रीय एकता को और मजबूत कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी बनाना और लोगों के लिए महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों को समझना आसान बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे

के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान दिल्ली सरकार 13,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा, देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। देश में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति में अगस्त में मामूली वृद्धि हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। और अरुणाचल प्रदेश के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बिरी टाकर ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कांस्य पदक जीता। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।

आधी रात के 1:03 हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और अब शुरू होता है सुहानी रात, जिसमें आप सुनेंगे कुछ सॉफ्ट रोमांटिक गाने और कुछ 90s के गाने, यानी टोटल मिक्स बास्केट आप सुनेंगे जिसमें आप नॉनस्टॉप गानों का मजा लेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस गाने से और फिर गानों की लड़ी शुरू होती है अब।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

कार्यक्रम सुहानी रात अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो आकाशवाणी 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 2:12 हुए, ये सुनते हैं समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यह सम्मेलन ऐसे समय हुआ जब दुनिया में ध्रुवीकरण बढ़ा हुआ है और दो बड़े संघर्ष जारी हैं। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भाषाई विविधता देश की ताकत है और हिंदी विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच संवाद का प्रभावशाली सेतु बनकर राष्ट्रीय एकता को और मजबूत कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी बनाना और लोगों के लिए महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों को समझना आसान बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान दिल्ली सरकार 13,800 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेगी। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों को आभार व्यक्त किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने थिम्पू में भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बी टाकर ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार समाप्त हुए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली पर एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज। आकाशवाणी रेनबो पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम भुलाए ना बने।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात।

रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो।

0: यूं ही साथ साथ चलते।
1: मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

एफएम रेनबो पर अब सुनिए मुख्य समाचार सुबह के 3 बजे के। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यह सम्मेलन ऐसे समय हुआ जब दुनिया में ध्रुवीकरण बढ़ा हुआ है और 2 बड़े संघर्ष जारी हैं। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भाषाई विविधता देश की ताकत है और हिंदी विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच संवाद का प्रभावशाली सेतु बनकर राष्ट्रीय एकता को और मजबूत कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी बनाना और लोगों के लिए महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों को समझना आसान बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान दिल्ली सरकार 13,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगी। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम को राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए लगातार दूसरी बार देश का सर्वोच्च राजभाषा सम्मान कीर्ति पुरस्कार मिला। और अरुणाचल प्रदेश के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बीरी टाकर ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कांस्य पदक जीता। ये थे एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

आधी रात के 3:03 और 26 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल और अब आप सुनेंगे मिडनाइट मेलोडीज में नॉनस्टॉप बॉलीवुड हिट म्यूजिक। तो शुरुआत करते हैं अनुपम रॉय की आवाज में पीकू फिल्म के इस गाने के साथ।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
5: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली पर एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 4 बजे हैं, ये सुनते हैं हिंदी में मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यह सम्मेलन ऐसे समय हुआ जब दुनिया में ध्रुवीकरण बढ़ा हुआ है और 2 बड़े संघर्ष जारी हैं। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली की यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। प्रदर्शनी में 6 देशों और 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक विशेष स्टार्टअप पवेलियन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान दिल्ली सरकार 13,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेगी और लोकार्पण करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी बनाना और लोगों के लिए महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों को समझना आसान बनाना है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति की मंजूरी दी। देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति में अगस्त में मामूली वृद्धि हुई। 5वां जम्मू फिल्म महोत्सव 17 सितंबर को शुरू होगा। महाराष्ट्र में प्रोफेसर भर्ती के लिए आवश्यक राज्य पात्रता परीक्षा सेट अगले महीने की 25 तारीख को आयोजित की जाएगी। एशियाई ट्रैम्प चैंपियन सबीरा हारिस के नेतृत्व में 20 भारतीय निशानेबाज आज से इटली के पोरपेटो में ISSF जूनियर विश्व कप शॉटगन में हिस्सा लेंगे। भारतीय खिलाड़ी 5 स्पर्धाओं में भाग लेंगे। इसी के साथ समाचार अब

समाप्त होते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली पर FM रेनबो 102.6।

0: से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: गया है बबल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर। हिमालय की

सुबह के 5 बज चुके हैं। फिल्म रेनबो पर अब सुनिए मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यह सम्मेलन ऐसे समय हुआ जब दुनिया में ध्रुवीकरण बढ़ा हुआ है और दो बड़े संघर्ष जारी हैं। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। प्रदर्शनी में 6 देशों और 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक विशेष स्टार्टअप पवेलियन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान दिल्ली सरकार 13,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में प्रोफेसर भर्ती के लिए आवश्यक राज्य पात्रता परीक्षा सेट अगले महीने की 25 तारीख को आयोजित की जाएगी। एशियाई ट्रैप चैंपियन साबिरा हारिस के नेतृत्व में 20 भारतीय निशानेबाज आज से इटली के पोरपेट्टो में ISSF जूनियर विश्व कप शॉटगन में हिस्सा लेंगे। भारतीय खिलाड़ी 5 स्पर्धाओं में भाग लेंगे। और मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।

सुबह के 5:03 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और अब आप सुनेंगे नॉनस्टॉप भजन कार्यक्रम आराधना में। शुरुआत करते हैं श्री हनुमान चालीसा से।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंडो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेंडो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: की तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: क्या है बकल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।